मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026 सवेरे के 5:59 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद

0: बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, भगवान भोले शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता माता का गुणगान करते हैं। माँ गंगा जो शिव की जटाओं में निवास करती हैं। सूर्य की किरणें आपके चरणों को छूकर हे माता इस संसार को प्रकाशमय बनाती हैं। सारी मनुष्य जाति आपके उपकार की आभारी है। हे माँ, आप सभी के दुख दर्द को दूर करने वाली हैं। आपके चरणों में।

नरेंद्र चंचल की आवाज में भी आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, माता के कई रूप हैं और हर रूप में वो अपने भक्तों का संकट हरने के लिए अवतार लेती हैं। उन्हीं में से एक रूप है माँ संतोषी का। श्रोताओं, माँ संतोषी बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के दुखों का निवारण करती हैं, लेकिन उनको केवल पवित्र मन की भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो हे मेरे मन, तू माता की भक्ति में ऐसे रम कि तुझे माता के अलावा कुछ और ना दिखे।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना ये भजन। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं शब्द। राम नाम ही श्रोताओं सर्वोपरि है। राम नाम को जपने से ही इस दुनिया के मोह को हम त्याग सकते हैं। तो हे प्राणी, तू राम नाम ही जपा कर।

समूह स्वर में भी आपने सुना ये शब्द, मेरे नबी की बात ही निराली है, ये दुनिया उसी के रहम करम पर चलती है, मेरे दिल में केवल मेरे परवरदिगार हैं, मेरी तमन्ना यही है कि मैं मदीने आकर अल्लाह की रहमत पाऊं और उसकी खिदमत में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं।

और इसी आरती के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना भी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम और श्रीकांत पारगावकर। संगीत है सतीश भाटिया का।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: महर्षि अरविंद ने जहां वैज्ञानिक उपलब्धियों को स्वीकारा है, वहीं मनोविज्ञान दर्शन के दृष्टिकोणों को समन्वित किया है और आध्यात्मिकता को सूक्ष्मता और अतिशयता में अन्य विचारकों की भांति भौतिक जीवन को नहीं नकारा है। यही उनके समन्वित दृष्टिकोण की विशेषता है। वे सदैव प्रयत्न करते रहे कि व्यक्ति शुद्ध, पवित्र, आत्मज्ञानी और देवतुल्य चरित्र वाले बने। इसके लिए आध्यात्मिक नवजन्म, आत्मा के शुद्धिकरण, द्वंद्व और कामना से मुक्ति, मानवीय अहंभाव का पूर्ण व्यक्तित्व के सनातन सत्य में रूपांतर, मन का ऊर्ध्व मानस में उन्नयन और अति मन में रूपांतर वे आवश्यक मानते थे। मानव सत्ता के

0: स्वतंत्रता और एकता उसके पथ प्रदर्शक तत्व होंगे। अरविंद विज्ञान तत्व मीमांसा और धर्म के आदर्शवाद भौतिकवाद के बहुमुखी समन्वय का प्रयास करते रहे हैं। वो समन्वय सुगठित निश्चित है। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के कारण वे समस्त अस्तित्व के मूलभूत तत्वों के संश्लेषण की खोज करते हैं। वे ना तो प्रकृति में और ना मानव जीवन में व्यक्त अनेकता के विश्व को, पदार्थ मात्र को स्वीकार करते हैं। वे दोनों सीमांतों के विपरीत हैं। उनके अनुसार सबके मूल में विद्यमान महातथ्य चैतन्य यही है, विराट साक्षी जिसके लिए यह जगत क्षेत्र है और इंद्रियां यंत्र हैं। अरविंद परम तत्व को इंद्रियातीत मानते हैं। वो विचार और कल्पना से भी श्रेष्ठ है। मानव चेतना उस सत्ता को चित सत आनंदमय मानते हैं। संसार का उदय ईश्वर के आनंदमय स्वरूप के कारण ही हुआ है। ब्रह्म की क्रीड़ा वृत्ति का परिणाम ही यह विश्व है, इसलिए वह असत्य नहीं। अरविंद ने विश्व को तथ्य माना है। वे प्रश्न भी उठाते हैं समाधान प्रस्तुत करने के लिए। गोचर विश्व का स्वरूप ब्रह्म के विपरीत ही प्रतीत होता है। आध्यात्मवादी ब्रह्म को शुद्ध चैतन्य मानता है पर जगत को अचेतन, ब्रह्म को आनंदमय मानता है पर संसार को दुख और पीड़ा में। इस कारण वो इस जगत की व्यावहारिक सापेक्ष प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार भौतिक जगत जहां स्थूल इंद्रियों के अनुभव के द्वारा प्रमाणित होता है, और चूंकि ये इंद्रियां जो कुछ भी सूक्ष्म हैं अथवा जो कुछ स्वयं जड़ तत्व की तरह संगठित नहीं है, उसका स्वयं अनुभव नहीं कर सकते।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा।

छठे सातवें से शुरू करके 16 साल का होने तक पढ़ा, पर पाठशाला में कहीं भी धर्म शिक्षा न मिली। कहना चाहिए कि जो वस्तु शिक्षकों से अनायास ही मिलनी चाहिए थी वो न मिली, पर वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलती ही रही। यहां धर्म का उदार अर्थ लेना चाहिए, धर्म अर्थात आत्मबोध या आत्मज्ञान। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण मुझे हवेली जाने का मौका अक्सर मिला करता था, पर उसके लिए मेरे मन में श्रद्धा न उपजी। मंदिर का वैभव मुझे न रुचा, वहां चलने वाली अनीति की कथाएं सुनकर उनसे मेरा मन हट गया, वहां से मुझे कुछ न मिला। पर मंदिर से मिलने वाली चीज दाई से मिली, वह कुटुंब की पुरानी नौकरानी थी, उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। पहले बता चुका हूं कि मैं भूत प्रेत आदि से डरता था। रंभा ने मुझे बताया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम की अपेक्षा रंभा पर अधिक श्रद्धा थी, इसलिए मैंने बचपन में भूत प्रेत के भय से बचने को राम नाम का जप आरंभ किया। ये अधिक दिन न चला, पर बचपन में बोया हुआ बीज व्यर्थ नहीं गया। आज मेरे लिए राम नाम अमोघ शक्ति है, उसका कारण मैं रंभाबाई के बोए बीज को मानता हूं। इसी बीच मेरे एक चचेरे भाई ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दोनों भाइयों के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सीखने का प्रबंध कर दिया।

0: उसे कंठ कर लिया और प्रातःकाल स्नान के बाद नित्य पाठ का नियम बनाया। पोरबंदर में रहने तक तो वो निभा, पर राजकोट के वातावरण में जाता रहा। इस क्रिया में भी विशेष श्रद्धा नहीं थी, उस बड़े भाई के प्रति आदर और कुछ राम रक्षा स्तोत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने के अभिमान के कारण उसका पाठ चलता रहा। पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वो था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का कुछ काल पोरबंदर में बीता था। यहां वो राम जी के मंदिर में नित्य रात को रामायण सुना करते थे। सुनाने वाले थे रामचंद्र जी के एक परम भक्त बिलेश्वर के लाघा महाराज। उनके विषय में कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ हो गया था। उसकी दवा करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर के बिल्व पत्र, जो महादेव जी पर से उतरते थे, कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप चलाया। इससे उनका कोढ़ जड़ से जाता रहा। ये बात सच हो या ना हो, हम सुनने वालों ने उसे सच ही माना। यह भी सही है कि लाघा महाराज ने जब कथा आरंभ की थी तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाघा महाराज का कंठ मधुर था, वो दोहे चौपाई गाकर उनका मतलब समझाते थे, स्वयं उसके रस में लीन हो जाते थे और श्रोताओं को भी लीन कर देते थे। मेरी अवस्था इस समय कोई 13 बरस की रही होगी, पर यह याद है कि मुझे उनकी कथा में खूब रस मिलता था। ये रामायण श्रवण रामायण पर मेरे आत्यंतिक प्रेम की बुनियाद है। मैं आज तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। कुछ महीने बाद हम राजकोट आए। वहां ऐसी कथा का प्रबंध नहीं था, अलबत्ता एकादशी को भागवत की कथा हुआ करती थी। मैं उसमें कभी कभी बैठता था, पर कथावाचक उसमें रस न उपजा सके। आज मैं देखता हूं कि भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जिसे पढ़कर धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े रस के साथ पढ़ा है। पर मेरे 21 दिनों के उपवास में जब भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने ही अंश सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तब मुझे मालूम हुआ कि बचपन में उन जैसे भगवत भक्त के मुंह से भागवत सुना होता तो उस पर भी मेरी गाढ़ प्रीति बचपन में ही जम जाती। उस वे में पड़े शुभाशुभ संस्कारों की जड़ बड़ी गहराई तक पहुंच जाती है, इसे मैं खूब अनुभव करता हूं और इस कारण कितने ही उत्तम ग्रंथ सुनने का सौभाग्य मुझे उस उम्र में प्राप्त न होना आज खलता है। राजकोट में मुझे अनायास सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने प्रत्येक संप्रदाय के प्रति आदर भाव रखना सीखा, क्योंकि माता पिता हवेली जाते, शिवालय जाते, राम मंदिर भी जाते और हम भाइयों को भी ले जाते या भेजा करते। इसके सिवा पिताजी के पास जैन धर्मचारियों में से कोई ना कोई सदा आते ही रहते। पिताजी उन्हें भिक्षा देकर सत्कार करते थे। वह पिताजी से धर्म संबंधी तथा व्यवहारिक चर्चा किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे, जो अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा किया करते और पिताजी उनकी बातें आदर और अक्सर रस लेकर सुनते थे। इन चर्चाओं के समय नर्स होने के कारण मैं प्राय उपस्थित रहता था। इस सारे वातावरण का असर मेरे ऊपर यह हुआ कि सब धर्मों के प्रति मेरे मन में समभाव उत्पन्न हो गया। मेरे मन में अन्य धर्मों के प्रति समभाव तो आया, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति कुछ आस्था थी। इसी समय पिताजी की पुस्तकों में मुझे मनुस्मृति का उल्था मिला। उसमें जगत की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी, उन पर श्रद्धा न जमी, उल्टे कुछ नास्तिकता ही आई। मेरे दूसरे चाचा के लड़के की, जो अभी जीवित हैं, बुद्धि पर मुझे विश्वास था, उनसे मैंने अपनी शंकाएं कही, पर वह मेरे समाधान न निकाल सके। उन्होंने उत्तर दिया, बड़े होने पर तुम स्वयं इन प्रश्नों को हल कर लोगे, बालकों को ऐसे प्रश्न न करने चाहिए। मैं चुप रहा, मन को शांति न हुई। मनुस्मृति के अन्य प्रकरणों में भी मैंने प्रचलित प्रथा का विरोध पाया। इस शंका का उत्तर भी लगभग वैसा ही मिला। मैंने ये कहकर मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी, तब अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा।
1: इसी के साथ गांधी कथा अब संपन्न होती है।

अभी आप गांधी कथा सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांत वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन यूयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री

0: नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है जीवन शैली से संबंधित रोग।
3: लाइफस्टाइल का मतलब है कि जो हमने अपनी लाइफ में चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं, इनकॉर्पोरेट करने का मतलब अपनी लाइफ में हमने उनको ले आए हैं, जैसे टोबैको है, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल है। हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, आमतौर पे हमारे नींद कम होती है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत खाते हैं, शराब का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और यही बीमारियां आगे चल के नंबर 1 किलर बनने वाली हैं दुनिया में। सबसे पहली बीमारी है मोटापा। मोटापे को आमतौर पर लोग बीमारी नहीं मानते हैं, लेकिन मोटापा ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो जीवन शैली से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे प्रमुख हैं ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप, दूसरी चीज डायबिटीज है, तीसरी चीज दिल के दौरे हैं या दिल की बीमारियां हैं, चौथी चीज दिमाग की परेशानियां हैं जैसे फालिज के असर होते हैं, और कैंसर है, और अभी जो हम लोग के अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, कि हम लोग सब, हर आदमी मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल से रिलेटेड भी काफी सारी परेशानियां हैं, जैसे नए तरीके कैंसर उभर उभर के आ रहे हैं। जंक फूड का मेन जो परेशानी होती जंक फूड से, वो कैलोरी रिच होती हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती है, वो सिर्फ हमको एनर्जी देती है, वो एनर्जी हमारे अंदर शरीर पूरी की पूरी वैसी की वैसी ले लेता है, और उसका जो मेन जो परेशानी होती है उससे, वो होता है हमारा मोटापा बढ़ना। और मोटापा ही, जैसे मैंने बताया, हर बीमारी की जड़ है। प्रदूषण कई तरीके का होता है, जैसे हवा का प्रदूषण है, जैसे आवाज का या नॉइज पोल्यूशन है, और खाने में हमारे एडल्ट्रेशन बहुत है, और पानी का प्रदूषण है, तो इनसे बीमारियां बहुत होती है। जैसे मेनली हवा के प्रदूषण से सांस से रिलेटेड बहुत बीमारियां होती हैं, जिसमें खांसी भी आती है, जिसमें आप दमा भी शामिल कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इरिवर्सिबल होती है, जिनमें हम मरीज को वापस नहीं ला सकते नॉर्मल स्थिति तक की, उनको हम इंटरस्टीशियल लंग डिजीजेस कहते हैं। और उसके अलावा पानी के प्रदूषण से बहुत तरीके की बीमारियां, जैसे पेट की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, और कई तरीके के इन्फेक्शन भी होते हैं। नॉइज पोल्यूशन से आदमी बहरा हो सकता है, कई तरीके के कैंसर देखे गए हैं कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से होते हैं। साथ ही साथ रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, इतने मोबाइल टावर्स हर जगह लगे हुए हैं, लोगों के सर में दर्द रहती है जो उन मोबाइल टावर्स के आसपास रहते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं, और साथ ही साथ उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही साथ कई नए तरीके के दिमागी कैंसर भी उभर के आ रहे हैं, जो कि इन मोबाइल टावर्स की देन है। इनको रोकने के लिए अपनी जीवन पद्धति को हमें बदलना होगा, हमें वापस अपने पुरखों की तरफ जाना होगा, कि जैसे वो हेल्दी फूड खाते थे, सलाद का ज्यादा उपयोग करते थे, नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। हम अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना कर लें जो रिकमेंडेशन है, कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए तेज चाल से पैदल चले, उससे ही काफी बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। और एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिसमें ये प्रूव किया गया है कि अगर हम ठीक खाना खाएं और ठीक ठाक एक्सरसाइज करें, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस करें, तो कैंसर का और दिल की बीमारियों का, दिमाग की बीमारियों का प्रचलन जो है वो करीब करीब 30-40% घटा सकते हैं। तनाव के कारण सबसे जो पहली बीमारी मैं कहूंगा वो दिल से रिलेटेड है। दिल का दौरा पड़ना, फालिज का असर होना, ये तनाव इनका एक मुख्य कारण है। साथ ही साथ तनाव के साथ कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी होने लगती, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परफॉर्म बहुत अच्छा करना है, बहुत पैसा कमाना है, टाइम बहुत लिमिटेड है जिसमें काम करना है, तो इससे तनाव बहुत ज्यादा पैदा होता है, और उस वजह से आदमी खाना पीना भूल जाता है, एक्सरसाइज भूल जाता है, नींद उसको कम आती है, और धीमे धीमे करके मनोरोग उसको हो जाता है, जिसमें प्रमुख बीमारियां जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी ही। देखिए, कुछ बीमारियां तो ये हैं, बाहर खाना खाने से जो होती हैं, खाना गंदा होता है, उसमें प्रमुख है अमीबियासिस, एक कीटाणु होता है जो हमारी आंतों में अपना घर बना लेता है, बार बार हमारी आंतों को इन्फेक्ट करता रहता है दवाएं लेने के बावजूद, क्योंकि हम वो खाने की शैली को छोड़ते नहीं है। दूसरी कई इस तरह की बीमारियां होती हैं जो खाने के अंदर हेवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, मरकरी का आपने नाम सुना होगा, उनकी वजह से कई कैंसर्स भी पता चले हैं। साथ ही साथ गंदे खाने और पानी से ऐसे कुछ इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, जो लिवर को खराब कर सकते हैं, आदमी की जान भी जा सकती है। जी हाँ, शराब के ऊपर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज की जीवन शैली का एक अंग बन गया है शराब। कोई भी चीज कम मात्रा में, मॉडरेट अमाउंट्स में की जाए तो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन शराब क्योंकि हमारी जीवन पद्धति का एक अंग बन गया है, तो लोग शराब ज्यादा पीने लगे, उनके लिवर में खराबी होने लगी है, लिवर के कैंसर तक की हो जाते हैं, पेट के कैंसर हो सकते हैं, खाने की नली के कैंसर हो सकते हैं, और कुछ हमारे अंग हैं जैसे पैंक्रियाज है, जिससे डायबिटीज हो जाती है, उसकी खराबी की वजह से वो पैंक्रियाज भी डैमेज हो सकता है, उसका कैंसर भी हो सकता है शराब से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, विषय था जीवन शैली से संबंधित रोग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। खेती की बातें कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है, किसान कैसे करें अत्यधिक गर्मी से अपना बचाव।
4: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है, किसान कैसे करें अत्यधिक गर्मी से अपना बचाव। किसान भाइयों, जून का महीना वर्ष का सबसे गर्म समय माना जाता है। इस समय सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कई क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर पहुंच जाता है।

0: तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस शरीर को जल्दी थका देती है। अत्यधिक गर्मी का असर केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। यदि इस मौसम में सही सावधानी न बरती जाए तो लू लगना, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी, त्वचा संबंधी रोग और कई बार जानलेवा स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए जून की गर्मी से बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के मौसम में सबसे पहले शरीर को पानी की कमी से बचाना जरूरी होता है। अत्यधिक तापमान के कारण शरीर से पसीना लगातार निकलता रहता है, जिससे शरीर का पानी और आवश्यक लवण कम होने लगते हैं। इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। भाइयों, कई लोग तब पानी पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है, लेकिन गर्मी में ऐसा करना सही नहीं माना जाता। किसान भाइयों, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास पानी पीना लाभकारी होता है। बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ में रखना चाहिए। बहुत अधिक ठंडा पानी तुरंत पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गला खराब हो सकता है और शरीर पर अचानक असर पड़ता है। सामान्य या हल्का ठंडा पानी अधिक लाभदायक होता है। किसान भाइयों, गर्मी में केवल पानी ही नहीं बल्कि ऐसे पेय पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए जो शरीर को ठंडक दें और ऊर्जा बनाए रखें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी, बेल का शरबत, आम का पन्ना और सत्तू का घोल गर्मी से राहत देने में बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें शरीर के लिए जरूरी खनिज और लवण पाए जाते हैं, जो पसीने के साथ निकलने वाले पोषक तत्वों की कमी पूरी करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में हमें भोजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन हमेशा हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जिससे पाचन खराब हो सकता है। इस मौसम में हरी सब्जियां, सलाद, दही, मौसमी फल और अंकुरित अनाज का सेवन लाभकारी होता है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम, लीची और संतरा जैसे फल शरीर को पानी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, जून की तेज धूप से बचाव करना अत्यंत जरूरी है। दोपहर के समय सूरज की किरणें सबसे अधिक तीव्र होती हैं, इसलिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए। यदि किसी कारण बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढककर निकलना चाहिए। चेहरे और त्वचा को तेज धूप से बचाने के लिए हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए। भाइयों, गर्मी के मौसम में कपड़ों का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। सूती और ढीले कपड़े शरीर को आराम देते हैं और पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि वे गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं। खेतों में काम करने वाले किसान भाई सुबह जल्दी या शाम के समय कार्य करें तो बेहतर होता है। दोपहर के समय आराम करना शरीर के लिए लाभकारी रहता है। भाइयों, लगातार धूप में काम करने से बचना चाहिए। लू लगना जून की गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है। लू लगने पर तेज बुखार, चक्कर, उल्टी, सिरदर्द, कमजोरी और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए और पानी या ORS घोल देना चाहिए। गंभीर स्थिति होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किसान भाइयों, जून की गर्मी कठिन जरूर होती है, लेकिन सही सावधानियों और अच्छे खानपान से इसे काफी हद तक बचाया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो गर्मी के दुष्प्रभावों से स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। अब हमें अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, जानकारी विषय था किसान कैसे करें अत्यधिक गर्मी से अपना बचाव। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी।

जिले की हलचल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फरुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। कार्यक्रम प्रसारित किया जाए

0: रहेगा सुबह 9:15 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम रात के हम सफर। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनिएगा विविध कलाकारों की गाई नात। छाया गीत का समय रहेगा शाम 6:55 पर। कानूनी सलाह कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर अतर सिंह से एस के नोटियाल की बातचीत। विषय होगा बाल श्रम रोकने संबंधित कानून। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनिएगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन से संबंधित पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज। ये शाम गजलों के नाम, लव स्टोरीज, यंग अचीवर्स और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में शाम 5 सुनिएगा शिशु सुरक्षा को मजबूत करती योजनाओं के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष अभियान, किलकारी मोबाइल ऐप और मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: केवल भगवान से डरो। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं। मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
4: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जन धन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
5: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ के लोक भवन सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ संवाद करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत

0: अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29,00,000 मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई EPF टाइप सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
1: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29,00,000 मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।

0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान। शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।
2: सूरज के साथ साथ
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के साथ। श्रोताओं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना और ठोस कदम उठाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कम उम्र के बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने से रोकना और उन्हें शोषण से बचाना है। बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो मुख्य रूप से गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक समानता के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं। उचित शिक्षा का अभाव भी बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। बेरोजगारी और सामाजिक असमानता भी बाल श्रम को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। श्रोताओं, भारत में बाल श्रम को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, जिसके तहत खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पूर्णतः निषिद्ध थी। बाल श्रम किसी भी समाज के विकास, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास और देश के भविष्य के लिए एक बड़ा कलंक है। इस दिवस के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि बच्चों का सही स्थान फैक्ट्रियां नहीं बल्कि स्कूल है।

0: जी हाँ श्रोताओं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनकी जगह, जैसे कि हमने आपको भी बताया, फैक्ट्रियां नहीं स्कूल हैं। तो अपने सभी बच्चों को आप स्कूल भेजें और देश सेवा में अपना योगदान दें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी एक देश सेवा के अंतर्गत ही आता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कैसे रखें ख्याल। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमें केवल खुद का ही नहीं बल्कि अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस तेज गर्मी का असर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ता है, तो ऐसे में अगर गैजेट्स का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया तो वे खराब हो सकते हैं। ओवरहीटिंग से इनकी बैटरी खराब हो सकती है या ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। श्रोताओं, गैजेट्स को सीधी धूप, गर्म कारों या बंद कमरों से दूर रखें। दरअसल अधिकांश गैजेट्स 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसीलिए इन्हें गर्मी से बचाने की जरूरत होती है। वहीं आप लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही जब काम न हो तो गैजेट्स को बंद कर दें। अपने गैजेट्स को नम या गीले वातावरण से दूर रखें, खासकर स्विमिंग पूल, वाटर पार्क या ऐसी किसी जगह जाने पर पानी गिराने से बचें। साथ ही गैजेट्स को स्टोर करते समय सिलिका पैड का उपयोग करें। आईपी रेटेड होने पर भी अपने गैजेट्स को पानी में भीगने ना दें। ज्यादा गर्मी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए बेहतर होगा कि बैटरी को 80% तक चार्ज करें और ज्यादा चार्जिंग से बचें। साथ ही अगर संभव हो तो इस्तेमाल ना करने पर गैजेट्स से बैटरी निकाल दें। श्रोताओं, धूप और गंदगी गैजेट्स को गर्म कर सकती है। जरूरी है कि अपने गैजेट्स को साफ करने के लिए सूखे कपड़े का उपयोग करें। गैजेट्स पर सफाई के लिए कोई क्लीनिंग लिक्विड न डालें। साथ ही गैजेट्स को धूल और खरोंच से बचाने के लिए कवर या केस का उपयोग करें और उन्हें सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट रखें। अपने गैजेट्स को आजमाएं नहीं बल्कि उन्हें गर्म होने की स्थिति में इस्तेमाल ना करें और कुछ देर के लिए ठंडा होने दें।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी

0: नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। गर्मी चल रही है, गर्मी की बात भी हम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक चर्चा और कर लें। जी हाँ, एक चर्चा और करते हैं जिसका विषय है गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचें। श्रोताओं, जून का महीना चल रहा है और इस महीने गर्मी अपनी पीक पर होती है। हालांकि 1-2 दिन बारिश है, लेकिन फिर बारिश के बाद गर्मी हो जाएगी, तो ऐसे में जरूरी है आप अपना खास ध्यान रखें, गर्मी से खुद को बचाएं, डिहाइड्रेशन से बचें। गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, थकान, सिरदर्द, लू लगने और गर्मी से होने वाली अन्य बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। हमारे शरीर का 60% से अधिक भाग पानी से बना होता है और यह तापमान नियंत्रित करने, पाचन क्रिया में सहायता करने, पोषक तत्वों के परिवहन और ऊर्जा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मी में पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से अधिक तरल पदार्थ निकलते हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और शरीर में पानी की कमी न होने देना आवश्यक है। श्रोताओं, निर्जलीकरण सिर्फ प्यास लगना नहीं है, यह आपके मूड, एकाग्रता, त्वचा और महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे बचने का मुख्य उपाय है अपने शरीर को लगातार हाइड्रेट रखना, खासकर जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए खूब पानी पिएं। प्यास लगना अक्सर निर्जलीकरण का देर से दिखने वाला संकेत होता है। प्यास लगने का इंतजार करने की बजाय दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। शुरुआत में 8 से 10 गिलास पानी पीना अच्छा है, लेकिन गर्म मौसम में या ज्यादा गतिविधि करने पर आपकी जरूरत बढ़ भी सकती है, तो आप ज्यादा पानी पिएं। तरबूज, खीरा, संतरा और स्ट्रॉबेरी जैसे फल और सब्जियां अपने आहार में शामिल करें, जो प्राकृतिक रूप से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। एक पुनः प्रयोज्य बोतल हमेशा अपने पास रखें ताकि आपको याद रहे कि आपको पानी पीना है। स्टेनलेस स्टील की बोतलें पानी को लंबे समय तक ठंडा रखती हैं। श्रोताओं, मीठे और कार्बोनेट पेय पदार्थों से बचें। शीतल पेय और मीठे रस लुभावने तो लगते हैं, लेकिन वे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में सहायक नहीं होते और यहाँ तक कि इनसे आपके शरीर से और अधिक तरल पदार्थ निकल सकते हैं। एक श्रोताओं, दिन की शुरुआत और अंत पानी से करें। सुबह 1 गिलास पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और नींद के बाद आपको हाइड्रेट रखता है। सोने से पहले पानी पीने से रात भर डिहाइड्रेशन से भी बचाव होता है। नारियल पानी शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है और एनर्जी ड्रिंक का एक प्राकृतिक विकल्प है, जो इस उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए सबसे अच्छे हाइड्रेशन टिप्स में से एक है। श्रोताओं, गर्मी में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए हल्के हवादार कपड़े पहने जो पसीने को वाष्पित करने में मदद करें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जब सूर्य की रोशनी अपने चरम पर होती है, उस दौरान बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। अधिक गर्मी को कम करने के लिए पंखे या तौलिये का उपयोग करें। बाहर समय बिताते समय नियमित रूप से छाया में आराम करें। गर्मी के मौसम की हमने बात की और गर्मी पर एक गाना ना हो, जेठ चल रहा है, तो आपको सुनवाते हैं ये

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आइए आपको जानकारी देते हैं 12 जून को घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। 12 जून को वैसे तो देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं घटी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। 12 जून सन 2001 को सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश की वार्ता शुरू हुई। 12 जून 2007 को कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों का चयन। ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाजत मिली। 12 जून 2008 को दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 हेतु 6वीं सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई। 12 जून सन 2008 को ही प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वें ओशियाना सिने फैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। और 12 जून सन 2016 को ही साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। 12 जून 1964 को आज की तारीख में दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेल्सन मंडेला को रिवोनिया ट्रायल के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर रंगभेदी शासन के विरुद्ध साजिश व तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। और 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित किया था। विपक्षी नेता राज नारायण की याचिका पर अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी माना। फैसले में उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

और आपको बताते हैं 12 जून को किन लोगों ने संसार को अलविदा कहा। 12 जून सन 2017 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन हुआ। 12 जून 1989 को तुर्की के ऑल्टोमन राजसी वंश की आखिरी शहजादी राजकुमारी नीलोफर भी संसार को अलविदा कह गई। 12 जून 1981 को भारत के भूतपूर्व सातवें मुख्य न्यायाधीश पीबी गजेंद्र गडगर का निधन हुआ। 12 जून 1972 को महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री डी जी तेंदुलकर का भी निधन हुआ। 12 जून 2000 को लोकप्रिय मराठी लेखक नाटककार हस्तकार हास्यकार अभिनेता कथाकार व्यपट कथाकार फिल्म निर्देशक संगीतकार एवं गायक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे भी संसार को अलविदा कह गए। 12 जून सन 1976 को संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का भी निधन हुआ। आइए अब आपको बताते हैं 12 जून को किन महान व्यक्तियों का जन्म हुआ। 12 जून 1957 को हिंदी की जाने मानी कथाकार उपन्यासकार गीतांजलि श्री का जन्म हुआ। 12 जून 1932 को मराठी अभिनेत्री जयश्री तलपड़े का भी जन्म हुआ। और देश के मेट्रोमैन व प्रख्यात सिविल इंजीनियर ई श्रीधरन का जन्म भी आज ही की तारीख यानी 12 जून को सन 1932 में केरलम में हुआ था। वे अपनी सख्त अनुशासन व समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1964 के चक्रवात में क्षतिग्रस्त पवन पुल को रिकॉर्ड 46 दिनों में ठीक किया। कोंकण रेलवे परियोजना को सफलतापूर्वक आपने साकार किया। उनकी उपलब्धि दिल्ली मेट्रो का निर्माण है जिसने देश में शहरी परिवहन की तस्वीर बदल दी। उन्होंने बिना भ्रष्टाचार के इस विशाल नेटवर्क को बजट और समय के भीतर पूरा किया। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जहां हम आपको अवगत कराते हैं अखबारों की चंद सुर्खियों से। शुरुआत कर रहे हैं दैनिक जागरण के साथ, तो दैनिक जागरण लिखता है 30 जून तक पर्यटन ले सकेंगे जंगल सफारी का आनंद। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बन रेंज में इस बार पर्यटक 30 जून तक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। पहले सत्र की सफारी का समापन 15 जून को होना था। प्रधान मुख्य

बादल छाए रहे और पूर्वा के तेज झोंके चलते रहे। उम्मीद है कि अगले 2 दिन में भी बादल पानी बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितना पानी बरसेगा मौसम भी उतना ही खुशगवार होगा। रुक करें अमर उजाला की ओर, तो अमर उजाला लिखता है, रक्तदान करना स्वास्थ्य शरीर के लिए फायदेमंद। रक्तदान करना स्वास्थ्य शरीर के लिए फायदेमंद है। रक्तदान करने से गंभीर बीमारी होने का खतरा कम रहता है। साथ ही गंभीर बीमारियों HIV हेपेटाइटिस की जांच निशुल्क हो जाती है। इसीलिए रक्तदान करके उम्मीद जरूरतमंदों की जिंदगी बचाएं। जिला अस्पताल के रक्त केंद्र में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से 14 जून को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। सभी लोग रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अमर उजाला की ये एक और सुर्खी है, जिले में 3,65,000 नए नाम जुड़े, 2,61,000 मतदाता सूची से हटे। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जिला प्रशासन की ओर से अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। सूची के अनुसार जिले में इस बार 23,27,922 मतदाता गांवों की सरकारें चुनने के लिए मतदान करेंगे। जिले में 3,65,000 नए नाम जुड़े हैं, जबकि 2,61,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पिछली मतदाता सूची की तुलना में जिले में 1,03,852 मतदाता बढ़े हैं। रुक करें हिंदुस्तान की ओर, तो हिंदुस्तान लिखता है, गृहिणियों के काम का मूल्य 30,000 तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि घर संभालने वाली महिलाओं को सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता माना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत के फैसले में कहा कि किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से पत्नी की घरेलू देखभाल और सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए उनके काम का मूल्य कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह तय किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की ही एक और सुर्खी है, भीषण गर्मी से टूटा रिकॉर्ड, बिजली की मांग 31,894 मेगावाट पहुंची। इसी के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में

0: तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
6: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
5: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर

0: ही उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोक सत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड

0: करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में बेशरफ हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्ना बॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
1: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजिमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा मेंबरा ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनवे सप्लाई निजाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का और लीजिए पेशे कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है बड़े दिल वाला।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

एक फूल दो माली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। संगीत रवि का था और गीत लिखा था प्रेम धवन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कर्ज से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

कर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएंगे, उससे पहले सुनिएगा ये संदेश।

खून भरी मांग। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनाली साधना सरगम और साथियों की युगल आवाजों में। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीत लिखा था इंदिवर ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हीर रांझा से। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है कैफ आजमी ने।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीर रांझा के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट सब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGR शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण की आख्या परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तथा तत्परक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
2: अधिकारियों के लेवल पे जो असंतोषजनक फीडबैक है वो भी चेक किया गया और समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है। इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के तहत कि इसको फीडबैक लिया जाए।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद के हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर 191.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर संभव कटान वाले स्थलों के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की आख्या प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी किनारे कराए जा रहे पिचिंग कार्यों के भौतिक सत्यापन भी किया तथा कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाने के पूरे निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता तथा मानक के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें आम जन को आवागमन से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से कार्यों की निगरानी तथा कटान प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति संभावित न रहे। फरुखाबाद जनपद में परिवहन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनके वाहनों से संबंधित आवश्यकता

0: को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसान ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक सेवाएं सरल एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराई गयी। शिविर में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, आवश्यक अभिलेखों की जांच, अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण की गयी, जिससे किसानों को विभागीय कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन द्वारा ये प्रयास किसानों को सुगम, पारदर्शी एवं जनहित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में देरी के चलते उस पर पेनल्टी लगाई गई है तथा कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट को हैंडओवर कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना अंतर्गत शाकभाजी कार्यक्रम एवं बागवानी मशीनरीकरण योजनाओं के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नवीन गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद फरुखाबाद के कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त हुए। योजनाओं का उद्देश्य कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि कराना है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 हेक्टेयर, कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। फरुखाबाद जनपद में जिला जज नीरज कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फीता काटकर समाधान समारोह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में रफ्तार मिलेगी, सुलह समझौते से समाधान होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समाधान समारोह 2026 के सफल आयोजन को लेकर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले चिन्हित वादों के निस्तारण हेतु प्री सिटिंग और सुलह समझौते की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज समेत अन्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
1: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
2: बीता माह जनपद शाहजहांपुर के लिए विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उपलब्धियों, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिले में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जन जागरण के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माह के पहले सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिर्जापुर विकास खंड के ग्राम पहरुआ स्थित ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य तालाब में रहने वाले कछुओं का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही भैंसी और गोमती नदी तटों पर हरिशंकरी वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया गया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में 108 सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा 15 जून तक 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। माह के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष यातायात अभियान में 1013 वाहनों के चालान किए गए तथा 3 नए वाहनों को सीज किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहांपुर में अपनी पहचान मजबूत की। जिले के युवा रंगकर्मी यश देव शर्मा और शैलेंद्र पटेल का चयन भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ की अंतिम चयन कार्यशाला के लिए हुआ। इस उपलब्धि को जिले के रंगमंच जगत के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गायत्री परिवार की ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे माह चर्चा का केंद्र रही। शांति कुंज हरिद्वार से 2400 तीर्थों की रज लेकर निकली यह यात्रा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से विचार क्रांति, युग निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, आत्म सुधार और संस्कार निर्माण का संदेश जन जन तक पहुँचाया गया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना और साहित्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय

0: कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तहवरगंज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है, ताकि नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और संस्कारित नई पीढ़ी के निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। एक जनपद एक उत्पाद ODOP वित्त पोषण योजना स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर शाहजहांपुर के दो उद्यमियों ने न केवल अपना कारोबार स्थापित किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। मोहल्ला बाड़ूजी पेशावरी निवासी मोहम्मद राशिद ने जरी जरदोजी की इकाई स्थापित करने के लिए केनरा बैंक घंटाघर शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्होंने अपना काम शुरू किया जिससे 5 अतिरिक्त परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। वहीं मोहल्ला लोधीपुर निवासी रुकैया खान ने केनरा बैंक सदर शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर जरी जरदोजी की इकाई स्थापित की। उनके उद्यम से भी 5 परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। दोनों उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 होने को हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए माधुरी शर्मा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी शर्मा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी शर्मा के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। धरती गाती है कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे माधुरी शर्मा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें। लोकधारा में 1:45 पर सुनिएगा दर्शन सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर आज क्रम होगा माटी मारे देश की। मिड डे मेलडी कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में दोपहर 12:15 पर सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। और अब से कुछ ही देर में यानी 10:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। आज के कार्यक्रम में हमारा विषय होगा रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां और लाभ। 14 जून को हम मनाने वाले हैं विश्व रक्तदान दिवस। जो भी श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं और इस पर विचार अपने पेश करना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं और सीधे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9457078288। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़
1: और आपके साथी लोकेंद्र का नमस्कार,
0: और हमारे सभी साथियों को हमारा भी नमस्कार। और लोकेंद्र जी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं और हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को पसंद भी आएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की,
1: और गीत लिखा है समीर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है अनु मलिक ने।
0: सुनवा दे फिर कार्यक्रम का पहला गीत।
1: बिल्कुल ज्योति सुनवाइए।

0: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, संगीत अनु मलिक का था और गीत लिखा था समीर ने, और कार्यक्रम का ये गीत हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते थे। हम आज शुरुआत कर रहे हैं पत्रों के साथ। व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास बहुत सारे हैं लोकेंद्र जी, लेकिन पत्रों के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि हमारे श्रोता बहुत मेहनत करते हैं पत्र भेजने में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पत्रों को भी अपने कार्यक्रम में जगा दें। शुरुआत कीजिए।
1: और पत्र भेजने के बाद बहुत इंतजार भी करते हैं कि कब हमारे पत्रों को शामिल किया जाएगा जो उन्होंने पसंद की अपनी फिल्म भेजी है। तो ज्योति, पहले आपने जो गीत कौन सी फिल्म का अभी बताया आपने,
0: अब तुम्हारे हवाले वतन साथी,
1: तो मैंने इसी फिल्म के जो गीत के लिए पत्र भेजे हैं उनको सेलेक्ट किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पी रानी और आकाश कुमार ने ये खत हम तक लिखकर भेजा है। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत और बिहारी कॉलोनी महासमुंद से हैं वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर।

0: में हमें पत्र आया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, भेजने वाले थे हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेंग विरक और मीका विरक। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था मेन बाजार नहटौर यूपी से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अलसबा गुल, गुलफशा रानी, मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी ने।
1: मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहारकार, नर्मदा पोहारकार, सुनील पोहारकार, साहिल पोहारकार, कुमारी सुजाता पोहारकार ने इसी गीत को सुनना चाहा था। आदर्श नगर मलोट से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शाइमा और निवान शर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा है।
0: और मलोट कैंप पंजाब से ही एक और पत्र हमें मिला था सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंद्र सिंधु, महावीर सिंधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी का।
1: और ज्योति जी, बहुत सारे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भी इसी गीत को सुनने के लिए आए हैं, तो
0: हाँ
1: अगर आप कहें तो इनको भी
0: बिल्कुल
1: शामिल
0: बिल्कुल
1: कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखिए, ये हमें भेजा है कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय। और ये हैं ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, सायना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौशल।
0: और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले सुनवा देते हैं ये संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अगला गीत हमने फिल्म परदेश से लिया है, कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीत को किसने लिखा है ज्योति?
6: गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली, जिला मुरादाबाद से। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगपात। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है।
5: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आप हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। साथ में मजनू का टीला से आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने इसी गीत को सुनना चाहा है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद खैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया।

0: सारी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: और ये मैसेज हमें मिला है जो आया है दादा बाबू रोड गिरी ढीड़ झारखंड से, भेजने वाले हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद और चाहत। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही ने, और इसी गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या ने। और
0: आप हैं गांव और पोस्ट निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके परिवार के सभी लोग। सालार पहरगाम से, कश्मीर से आप हैं। आपने अपना नाम इस पत्र में नहीं लिखा है, केवल इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक लिखकर भेज दी है। आप जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिश खातून।
1: और ये मैसेज हमें मिला है जो आया है नेहरू चौक पैनल से, भेजने वाले हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल बेबी सिया, जलाना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, प्रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, बीकेपुरी और विनोदपुरी ने। और ये मैसेज हमें मिला है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म परदेश से।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त लोकेंद्र, और
3: मैं हूं ज्योति गौड़।
2: तो कार्यक्रम में ज्योति श्रोताओं को सुनवाते हैं अगला गीत।
3: हाँ, और ये गीत हमने लिया है फिल्म हीरो नंबर 1 से। आवाजें हैं साधना सरगम और उदित नारायण की, संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत लिखा है समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गरी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
2: ग्राम नंगला उभवन नजीबाबाद से आप हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और इनके परिवार के सभी लोग। मोहल्ला कनेरा पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता और इनके परिवार के सभी लोग। दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर सागरी और जरीफ अंसारी, और इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम धनसिनी नजीबाबाद जनपद बिजनौर से मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, मुकेश राजू राजकुमार और राधेश्याम।
3: राजधानी रायपुर से ये मैसेज हमें किया है नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्विंसी खेड़ा, और कार्यक्रम में अगला मैसेज हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, जिन भी श्रोताओं के मैसेज शामिल हो जाते हैं वो हमें फिर से मैसेज ना करें। और ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है जिला रतलाम एमपी मध्य प्रदेश से, जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का। और ये मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से, भेजने वाले हैं भारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान का। लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म हीरो नंबर 1 से।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म हीरो नंबर वन का गीत साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वर में। कार्यक्रम में सुनते हैं श्रोताओं एक और गीत फिल्म जानम समझा करो से। गायक कलाकार हैं जसविंदर नरूला। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत अनु मलिक का है। पसंद किया है आप सभी ने। मोहल्ला खेड़ा हल्दौर से आप हैं मास्टर महेंद्र शर्मा। बंटी, गुनगुन, ललिता, राजू और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम व पोस्ट छितावर वाया कीरतपुर बिजनौर से आप हैं आनंद किशोर धीमान, अमित धीमान, मुकेश धीमान, रेम्स कृष्णन, आरव, अक्षिता, अक्षत और अव्या।
1: जलालाबाद वेस्ट से ये गीत सुनना चाहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और नमित आहूजा ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है। मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, अशद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नाजमा नाज मंसूरी। और ये मैसेज हमें मिला है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। भेजने वाले हैं मोहम्मद शागि सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। और ये कार्यक्रम का अंतिम मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावत से। भेजने वाले हैं बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा और मोहम्मद सड़क खत्री का। लीजिए
0: तो
1: पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत
0: फिल्म जानम समझा करो से।

कार्यक्रम जागरूक श्रोता और हमारा आज का विषय रहेगा रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां और लाभ। और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। हमें आपके फोन का इंतजार है।

जानम समझा करो। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़
1: और लोकेंद्र का सादर नमस्कार।
0: और नमस्कार हमारा भी हमारे सभी श्रोताओं को। कार्यक्रम शुरू हो चुका है जागरूक श्रोता, और आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हिस्सा बनते हैं और अपने अपने विचार कार्यक्रम में प्रस्तुत करना करते हैं। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको पहले तो हम अपने फोन नंबर बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे हमें आज आपसे हम किस विषय पर बात करेंगे।
1: ज्योति नंबर मैं बता देता हूँ
0: जी, बिल्कुल।
1: हाँ, मोबाइल नंबर है 9457078288। एक बार फिर से नोट कर लीजिए श्रोताओं, 9457078288 हमारा लैंडलाइन नंबर है, 01341230105।
0: और जो भी श्रोता कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं हमारे नंबर नोट कर लिए होंगे आपने। और अब आते हैं हम कार्यक्रम के असली मुद्दे पर, जो हम बात करेंगे आज अपने श्रोताओं से, वो हमारा आज का विषय रहेगा रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां और लाभ। और लोकेंद्र जी, अभी हम कल परसों यानी कि 14 तारीख को मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस।
1: जी बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने,
0: और इसीलिए हमारा आज का विषय है रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां और लाभ, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय को लेकर हमारे सभी लिसनर्स के मन में होती हैं, सभी के मन में होती हैं कि कुछ ना कुछ अगर हम रक्तदान करते हैं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारे अंदर कमजोरी आएगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। मेन चीज तो यही परेशान करती है सभी को कि हम अपना रक्तदान करेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है।
1: इसके अलावा भी ज्योति बहुत सारी भ्रांतियां हैं,
0: बहुत सारी,
1: उनके बारे में अभी हम अपने श्रोताओं से
0: बिल्कुल
1: फोन के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा अपने श्रोताओं के साथ करना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि 14 जून को पूरे संसार में यानी पूरे विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो रक्तदान का महत्व श्रोताओं बहुत अधिक है, इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ये बिना किसी विकल्प के किसी की जीवन को, किसी की जान को बचा सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और ज्योति, चिकित्सा विज्ञान में कृत्रिम रक्त यानी जैसे बहुत सारी चीजें हम आर्टिफिशियल बना लेते हैं ना,
0: और आज का तो टाइम ऐसा है कि ज्यादातर चीजें हमें आर्टिफिशियल ही मिल रही है,
1: तो लेकिन अभी तक चिकित्सा विज्ञान में कृत्रिम रक्त यानी आर्टिफिशियल ब्लड को नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए बीमार व्यक्तियों की जान जिनको रक्त की आवश्यकता होती है केवल मानव के खून से ही बचाई जा सकती है।

0: जाती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए रक्तदान करना जरूरी है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो सकती हैं, जैसे सड़क दुर्घटना या गंभीर चोट में अत्यधिक खून बह जाता है, कैंसर के मरीज हैं, हीमोफीलिया और थैमोसीमिया, जटिल ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी, या प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव होने के कारण हमको रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए रक्तदान महादान है,
1: बिल्कुल
0: हमें
1: और
0: अवश्य करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और थोड़ा सा हम भी बता देते हैं अपने श्रोताओं को। श्रोताओं, ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। उन्होंने ही 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में सुरक्षित रक्त आदान संभव हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर पहली बार 2004 में इस दिवस की शुरुआत की थी।
0: बहुत अच्छी जानकारी बता रही है।
1: हाँ जी, और इसके बाद मई 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे आधिकारिक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया, और तभी से हम इसको रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। कार्यक्रम में बातें हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं भी
0: हमारे श्रोता जो है लाइन पे बने हुए हैं, तो हम अपने श्रोताओं को लाइन पर ले लेते हैं।
1: हेलो जागरूक श्रोता। हेलो,
2: हेलो जागरूक श्रोता
1: जी, आवाज आ रही है आपको हमारी?
2: हाँ जी, आ रही है।
1: कौन बात कर रहे हैं, नाम बताएं आप अपना।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया उज्जैन से, क्या करते हैं आप वैसे?
2: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: प्रोग्राम आप हमारे सुनते हैं?
2: हाँ, मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ।
1: और अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ।
1: तो आप अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी आपने सुना होगा, है ना? सुना है कि नहीं?
2: जी बिल्कुल, रक्तदान पर बात चल रही है अभी।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे, रक्तदान क्यों जरूरी है?
2: जी, रक्तदान करना बहुत जरूरी होता है। किसी मुसीबत में कुछ लोग फंस जाते हैं, या किसी एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर ऐसे भी कई बार मतलब उनकी जरूरत पड़ती है किसी भी इंसान को। ब्लड देना मतलब 3 से 4-6 महीने में ब्लड देना जरूरी होता है, बट लोग कुछ समझते नहीं है। कुछ मतलब थोड़ी भ्रांतियाँ होती है कि ब्लड देने से हमें कमजोरी आ जाएगी।
1: बिल्कुल
0: जी,
2: ऐसा होता है कि ब्लड हमारे अंदर बनता है तो हमें देना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल, और देखिए, हाँ जी
0: बोलिए बोलिए।
2: मैंने भी रक्तदान किया हुआ है
1: जी, बहुत अच्छी बात है।
2: कुछ हाँ जी, ऐसे समस्या आई थी हमारे रिलेशन में ही कुछ लोगों को
0: जी,
2: जो उन्होंने ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो हमने खुद ब्लड दान किया हुआ है। बट ऐसे मतलब आपको बताऊं, इस तरह से काफी लोगों को मतलब आगे आना चाहिए, और ब्लड की जरूरत जिस भी इंसान को होती है तो जरूर देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिनको रक्तदान करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हर किसी के शरीर के अंदर होती हैं, तो अभी देखिए, अब जैसे हम रक्तदान करने के लिए जाते हैं, तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी इच्छा होती है कि इस मही जो भी हमारा काम चल रहा है, या ये ब्लड ग्रुप ब्लड दान करने का जो ये महाकार्य है, ये अपनी तरफ से सभी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी खून की जांच होती है, हमारे अंदर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, और जब हम स्वस्थ होते हैं तब हमारा खून लिया जाता है। ऐसे ब्लड जो है वो डॉक्टर नहीं लेते हैं, है ना? तो एक भ्रांति तो ये भी है कि अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपकी वहां जांच होती है, जो बिल्कुल फ्री होती है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और ये कहीं ना कहीं लाभ हमारे सभी हम सभी को मिलता है कि हम कहीं अपने, अगर कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता,
0: लेकिन अगर आप रक्तदान करते हैं तो पहले आपकी जो जांचें होंगी उसमें सारी जांच में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ज्योति, इन्होंने प्रेम सिंह ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि रक्तदान से शारीरिक कमजोरी आ जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रक्तदान जब आप करते हैं तो उसके कुछ ही घंटों में वो रिकवर हो जाता है। और देखिए लाइन कट गए हैं, लेकिन हम अपनी बात को जारी रखते हैं कि रक्तदान करने के बाद रक्त दिया गया जो रक्त होता है वो शरीर कुछ ही घंटों में उसको रिकवर कर लेता है।
1: बिल्कुल।
0: आयरन की कमी से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, तो इसलिए ये जो भ्रांति है गलत है।
1: बिल्कुल गलत है, और रक्तदान अपने आप में सेफ है, और रक्त भी उन्हीं का लिया जाता है जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। कार्यक्रम में हमारे पास लगातार कॉल आ रही है, तो हम अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो जागरूक श्रोता,
0: संपर्क इनसे करते हैं
1: जी।

0: हेलो जागरूक सोता, हेलो।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं शाही मार्केट से भारत से आसिफ चौधरी बात कर रहा हूँ।
0: आसिफ जी, स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: मुझे लगता है इनकी भी कॉल किसी वजह से कट हो गई है।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: हाँ, खमा घणी हुकम।
1: खमागणी, कहाँ कहाँ से और कौन बात कर रहे हैं
3: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
1: जी, अब वैसे आपकी खम्मा गणी से हम समझ गए थे कि आप राजस्थान से बात कर रहे हैं। मोहन जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया हूँ। और धूल भरी आनिया चल रही है और बारिश का भी थोड़ा अलर्ट हुआ है अभी।
1: अच्छा, उधर भी बारिश आ रही है? मौसम कैसा हो रहा है?
3: नहीं, मौसम तो बादल छाए हुए और थोड़ी धूल भरी आंधी अभी चल रही है धीरे धीरे।
1: तो अभी तो आपको बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद थोड़ा बारिश आती है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है और कहीं ना कहीं सुकून मिलता है हमें गर्मी से।
3: बिल्कुल मिलता है जी, मिलता है। अभी तो कूलर की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हवा आ जाती है।
1: क्या बात कर रहे हैं, सही बात है, कूलर की जरूरत नहीं है।
3: अभी कूलर की जरूरत नहीं है।
1: चलिए, तो हम आप प्रोग्राम सुनते हैं हमारे?
3: हाँ, नजीब बाबा जी सुनते रहता हूँ सर। और आज ने हेलो जागरूक श्रोता में कॉल किया है।
0: हाँ, आज कार्यक्रम में हमने क्या विषय, आप कार्यक्रम अगर सुन रहे होंगे तो बताइए किस विषय पर हम बात कर रहे हैं।
3: बात तो मैं वैसे मैं फोन में बिजी था क्योंकि बार बार कोशिश कर रहा था
1: तो आप नहीं सुन पा रहे हैं, है ना?
3: हाँ,
1: आप फोन लगाने में व्यस्त हैं तो आप हमारा प्रोग्राम फोन पर सुनते हैं?
3: हाँ, फोन पर, एप्स पर।
1: फोन ऐप पर सुनते हैं। चलिए, फिर हम समझ गए कि आप अगर लगातार हमारा फोन ट्राई कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप नहीं सुन पा रहे हो। कोई बात नहीं।
0: चलिए मोहन जी,
1: बता
0: हम
1: देते
0: आपको बता देते हैं कि रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां और लाभ, हम इस विषय पर आज आप श्रोताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो रक्तदान के बारे में आपकी क्या राय है मोहन जी?
3: रक्तदान तो करना चाहिए लेकिन थोड़ा टेस्ट तो जरूरी होना चाहिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है।
0: हाँ, जैसे
3: जैसे कोई कुछ मतलब कैंसर है, कोई एड्स है।
0: जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उसी को रक्तदान करना चाहिए। पहले अपने शरीर की जांच करा लेनी चाहिए। अगर आप पूर्ण स्वस्थ आपको चिकित्सक बताते हैं तो आपको रक्तदान अवश्य करना चाहिए।
3: हाँ, यही यही कहना चाहता था।
0: जी
1: जी, कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
3: एक मैम छोटा सा सुझाव है।
0: हाँ,
3: इसको रिकॉर्डिंग आधारित लगे तो हमें क्या पीछे का मतलब प्रोग्राम पूरा सुन पाए, नहीं तो हम तो फोन में व्यस्त हो जाते। प्रोग्राम कहाँ कब चला गया पता
1: तो
3: नहीं।
1: आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोन में रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है।
3: वो तो होता है लेकिन अभी वैसे मैं रिकॉर्डिंग करी कीजिए आधे घंटे की आप, और प्रोग्राम बाद में दीजिए।
1: आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपका अपना जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड करके बजाएं, लाइव ना करें?
3: हाँ, लाइट ना करे क्योंकि मैं अभी तो वैसे ही था, अभी मैं प्रोग्राम सुनूंगा
1: जी। तो वही बात आपकी
0: उसी के लिए तो
1: में
0: बता रहे हैं अभी कि आप अपने मोबाइल में जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग लगा दीजिए और बाद में सुन लीजिए।
1: बिल्कुल
3: ठीक है, ठीक है, धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद, आपने कॉल की और आपने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की।
0: अगला कॉल ले लेते हैं।
1: अगला कॉल हम लेंगे लोकेंद्र जी, लेकिन थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, एक भ्रांति हमारे सभी के मन में ये होती है कि सुई के जरिए एचआईवी की बीमारी होती है, है ना?
0: जी, जी।
1: लेकिन रक्तदान जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि हम जब भी रक्तदान किसी का रक्त लेते हैं तो हर बार वो नई सुई से लिया जाता है और उसी सुई को एक बार प्रयोग करके जो है और हम उसको फेंक देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: ये भ्रांति भी देना चाहिए
1: और बिल्कुल
0: जो भी रक्तदान कर रहा है उसको ध्यान देना
1: उसको
0: चाहिए,
1: ध्यान देना चाहिए
0: कि नई सुई का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक चीज, एक भ्रांति हमारे सभी लोगों में ये है कि जिन लोगों को मधुमेह है या उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो रक्तदान नहीं कर सकते।
0: ऐसा नहीं है,
1: लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर जो है वो ठीक है, आप प्रॉपर दवाइयां ले रहे हैं, नियंत्रित है, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं।
0: और एक भ्रांति ज्योति यह है कि रक्तदान करने से हम बीमार पड़ जाते हैं।
1: हाँ,
0: ये भी बहुत भ्रांति फैली हुई है, लेकिन ऐसा
1: लगता है कि हमने खून दिया है अपना तो कहीं ना कहीं हमें मानसिक, हम अंदर से अपने मन में सोच लेते हैं कि अब हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी।
0: लेकिन ऐसा नहीं है, बीमार हम नहीं पड़ते। हाँ, रक्तदान के बाद अपने खान पान पर हमें ध्यान देना
1: चाहिए, बिल्कुल विशेष ध्यान देना चाहिए। जो थोड़ा सा हमारा रक्त गया है वो रिकवरी जल्दी से हो जाए, और रिकवरी भी एकदम हो जाती है 24 से 48 घंटे में, आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन फील करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, अब कॉल ले लेते हैं, हमारे श्रोता लाइन पे हैं।

0: हेलो हेलो जागरूक श्रोता, और कार्यक्रम में हमारे पास कॉल आ रही हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक कॉल नहीं है, आ गई है। हेलो जागरूक श्रोता, आप
1: हेलो।
0: हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जागरूक श्रोता
2: हेलो जागरूक श्रोता,
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: अपना परिचय दीजिए।
2: मैं ग्राम धरौना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ जी।
0: जी
1: मदन गिरी
0: मदन
1: जी,
0: जी,
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ जी। मैं आप सुनाइए और आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं,
1: हाँ, आकाशवाणी
2: और मेरा
1: परिवार में।
2: ज्योति गोड को और लोकेंद्र जी को नमस्कार।
0: जी, हम
1: नमस्कार।
0: आपको भी हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ जी मैं। और जो आपने आज विषय चुना है
0: हाँ
2: बहुत ही
0: जी
2: महत्वपूर्ण विषय है,
1: जी
2: और मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि
1: बोलिए।
2: हम 14 जून को विश्व रक्तदान शिविर बना रहे हैं, तो ये आज आपने विषय चुना है बहुत ही अच्छा है।
0: जी,
2: और
0: और
2: मेरा जहां तक मेरा मानना है, हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए,
0: बिल्कुल
2: निर्धारित जो आयु है उससे उस तक,
0: बिल्कुल
2: क्योंकि
0: बिल्कुल
2: निर्धारित, मैंने कई बार रक्तदान किया है और निर्धारित आयु तक,
0: बिल्कुल
2: अब तो नहीं लेकिन निर्धारित आयु तक, अब तो मैं रिटायरमेंट हूँ और लेकिन उससे पहले किया है और तो करना चाहिए। मेरे बच्चे ने भी किया है, मैंने प्रेरणा दी है उन्हें और मैं समझाता हूँ कि भाई रक्तदान जरूर करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए रक्तदान एक ऐसा दान है जो हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। हमारे एक बूंद खून से किसी की जान बच सकती है। जब किसी कोई भी इंसान हॉस्पिटल में होता है या वो जीने मरने वाली हालात में होता है और उसको रक्त चाहिए होता है, तब ऐसा होता है कि कहीं से रक्त नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सगे संबंधियों से भी हमें रक्त नहीं मिल पाता है, तो अगर हम रक्तदान करते हैं तो ब्लड बैंक के द्वारा हमें वो रक्त मिल जाता है। लेकिन अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे और
1: तो ब्लड बैंक
0: हमारे
1: में भी रक्त कहाँ से
0: कहाँ
1: आएगा?
0: से आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सभी के अलग होते
1: अलग
0: हैं
1: अलग
0: तो
1: होते
0: मैच
1: हैं,
0: नहीं हो पाते हैं। हम
1: बिल्कुल।
0: चाहते भी हैं कि हम अपने सगे संबंधी जो भी हैं उनको हम रक्त दे दें,
1: इसीलिए
0: लेकिन नहीं
1: इसी
0: दे पाते
1: हाँ
0: हैं।
1: इसीलिए होता है कि जब आप रक्त किसी से रक्त लेते हैं तो आपको उसके बदले में
0: बिल्कुल
1: हाँ ब्लड बैंक को रक्त देना होता
0: देना
1: है।
0: चाहिए। चलिए, आपने
2: देखिए
0: फोन किया। जी
1: बोलिए मदन
2: मैं
1: जी।
2: तो यही कहूंगा कि सभी को रक्तदान करना चाहिए।
1: अच्छा मदन जी, एक भ्रांति है हमारे समाज में कि महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए, इस बारे में
2: जी
1: आपके क्या
2: गलत
1: विचार
2: है,
1: हैं?
2: गलत है जी, गलत भ्रांति है।
1: जी
2: ये रक्तदान जो है महिला भी कर सकती है और महिलाओं को करना चाहिए।
1: जी
2: जी
1: जी जी बिल्कुल
2: हाँ जी,
1: बिल्कुल सही
2: ये
1: आप
2: गलत
1: कह रहे हैं।
2: भ्रांति है। और ये भी गलत भ्रांति है कि जो है इससे जो है हमें जो है उसमें वीकनेस आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वीकनेस नहीं आती, अगर स्वस्थ व्यक्ति है और निर्धारित अपनी आयु तक रक्तदान करता है तो कोई वीकनेस नहीं आती, सामान्य स्थिति रहती है और हमें बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना
1: हाँ
2: चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आपने
1: देखिए
0: कार्य
1: 18 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य
2: जी
1: जो
2: जी जी
1: लोग हैं इस उम्र के, तो वो रक्तदान कर सकते हैं।
2: कर सकते हैं जी।
0: बिल्कुल, और कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आप हमें लगातार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और लोकेंद्र जी, पता है एक बात क्या है? एक बात यह है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है और हम
1: जी
0: रक्तदान करने जाएंगे तो हमारा 1-2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, हमारे पास 1-2 घंटा नहीं है। तो हम अब उन सभी से ये बोलना चाहेंगे कि देखिए श्रोताओं, रक्तदान करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी पूरी प्रक्रिया मात्र 45 मिनट या 60 मिनट
1: हाँ
0: में पूरी हो जाती है, और जिसमें रक्त निकालने में केवल 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप
1: बिल्कुल।
0: ये बिल्कुल ना
1: अब
0: समझे कि हमारा टाइम वेस्ट
1: बहुत
0: हो रहा
1: ज्यादा
0: है।
1: समय लगे। अब बहुत सारे
0: हाँ,
1: लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा
0: दर्द
1: भी
0: होता
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: हाँ,
1: केवल
0: ऐसा भी नहीं होता।
1: जब सुई लगाई जाती है केवल उसके
0: तो
1: बराबर ही
0: देखिए,
1: दर्द
0: सुई
1: हो
0: तो हम
1: सकती
0: जब इंजेक्शन लगवाते हैं उस
1: है।
0: भी दर्द लगता है।
1: भाई कोई भी
0: तो
1: बीमार
0: हाँ
1: हो जाता है, हमको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तब
0: बिल्कुल
1: भी दर्द होता है, तो
0: बिल्कुल,
1: उतना बहुत थोड़ा सा दर्द
0: थोड़ा
1: होता
0: सा
1: है।
0: दर्द होता है उसमें, फिर पता नहीं चलता। तो हम अब सभी से, ये जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि
1: कि
0: आप
1: दान
0: रक्तदान जरूर
1: अवश्य
0: करें,
1: कीजिए, रक्तदान
0: रक्तदाता
1: बहुत
0: बने।
1: महत्वपूर्ण है, किसी की
0: जी
1: जान आप बचा रहे हैं, तो इसलिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो ज्योति, अगला एक बार फिर से हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, अपने श्रोता को लाइन पर लेते हैं।
0: हेलो
2: हेलो।
0: हेलो जागरूक श्रोता,
2: हाँ जी हेलो जागरूक
0: कौन बात
2: श्रोता
0: कर रहे हैं?
2: जी। बुढ़ापुर पुराने बस स्टैंड से एम ताहिर बोल रहा हूँ मैं
0: ताहिर,
2: जी।
0: कैसे हैं ताहिर जी, क्या करते हैं आप?
2: बस दुआएं हैं, नजर इनायत है मैम। मैं एक शॉपकीपर हूँ फिलहाल
0: शॉपकीपर हैं? अच्छा, तो
2: जी।
0: आप शॉप पे अब प्रोग्राम

0: सुनते हैं बैठे बैठे हमारे?
1: मैडम जी प्रोग्राम तो आपके जब से सुनते हैं, जब प्रेम कुमार शर्मा जी थे, रजनीश गुप्ता जी थे, जयरंदर जी थे
2: जी जी जी
1: और सुनील वर्मा जी थे।
0: हाँ हाँ, तो ऐसे आपकी आपकी एज क्या रही होगी अब तक?
1: 35।
0: अच्छा, तो फिर तो आप बहुत टाइम से प्रोग्राम सुनते हैं। अगर आपकी 35 साल आप अपनी एज बता रहे हैं तो क्या बचपन से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी बेशक।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत पुराने श्रोता मिल गए। तो प्रोग्राम आज का सुन रहे हैं आप हमारा?
1: हाँ, अब तो मोबाइल पे सुनना आरंभ किया है दोबारा से। ये दूसरी पारी जो करी है ना शुरुआत, इसी मंथ से की है।
0: अच्छा, बीच में आपने छोड़ दिया था?
1: बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि रेडियो तो हट गए थे लेकिन हाँ। मोबाइल एप्लीकेशन से दोबारा लिंक हुआ।
0: हाँ,
1: है,
0: तो आप... बीच में बहुत सारी परेशानी आई थी, ये कि हमें रेडियो नहीं मिल पा रहे थे मार्केट में।
1: जी जी
0: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने फिर से रेडियो सुनना शुरू किया है और हमारे श्रोता बने हैं, आप फिर से जुड़े हैं रेडियो के साथ। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कि नहीं?
1: बिल्कुल कार्यक्रम नहीं सुन पा रहा हूँ लेकिन आपकी मधुर आवाज सुन पा रहा हूँ।
0: तो अगर आप कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं तो आवाज कैसे सुन पा रहे हैं ये बताएं।
1: बाइकॉल बाइकॉल
0: जी
1: बाइकॉल।
0: अच्छा जी जी जी जी जी, तो कार्यक्रम में हम आपको बता देते हैं, हमारा आज का विषय है रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां और लाभ। क्या कहना चाहेंगे आप, हमें रक्त मतदान करना चाहिए कि नहीं?
1: अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसे रक्तदान करना चाहिए क्योंकि एक महादान है किसी की जिंदगी के लिए।
2: जी जी बिल्कुल, किसी के जीवन को खतरे से उबारने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
1: इसमें सर कोई दो राय नहीं है।
0: और ये बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि
1: जागरूकता कम? मैडम जागरूकता कुछ लोगों में कमी है
0: जी, बिल्कुल
1: भ्रांतियां पैदा हुई, नहीं तो इसका कोई साइड इफेक्ट मेरी नजर में तो नहीं है
0: जी। और बल्कि ऐसा होता है जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं ना जहाँ हमारा कोई लालच नहीं होता, तो वहाँ वो चीज करने के बाद एक अंदर से खुशी मिलती है, अंदरूनी बिल्कुल अंदरूनी संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने आज अपने देश या अपने समाज के लिए बिना स्वार्थ हमने आज कोई कार्य किया है, तो उसकी खुशी अलग होती है। क्योंकि
1: मैं भी इस बात के लिए आपके पूरे रूप से साथ हूँ, आपकी बिल्कुल 100% सही
0: है ना।
2: और ताहिर जी हम तो देखिए आपके माध्यम से आप जुड़ रहे हैं तो अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि रक्तदान से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। देखिए हाँ, जैसे अगर हम बात करें नियमित रक्तदान अगर आप करते हैं जो उसका गैप है जैसे 3 महीने के बाद आप रक्तदान करते हैं तो हृदय रोग का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है
1: और हमारे अंदर से दूर होता है सर।
2: जी जी, आयरन का स्तर जो है वो संतुलित हो जाता है और रक्तदान के बाद हमारा शरीर जो है वो तेजी से नया ब्लड को निर्माण करने लगता है।
0: चलिए, आपने कॉल किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने कॉल किया।
1: मुझको भी बहुत अच्छा लगा, आप जैसे सक्सेस से दोनों से रूबरू हुआ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे
0: जी, हमें भी अपने श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगता है।
2: शुक्रिया शुक्रिया ताहिर जी, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत।
0: हेलो जागरूक श्रोता,
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ आपका श्रोता।
2: अशोक सिंह जी, हमारा भी नमस्कार आपको।
3: जी सर, कैसे हैं आप?
2: हाँ हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: हम भी हाँ। अच्छे, आपने आज अच्छा विषय रखा है रक्तदान के बारे में।
2: हाँ, तो आपके क्या विचार है, हम आपके विचार जानना चाहेंगे इस बारे में।
3: रक्तदान करना चाहिए, मैंने भी किया है सर, स्वस्थ होना जरूरी है
2: जी,
3: और इसमें भ्रमित वाली बात ही नहीं है, रक्तदान कवर हो सकता है 1-2 दिन में
2: जी,
3: ऐसी चीजें पाई जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। देखिए किसी जरूरतमंद की जान बचाने के लिए जो है हमें रक्तदान करने के बाद असीम मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है। तो आपने अशोक सिंह जी आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा हमें। हेलो जागरूक श्रोता।
4: हेलो जागरूक श्रोता वासा, नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
0: कौन बात कर रहे हैं?
4: जी मैं उत्तराखंड से निकाल से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी।
0: प्रकाश जी कैसे हैं? वैसे हम आपकी आवाज से आपको पहचान गए थे,
2: हमारे नियमित
4: मैडम जी। धन्यवाद धन्यवाद
2: प्रकाश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और सभी कार्यक्रमों में आपकी बराबर प्रतिभागिता रहती है, तो बताइए आज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप?
4: ऐसा आज का जो ये आपका जो ये उसका क्या कहते हैं जो ये उसे आपने टॉपिक बनाया था
2: जी,
4: ये बहुत ही बढ़िया है कि रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए और उसमें खून भी साफ होता है
0: जी,
4: उसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि रक्तदान तो करना ही चाहिए।

0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: नहीं मैडम जी, आज का प्रोग्राम सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा,
0: चलिए
1: क्योंकि जिन लोगों को फोन की जरूरत पड़ती है या उनका ग्रुप मिलता है तो उन्हें फोन दे देना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल। देखिए ये रक्तदान महादान इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम अपना ब्लड बिना किसी स्वार्थ के किसी भी व्यक्ति को देते हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हम तो ब्लड दे के अपना रक्तदान करके आ जाते हैं, लेकिन वो हमारा रक्त किस व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है या किस व्यक्ति की उस ब्लड से जान बच रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है। हमें
1: बहुत ही
0: पता भी नहीं
1: महत्वपूर्ण।
0: होता कि हमने किसकी जान बचा ली है ना।
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ,
0: जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: रक्तदान के बाद जिस व्यक्ति की जान बची है तो उसके बाद जो हमें आत्मिक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता।
0: और उस व्यक्ति की हमें दुआएं मिलती हैं कि जिसका भी रक्त था, जिसकी वजह से मेरी जान
1: जान
0: बची
1: बची
0: है,
1: है
0: उसको ईश्वर भगवान अल्लाह जो भी है सुखी रखे और उसको अच्छी उम्र दे, है ना।
1: हाँ जी हाँ।
0: चलिए,
1: तो प्रकाश
0: कार्यक्रम
1: चंद
0: में
1: जी,
0: आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, लेकिन एक चीज हम अपने श्रोताओं को और बता दें कि
1: जी
0: देखिए हम जब रक्तदान करते हैं ना, तो उससे हमारी कैलोरी भी बर्न होती है।
1: बिल्कुल,
0: लगभग 650 कैलोरी बर्न हो जाती है हमारे एक
1: एक
0: बार
1: बार
0: के
1: रक्तदान करने
0: रक्तदान
1: से।
0: से, ठीक है। और मानसिक संतुष्टि तो हमें सभी को मिलती है, क्योंकि जो भी कार्य कार्य हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, उसके लिए तो हम, पता ही है, नेचुरल सी बात है कि हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमने कुछ तो अच्छा
1: कुछ तो
0: किया
1: अच्छा
0: है
1: किया है जिससे जो
0: अपने
1: है,
0: लिए,
1: हाँ,
0: जी
1: जिससे एक समाज का हमने भला किया है।
0: समाज का भला किया है। कार्यक्रम में अगली कॉल ले लेते हैं।
1: हेलो जागरूक सोता जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जी भैया, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़ा। योगेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: आप हमारे प्रोग्राम साफ सुनते हैं?
1: हाँ जी एकदम बढ़िया आ रहा है।
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हम तो फोन इन ही ज्यादा सुनते हैं और गीत संगीत,
0: अच्छा, गीत संगीत और फोन इन, बाकी क्यों नहीं सुनते हैं?
1: मतलब बाकी भी सुनते हैं लेकिन सब अलग अलग स्टेशन सुनते हैं
0: हो
1: तो
0: अच्छा, आप बहुत
1: सबको।
0: सारे स्टेशन से
1: हाँ
0: सुनते हैं जी,
1: जी
0: समझ गए हैं हम। तो आज क्या प्रोग्राम आप सुन रहे हैं?
1: जी इसमें मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं
0: तो हमारा विषय आपको पता है?
1: जी, रक्तदान।
0: हाँ, तो
1: हाँ,
0: क्या
1: क्या
0: कहना
1: कहना
0: चाहेंगे
1: चाहेंगे योगेश जी
0: आप
1: आप?
0: हैं एक रक्तदाता या बनेंगे या बनने की सोच रहे हैं?
1: है, हम तो मतलब पहले से ही जो सामाजिक जागरूकता हो या फिर ऐसा कोई भी चीज जो लोगों अन्य लोगों के काम आ सके,
0: हाँ,
1: हमेशा तत्पर रहते हैं।
0: तो आपने रक्तदान किया है कभी?
1: हाँ जी,
0: कब किया है?
1: ये अभी कुछ दिन पहले ही किए थे अपने यहाँ बेमेतरा जिला मुख्यालय में,
0: अच्छा।
1: और जगह जगह, और जैसे कभी कभी सूचना मिलता है ना तो एक अंतराल में, 3-4 महीने के अंतराल में मतलब करते हैं।
0: तो कैसा फील होता है आपको, कैसा महसूस करते हैं आप रक्तदान करने के बाद?
1: बढ़िया लगता है क्योंकि जनसेवा का कार्य है और हमारे थोड़े से प्रयास से अगर किसी को जीवन मिलता है, किसी को लाभ होता है तो ये एकदम सुखद वाली चीज होती है।
0: और वैसे कैसा फील करते हैं? आपको लगता है कि आप बीमार पड़ने वाले हैं या आपको
1: या
0: वीकनेस हो
1: कमजोरी
0: रही है
1: महसूस
0: या
1: हो रही है?
0: कमजोरी महसूस हो रही है, ऐसा कुछ होता है आपके
1: नहीं,
0: साथ?
1: ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रक्तदान करने से वो थोड़ा बहुत जो ब्लड निकलता है वो तो कुछ ही समय में बन जाता है, तो
0: जी।
1: इस तरह की कुछ भी भ्रांति नहीं रखते कि उससे हमें नुकसान होगा।
0: तो देखिए,
1: जी
0: हमारे सभी श्रोताओं, हमारे इन श्रोता ने कहा है, अपने विचार इन्होंने दिए हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, वो इन्होंने बताया है। तो अपने श्रोताओं से भी हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अभी आपको भी जागरूक होना चाहिए, आपको भी जागरूक होने
1: की
0: की जरूरत
1: आवश्यकता
0: है, बिल्कुल आवश्यकता है,
1: और
0: क्योंकि
1: निसंकोच होकर आपको रक्तदान।
0: निसंकोच होकर आपको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से हमें कोई कमजोरी फील नहीं होती, हमें कोई बीमारी नहीं होती। तो जो भी भ्रांतियां ये हैं, उनको आप एक साइड रख के और जन कल्याण के इस कार्य में, समाज के इस कार्य में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें।
1: ज्योति अगली कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: हेलो जागरूक श्रोता,
2: सर जी नमस्कार,
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरविलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ सर जी।
1: अभिलाष सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के जागरूक श्रोता कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर जी।
1: आप क्या करते हैं?
2: खेती किसानी करता हूँ सर जी
1: चलिए,
2: मैं।
1: बहुत अच्छा काम, आप खेती किसानी करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं?
2: बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं शुरू से ही, और कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहूंगा।
1: जी, स्वागत है, इरशाद।
2: विश्व रक्तदान

0: गागर में सागर इन्होंने
1: हाँ
0: सारी बात
1: बिल्कुल
0: जो हम कर
1: बिल्कुल,
0: रहे थे सबका सार इन्होंने इन पंक्तियों के अंदर
1: एक
0: ले
1: पंक्ति
0: लिया।
1: के अंदर इन्होंने डाल दिया है जी। और हमारी
0: धन्यवाद
1: आधे
0: दोस्तों
1: घंटे की
0: आप लोगों की।
1: बातचीत आपने आप इन पंक्तियों में सारी की सारी जाहिर कर दी, और बड़ी पसंद आई हमें आपकी। आप लिखते
0: बहुत
1: हैं
0: बहुत
1: या कैसे?
0: हम लिखते हैं समसामयिक, हमेशा अभी आपका विषय सुना तभी से लिखा, तभी लिखनी पंक्तियां हूँ।
1: बहुत
0: क्या
1: बढ़िया,
0: बात
1: बहुत
0: है
1: अच्छा,
0: सर।
1: बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। क्या इसके अलावा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कभी आप रक्तदाता बने हैं? आपने कभी रक्तदान किया है?
0: जीवन में केवल एक बार, अब तो मेरी उम्र 75 साल की हो
1: जी
0: गई।
1: हाँ, तो अभी आपको नहीं भी करना चाहिए, हम भी यही कहेंगे आपसे। जी
0: जीवन में एक बार रक्तदान किया था, और 5 वैसे तो कम महीने बता दें 3 महीने, लेकिन 5 6 महीने में कोई मुझे बिल्कुल जाने नहीं पड़ा था कैसे क्या, मतलब दिक्कत है, कोई
1: हाँ,
0: दिक्कत
1: तो
0: नहीं।
1: हम बस यही कहना चाहेंगे कि जिस भी जैसी जितनी भी भ्रांतियां इस समय हो रखी हैं, कि बहुत सारी हैं, कि फिर हमें वीकनेस फील होती है, और
0: जी
1: HIV का हमने सुना है कि बहुत से लोग कह देते हैं कि वो एक ही सुई इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसी का भी ब्लड और किसी को भी लगा देते हैं तो उसमें HIV होने का खतरा रहता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो
0: ऐसा
1: आपकी भी
0: बिल्कुल नहीं है।
1: 75 साल की इस समय एज हो रखी है, उम्र हो रखी है, तो आप भी बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी। हम आशा करते हैं आगे भी आप स्वस्थ रहेंगे।
0: देखिए ज्योति, अब कार्यक्रम का
1: बिल्कुल
0: समय
1: बिल्कुल,
0: समापन की ओर हो रहा है, तो
1: और
0: हरविलास सिंह
1: हरविलास
0: जी,
1: जी अब
0: हाँ
1: हमारे अंतिम श्रोता थे जिनसे
0: आपने
1: हमने
0: हमें
1: बात
0: कॉल
1: की।
0: किया, बस जल्दी से
1: बहुत
0: अगर आप
1: बहुत
0: हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहें तो जल्दी से बता दीजिए। सर जी, मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं से, सभी से रक्तदान अवश्य करें, सभी भ्रांतियों को दूर करें, और समाज में परहित का कुछ न कुछ काम करें, रक्तदान बहुत जरूरी है देश के लिए।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: और
1: हरविलास सिंह जी, आपने
0: इसी
1: हमें
0: के
1: कॉल किया।
0: साथ हम भी यह कहना चाहेंगे श्रोताओं कि आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है, रक्त अमूल्य है, इसका दान जरूर करें। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की ज्योति गौड़, और लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जानवर से, गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथी।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म जानवर का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।

कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म बादल का ये गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में फिल्म बादल का एक गीत सुना। गीत के लिए शब्द रचना थी समीर की और संगीत था अनु मलिक का। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे।

0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत फिल्म राज से। गीत लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम शर्वण ने, गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

अभी आपने अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में फिल्म राज का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत फिल्म बरसात से। गीत के लिए शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का है, गायक कलाकार हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति। आइए सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत।

अभी आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में फिल्म बरसात का ये गीत सुना। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है।

0: इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बारी होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। घर संसार कार्यक्रम में आज दोपहर 1:15 पर बाल श्रम के खिलाफ दिवस, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही क्रम होगा माटी म्हारे देश की। आज शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शिशु सुरक्षा को मजबूत करती योजनाओं के अंतर्गत श्रोता सुन सकेंगे जानकारी। मिशन इंद्रधनुष अभियान, किलकारी मोबाइल ऐप और मात्र एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड के विषय में। आज रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत का सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद प्रसारित किया जाएगा। विविध कलाकारों के स्वर में आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत नाथ हमारे श्रोता सुन

कार्यक्रम युवाणी में आज शाम 5:15 पर क्रम होगा। कुछ खास है आज, बूझो तो जाने। ये शाम गजलों के नाम, लव स्टोरीज और यंग अचीवर्स। आज दोपहर 12:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मधुमात सारंग। दर्शन सिंह के स्वर में गढ़वाली लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:45 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। तो श्रोताओं, आज हम बात करते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए हैं और उनका नाम सपना है। तो श्रोताओं, हम सुनते हैं कि सपना जवानी के दिनों में विधवा होने के कारण किस प्रकार से अपने बेटे का पालन पोषण करती है, अपने परिवार को चलाने के लिए पति के ना होते हुए किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करती है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे सपना अकेले ही नहीं लड़ी, बल्कि उनके संघर्ष की कहानी के पीछे कुछ ऐसी ही महिलाओं का साथ रहा है जो खुद अपने जीवन में उन परिस्थितियों में चुनौतियां दे पाई थी। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: अरे भाई श्यामलाल, कहाँ हो? बाहर तो निकलो।
2: अरे भाई साहब, आप आज सुबह सुबह?
1: अरे भाई श्यामलाल, तुझे पता नहीं, हमारे पड़ोस में जो छोटा राजू है ना, आज सुबह सुबह पता चला कि राजू का बाप बेचारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी।
2: अच्छा भाई साहब, ये सब कैसे हुआ?
1: बेचारा लंबे समय से बीमार चल रहा था और मुझे तो तब पता चला। हमारे पड़ोस के लोग उनके घर पर इकट्ठे हो रखे थे और सुना है पीछे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चल बसा।
2: तो भाई साहब चलो चलते हैं, इस मुश्किल के समय उस परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है।
3: सपना बहन, सारे दुख को भूल जाओ, चिंता मत करो, सब ईश्वर पर छोड़ दो।
2: बहन जी, हम जानते हैं तुम्हें बहुत बड़ा दुख हुआ है अपने पति के जाने का। अब आपको इतने गम में डूबने की कोई फायदा नहीं। आपका एक बेटा है ना, जो आपकी जिंदगी को आगे लेकर चलेगा।
3: सही बात है सपना बहन, श्यामलाल काका सही बोल रहे हैं। अब तो तुम इस छोटे से राजू का चेहरा देखकर इसके सहारे ही जी लेना और इस गम से हटकर बच्चे के बारे में सोचना।
0: श्रोताओं, इस प्रकार से सपना अपने पति को खोने के बाद अपने आप में अकेली पड़ जाती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। और इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं और सपना को अपने परिवार में अपने पति की कमी महसूस होने लगती है। और फिर एक दिन
2: अरे सपना बहन, कैसे हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? और राजू बेटा कैसा है?
4: भाई साहब क्या बताऊं, जब से राजू के पापा गए हैं ना, तब से जिंदगी बेसहारा सा लगने लगी है। लेकिन क्या करूं,

0: अभी तो राजू केवल 5 साल का हुआ है और इसकी परवरिश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
1: सपना बहन, आप चिंता मत करो, मेरे गांव में महिलाओं का एक समूह चलता है जहां पर सारी महिलाएं ऐसी ही परिवारों से आती हैं, जिनके परिवारों में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं। किसी के परिवार को नशे ने खराब कर दिया और किसी के परिवार वाले इस दुनिया को छोड़कर चल बसे।
0: तो श्यामलाल भाई, ऐसे समूह में जुड़ने के लिए बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं चाहिए होंगी ना? लेकिन मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और भला मैं उस समूह के साथ क्या काम कर सकती हूँ?
1: अरे नहीं बहन सपना, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सभी प्रकार की महिलाएं हैं और उन महिलाओं ने यह निर्णय लिया है कि वो एक दूसरे का सहारा बनेंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा काम शुरू किया है कि उस काम को सभी महिलाएं मिलजुल कर करती हैं।
0: तो भाई साहब, वहाँ पर मेरे हाथ का क्या काम हो सकता है कि जो मैं कर सकूं?
1: सपना बहन, इस समूह में स्त्रियां मिलजुल कर काम करती हैं, जैसे कि सिलाई, बुनाई या कोई भी घरेलू काम, जिससे महीने में जो भी आमदनी आती है उसको आपस में बांट लेती हैं, जिसके कारण सभी महिलाओं का घर का गुजारा चल जाता है। तो मुझे लगता है आप भी उस समूह के साथ हिस्सेदारी निभाओ, वहाँ से कुछ न कुछ आपके परिवार की मदद हो सकती है।
0: ठीक है भाई साहब, अगर आप इस काम में मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बस आप मुझे उस समूह के साथ मिला दीजिए।
2: इस प्रकार से सपना गांव के उस महिला समूह के साथ जुड़ जाती है और महिलाओं के उस समूह के द्वारा सपना के आने पर उसे बहुत ही उत्साहित किया जाता है और उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। और समूह की महिलाएं आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं और वे आपस में कहती हैं, हमें अपनी जिंदगी के जंग को खुद ही लड़ना है। हम महिलाएं समाज में कोई कमजोर कड़ी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस प्रकार सपना समूह की एक मेंबर बन जाती है।
3: आप सभी महिला समूह की बहनों को नमस्कार। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे समूह में एक सदस्य जुड़ चुकी है जिसका नाम है सपना देवी। तो आइए हम इस समूह में ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। सपना जी, आपका इस समूह में स्वागत है। कल से आपको सुबह 9 बजे हमारे समूह के साथ हाथ बटाना है, जिसमें आपकी आर्थिक जरूरत समूह के द्वारा पूरी की जाएगी।
0: मैडम जी, आप लोगों के साथ जुड़ने से मेरा बहुत हौसला बढ़ा है, लेकिन बस एक ही बात की चिंता हो रही है कि कैसे न कैसे मैं अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा सकूं। बस मेरी जिंदगी की यही एक तमन्ना है।
3: सपना जी, आप चिंता मत करो, हमारा जो समूह है ना, इतना आत्मनिर्भर बन चुका है। बहुत सी माताओं ने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया लिखाया ही नहीं है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए हमारे समूह के द्वारा मदद की जा रही है। तो जरूर आपकी भी हमारा समूह इसी प्रकार मदद करेगा, आप किसी भी बात की चिंता ना करें।
2: श्रोताओं, जैसे जैसे राजू अपनी उम्र में बढ़ता जा रहा था, वैसे ही राजू अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी बढ़ रहा था। यह सब सपना देवी यानी राजू की माँ की मेहनत और संघर्ष के कारण यह संभव हो पाया। और राजू की सफलता के पीछे सिर्फ उसकी माँ का ही नहीं बल्कि महिला समूह का भी हाथ रहा।
4: पोस्टमैन। नमस्ते बहन जी, राजू का घर यही है क्या?
0: जी भाई साहब, यही राजू का घर है।
4: बहन जी, जरा राजू को बाहर बुलाइए, उसके नाम से एक पत्र आया है।
0: राजू, ओ राजू बेटा, इधर तो आ जरा।
5: जी माँ, अभी आया।
4: राजू, ये लो आपका पत्र और यहाँ पर साइन कर दीजिए।
0: अरे बेटा राजू, ये तेरे लिए किसकी चिट्ठी आई है?
5: अरे माँ, अभी तो मैंने खोला भी नहीं, अभी देख कर बताता हूँ आपको।
0: चल राजू बेटा, ठीक है मैं जा रही हूँ अभी, मुझे काम के लिए देर हो रही है।
5: अरे माँ रुक तो सही, एक बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ तुझे। तेरे बेटे राजू को भारत सरकार से नौकरी लगने के लिए ऑफर लेटर आया है और मेरी नौकरी भी लग गई है।
0: अरे बेटा राजू।

0: क्या ये सच है?
1: हाँ माँ हाँ, ये देख तेरे बेटे के लिए सरकार से बुलावा आया है। और माँ सुनो, अब तुझे अपने काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब तेरा बेटा अपनी माँ की भी सेवा करेगा और नौकरी भी करेगा।
0: अरे नहीं बेटा राजू, आज जो हमारी जिंदगी में ये खुशी का पल आया है ना, इसके पीछे सिर्फ तेरी माँ अकेली नहीं है बेटा, लेकिन इस संघर्ष के पीछे उन बहुत सारी महिलाओं का भी हाथ है, जिन्होंने उस महिला समूह के द्वारा मुझे जीवन में परिस्थितियों का सामना करना सिखाया है बेटा।
1: अरे माँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब हमें उस महिला समूह के ऊपर बोझ नहीं बनना है, बल्कि ऐसी बहुत सारी महिलाओं की भी मदद करनी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों से जी रही हैं।
0: हाँ बेटा राजू, पता ही नहीं चला कब तू इतना बड़ा हो गया और साथ ही साथ समझदार भी।
1: और माँ, जो मदद आपको समूह से मिलती है, अब उस मदद को हम नहीं लेंगे, बल्कि हम उस समूह की आर्थिक रीति से मदद करेंगे।
0: सुन बेटा राजू, अभी मुझे देर हो रही है, मैं तुझसे शाम को बैठकर बातें करूंगी। और बेटा, ये खुशखबरी बड़ी मैडम को भी तो देनी है ना।

0: अरे सपना बहन, आज आप लेट हो गई हो क्या? और आज ये मिठाई का डब्बा कहाँ जा रहा है?
1: नमस्ते मैडम जी। अरे मैडम जी, छोड़ो सब बातें और सबसे पहले आप मुंह मीठा करो।
0: लेकिन सपना, ये तो बताओ, ये मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है?
1: मैडम जी, मेरे बेटे राजू की सरकारी नौकरी लग गई है।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। मैं अकेली ही मुंह मीठा नहीं करूंगी, क्यों ना हम अपने समूह के साथ आपके संघर्ष की कहानी सुनाकर और दूसरी बहनों को उत्साहित करें और एक ही साथ मुंह मीठा करें।
1: ठीक है मैडम जी, पहले हम अपने समूह तक पहुंचते हैं।
0: सभी महिला समूह को सुबह की नमस्ते। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके बीच एक ऐसे संघर्ष भरी कहानी को जो हमारे बीच में चुनौतियों से भरी रही है, और वो कहानी किसी और की नहीं लेकिन हमारे ही समूह की एक महिला की कहानी है। और वो महिला है हमारी सपना बहन, जिन्होंने संघर्ष किया और आज उनका बेटा राजू पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग गया है। और इतना ही नहीं, अब सपना बहन हमारे समूह को आर्थिक रूप से मदद करेंगी। तो आइए इस खुशी में सपना बहन आप सबका मुंह मीठा करवाएंगी।
1: मैं आप सभी महिला समूह के बहनों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे उत्साहित किया और जीवन के संघर्ष में मुझे सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

तो श्रोताओं, सुना आपने कि किस प्रकार से सपना अपने जीवन में समस्याओं के आने के बावजूद भी संघर्ष के साथ सभी बातों को चुनौतियां देते हुए जीवन में आगे बढ़ पाई। और यह इसलिए हो पाया जब सभी महिलाओं ने सपना को उसके मुश्किल भरे और कठिन समय में उसका साथ दिया। और सपना ने भी जीवन में हार नहीं मानी, बल्कि सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक बनी। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527444995। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक

दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:15 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पंडित जसराज का गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मधुमात सारंग। आपके साथ तबले पर संगत में है केदार पंडित।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज से गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मधुमात सारंग। आपके साथ तबले पर संगत में थे केदार पंडित। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। आप सभी श्रोताओं को आपके दोस्त लोकेंद्र का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म खूबसूरत से। इस गीत को गुलजार साहब की बेहतरीन कलम ने लिखा है और संगीत जतिन ललित का है और उदित नारायण और अभिजीत की युगल आवाज का एक लाजवाब संगम है। नजर से अपनी जो देखा तो तुम हंसी लगे। नजर से अपनी जो देखा तो तुम हंसी लगे। दिल की नजर से देखा तो तुम ही लगे। खामोश निगाहों में तेरी जादू का असर है। खामोश निगाहों में तुम्हारे जादू का असर है। हर लफ्ज़ तेरा जैसे कोई मीठी टगर है।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं वर्ष 2000 की सुपरहिट फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म का ये गीत। और ये गीत अपनी चुलबुली और रोमांटिक प्रकृति के लिए जाना जाता है। इस गीत के भाव और मस्ती भरे एहसास बिल्कुल सटीक बैठते हैं। धड़कनों में बस गया है कोई, धड़कनों में बस गया है कोई, इन आंखों में समा गया है कोई, अब किसी और की चाहत नहीं रही, क्योंकि मेरी जिंदगी में आ गया है कोई।

0: पिंकी, प्रीति, प्रशांत के स्वर में अभी आपने हर दिल जो प्यार करेगा इस फिल्म का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए

0: नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये सूचना राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के संबंध में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं हिमेश रेशमिया, विनीत सिंह और साथियों के स्वर में फिल्म खिलाड़ी 786 का एक गीत। गीत और संगीत हिमेश रेशमिया का है। तेरी आंखों का नशा कुछ इस कदर छा गया, धुआं धुआं इश्क का हर पल महका गया, कभी आर कभी पार, दिल धड़कता है बार बार, सच में सनम तेरा प्यार जैसे हुक्का बार।

अभी आपने खिलाड़ी 786 इस फिल्म का ये गीत सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म मुस्कान का ये मशहूर गीत, जो बेहद ऊर्जावान और मस्ती भरा डांस ट्रैक है। इस गीत में संगीत की चुलबुली मस्ती, ढोल नगाड़ों की थाप और खूबसूरत नज़ारों का मेल आपको देखने को मिलेगा। सच के संवर के जब तू महफिल में आती है, सच के सवर के जब तू महफिल में आती है, तेरी हर एक अदा पे दिल मचल जाता है। ढोल की थाप पे जब तू कदम थिरकाती है, महफिल में जैसे कोई मौसम बहार का आता है।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना फिल्म मुस्कान में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय मिड डे मेलोडी कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने। फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म के इस गीत में एक रोमांटिक एहसास को बयां करता हुआ यह गीत प्यार की गहराई, आंखों की खूबसूरती और दिल में बस जाने के जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। आइए सुनते हैं ये गीत। तेरी आंखों का जादू कुछ ऐसा असर कर गया, तेरी आंखों का जादू कुछ ऐसा असर कर गया, देखते ही देखते ये दिल तेरा ही घर कर गया। धड़कनों को भी कुछ पता न चला, कब तुम्हारी आंखों ने हमें अपना बना लिया।

0: एक बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ समेत पहली बार 28 रियासतों और 5 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़ीर-ए-आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ़ को हासिल करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आला के दूरंदेश तबसरों और उनकी रियासतों में किए गए कामों से फ़ायदा उठाया। खिदमत, गुड गवर्नेंस और लगन को वक्फ़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत के 12 बरस मुकम्मल होने के ज़िम्न में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोकभवन में मीडिया से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक रियासत में भी हर शहरी को बाइख्तियार बनाने को तरक्की की बुनियाद बनाकर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में फ़ाल किरदार अदा कर रही है।
1: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा है, यहाँ माहौलियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाजमी है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौतम बुद्ध नगर में UPSRTC की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का इफ्तिताह करने के मौके पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली तक में 15 जून से ई सिटी बसें चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 510 बसें चलाई जाएंगी, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ 110 सिटी बसें चलेंगी। इसके बाद 100 ई सिटी बसें वज़ीर-ए-आला ई सिटी बस स्कीम के तहत 4 से 5 महीने में दस्तियाब कराई जाएंगी। गुज़िश्ता 12 बरसों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर भारत में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई है। हुकूमत की जानिब से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इकदामात पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक

0: फ्रॉड के लिए एआई से चलने वाली डीप फेक वीडियोस का तेजी से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वह अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, मशकूक लॉगिन की कोशिशों से चौकन्ना रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन की बाकायदगी से निगरानी करें। उनसे ये भी कहा गया है कि वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी मशकूक मालियाती लेनदेन की इत्तला फौरी तौर पर दें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज लखनऊ में महकमा मेहनत और रोजगार एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद चाइल्ड लेबर के खात्मे के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और माशरे के बच्चों को तालीम, तहफ़ और मजमू तरक्की के हकूक के बारे में आगाह करना है। प्रोग्राम में तकरीबन 800 शुरका की शिरकत मुतवक्के है। कल रियासत के अक्सर ज़िलों में तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में कल रात से मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पीलीभीत ज़िले में भी रात से सुबह तक बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अज़ला में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

लो जी, फिर आ गया एक और शुक्रवार, हमें खींच लाया हमारी बहनों का प्यार, अर्थारी बहना कुमुद हाजिरा लेके थारा मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। कार्यक्रम सुनने वाली सारी बहनों को कुमुद की प्यार भरी राम राम। आज क्या क्या है हमारे बातों के पिटारे में? अरे बहनों, पहले अपनी राजी खुशी तो बता दो, सब चौके हैं कि ना थारी घर परिवार में? ए सुमन जी जी, थारी गैया बीमार हो रही थी, अब ठीक है? चलो बहना, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। हाँ तो बहना, तुम बूझ रही थी ना हमारे बातों के पिटारे में आज क्या कहेगा, तो थम जाओ, अभी थोड़े से जरूरी संदेश सुन लें, फिर शुरू करेंगे खोलना इस पिटारे को भी।

0: चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: इन संदेशों के बाद हमारी सभी बहनों का एक बार फिर स्वागत थारे अपने कार्यक्रम घर संसार में। तो बहनों, खोलना है इस पिटारे को, तो देखें आज क्या निकलेगा। ओहो, आज तो बड़ा ही खास दिन मनाया जा रहा है बहना। कौन सा? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। बहनों, बालक किसी भी देश के आने वाले कल की तस्वीर हूँ मैं। है तुम्हें भी पता है तो देश का आने वाला कल कैसा होगा, इसका पूरा जिम्मा इसी बात पे है कि वहाँ के बालकों को पढ़ लिखने के बराबर मौके मिल रहे हों, उनकी सेहत का ध्यान रख के उन्हें अच्छा और पौष्टिक भोजन मिल रहा हो, और उनकी खेलकूद या दूसरी चीज़ों में बराबर की भागीदारी हो रही हो, और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो रहा हो। तो बिना अगर आज के दौर में किसी भी देश में ये बातें हो रही तो इसका मतलब सचमुच वो देश तरक्की की राह पर है, और अगर ना आए तो इसका मतलब उस देश में बालकों के लिए अभी बतेरा काम होना बाकी है। बिना हम अपने आसपास नज़र घुमावे हैं तो देखें कई नन्हे हाथ मजदूरी करते मिल जाएंगे, चाय की दुकानों पर बर्तन धोते हुए या बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी भट्टियों के पास खतरों भरा काम हो, हर जगह छोटे छोटे बालकों का काम करना।

0: आज आम बात हो गई। अब चाहे इसका कारण गरीबी समझ लो, भाई गरीबी है घर में, खाने को भी ना मिलता तो भी माँ बाप क्या करें, उन्हें काम पे लगाए दें, और भी बतेरे कारण हो जाएं। लाखों बच्चों का बचपन इस वजह से ख़त्म हो रहा है। जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए उनका तो दूर दूर तक कहीं जिक्र ही ना होता, कोई ना सोच रहा उनके बारे में। बच्चों को खदानों, कारखानों जैसे खतरनाक जगहों पे कई बार बड़ी मजबूरी में काम करना पड़ा है बहना, जहाँ कई फेरी वे जहरीले पदार्थों के संपर्क में भी आ जाएं, और कई बार तो उन्हें अपने अपने से ज़्यादा बड़ी और भारी मशीनें भी चलानी पड़े हैं कारखानों में बहना। खेती के कारण काम हो, घरेलू काम हो, या सड़क किनारे देखोगे तो अपना सामान भी बेचते हुए, तो ऐसे मेहनत के कामों में लंबे टाइम तक उन्हें काम करना भी बाल मजदूरी का ही भयानक रूप है यो। और भिन्न सबसे ज्यादा भयानक रूप तो जब दिखाई दे बाल मजदूरी का, जब छोटे बालकों को नशीले चीजों की तस्करी में या वेश्यावृत्ति जैसे आपराधिक कामों में ढकेल दिया जावे। इस तरह के हालात उनकी मासूमियत को छीन के उन्हें खतरों के सामने ला के खड़ा कर दे हैं। बालकों की गैल हो रहे इस अन्याय को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सबसे पहले साल 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना करी थी, और तब से भी ना हर साल 12 जून को ही वही दिन मनाया जा है। मकसद साफ ही है, बच्चों का शोषण ना हो। बाल मजदूरी के लिए देखो सरकार तो कड़े कानून बना रही है और कोशिश भी करे कि उनका पालन भी हो, लेकिन समाज में भी जागरूकता बढ़नी चाहिए। अब छोटे छोटे हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए, खिलौने मिलने चाहिए उन्हें खेलने को, और उनका बचपन मिले उन्हें जीने को। साल 2026 में बाल मजदूरी के खिलाफ एक नारा दिया गया है, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल और वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम, यानी कि बालकों को उनका बचपन जीने का भरपूर मौका मिला। अरे बहना, दुनिया में कहने को इतनी तरक्की हो रही, पर फिर भी अगर आंकड़ों को देखें ना तो करोड़ों बालक आज भी बाल मजदूरी में लगे हुए हैंगे। तो आओ मिलके आज बाल श्रम के खिलाफ इस विश्व दिवस पे हम बाल मजदूरी के खिलाफ लाल कार्ड उठावें। लाल कार्ड का मतलब बाल मजदूरी के खिलाफ एकजुट हों, में बाल मजदूरी को ना करें, आवाज़ उठावें इसके खिलाफ, और कोशिश करें, कार्रवाई करें, अपनी तरफ से जितना हो सके प्रयास करें कि बालकों को बालकों का बचपन वापसी मिले, उनके हाथों में किताबें हों, उनके हाथों में खिलौने हों, और मजदूरी उन्हें ना करनी पड़े। तो बहनों, आज की इस खास बातचीत के बाद अब बारी आज के क्रम की, पर अभी सुनेंगे थोड़े से और जरूरी संदेश।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: बहनों, जैसे तो तुम बहुत पुराने टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हो, तो तुम्हें भी बेरा हो गया होगा। आज है माह का दूसरा शुक्रवार और आज हमारा क्रम रह वह है माटी मारे देश की का। तो चलो शुरू करें आज का माटी मारे देश की क्रम।
3: माटी मारे देश की,
4: माटी मारे देश की।
0: तो बहना, स्वागत है थारा सभी का आज के माटी मारे देश की क्रम में। बहनों, हमारा भारत देश जितना बड़ा है उतनी ही विशाल यहाँ की संस्कृति है। हमारे तीज त्यौहार, हमारी परंपराएं, हर समुदाय और प्रदेश में मनाई जाने वाली रस्में सभी बहुत अलग और अनोखी हैंगी। आज हम बात करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों में शादी से जुड़ी कुछ अनोखी परंपराओं के बारे में, जिनमें हंसी मजाक को की गैल छुपी हुई सांस्कृतिक मान्यताएं इस बंधन को और भी खास बना देवे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की। यहाँ शादी में एक बड़ी प्यारी रस्म हो है बहना, जूता छुपाई। इसमें दुल्हन की सहेलियाँ या छोटी बहनें दूल्हे के जूते चोरी करके छुपा दे मैं, और जूते वापस करने के बदले दूल्हे से नेक में पैसे लें या उपहार की मांग करें हैं। और एक और रस्म हो है मटकौर, जिसमें शादी से पहले घर की जनानियां कुदाल और मिट्टी के घड़े लेकर तालाब या मिट्टी की खान पर जामे हैं और वहां पूजा करके वहां की मिट्टी लेकर आमे हैं, जिसे मंडप के नीचे उसी मिट्टी से वेदी बनाई जा है। और बहना बिहार राज की बात करें तो बिहार में बारात के स्वागत के बाद दुल्हन और दूल्हे की माँ आपस में गले मिले हैं और दोनों तरफा की औरतें हंसी मजाक वाले गाली गीत गावे हैं और उन गीतों का कोई बुरा भी ना मानता, सबको पता है भाई शुभ मौके पर गाए जाए ये। और इस शादी के दौरान लड़की वालों की तरफा से दूल्हे को मछली और दही शगुन के रूप में दी जा है, जिसे बड़ा ही शुभ माना जा। बहनों गुजरात राज की बात करें तो वहाँ शादी से पहले मंडप का पहला खम्बा गाड़ने की रस्म होवे है, जिसमें सारा परिवार मिलके पूजा करे है और नवविवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगे है। अब पता एक और मजेदार रस्म होवे है वहाँ, जो दूल्हा मंडप में आवे है ना तो दुल्हन की माँ उसकी आरती उतारे है और उसकी नाक खींचे है, यो नाक मजाकों में खींची जाए जिससे दूल्हे को पता लगे कि हाँ भाई वो शादी करने जा रहा है। ऐसी और मजेदार रस्मों के बारे में आगे बात करेंगे पर इस प्यारे से गीत के बाद।

बहनों, अब बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की। यहाँ फेरों के समय दूल्हा और दुल्हन के बीच एक रेशमी कपड़ा रखा जा है। मंत्रों का उच्चारण पूरा होने के बाद ही कपड़ा हटाया जा, जिससे वे दोनों एक दूसरे को देख सकें। और राजस्थान राज्य में, वहाँ पे बहना शादी के टाइम पे दूल्हा दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर पहुँच के तलवार या नीम की लकड़ी से तोरण को मारे है। ऐसा माना जा इससे नया जोड़ा बुरी नज़र से बचा रहेगा। और बहना तमिलनाडु राज्य में तो बहुत ही अनोखी रस्म हैगी, काशी यात्रा। इसमें शादी के दिन दूल्हा ऐसा नाटक कराएगा कि वो सन्यासी हो गया, वो ना करा ब्याह हुआ, तो फिर दुल्हन के पिता उसे समझा बुझा के ले काम है भाई भैया उसके और उसके पिताजी, और शादी की अहमियत बता के गृहस्थी बसाने को मना में है। तो बहनों, इन प्यारी सी जानकारी के बाद फिर एक बार बारी गीत संगीत की, तो आओ सुन लें ये एक और प्यार।

बहनों, कुछ बंगाली शादियों में एक सदियों पुरानी परंपरा हैगी, जिसमें दुल्हन के परिवार की शादीशुदा औरतें सूरज निकलने से पहले उठ के मिठाई या अगरबत्ती से थाली तैयार करें हैं और उसे लेकर नदी के किनारे जामे हैं और पावन गंगा नदी को अपनी बेटी की शादी का आशीर्वाद देने के लिए बुलावा दे में हैं। तो ब्याह में देवी आशीर्वाद की कामना से यह परंपरा निभाई जा। बहनों, यहाँ पे एक रस्म और है पश्चिम बंगाल में, सात पाक। इसमें दुल्हन पान के पत्तों से अपना चेहरा ढके है और उसके भाई उसे उठा के दूल्हे की चारों तरफ सात चक्कर लगवावे हैं और ये सात चक्कर पूरा होने के बाद दुल्हन अपने चेहरे से पान के पत्ते हटा के दूल्हे को देखे है। उसके बाद ही दोनों एक दूसरे को माला पहनावे हैं। तो ये अनोखी रस्म।

वास्तव में बड़ी मजेदार हूँ बहना। अब फिर से बारी एक और प्यारे से गीत की, तो आओ सुन लें कार्यक्रम का यह अंतिम गीत।

0: बहनों, कहने को ये महज रस्में हैं, परंपराएं हैं, पर देखा जाए तो इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिनमें हंसी मजाक, ठिठोली के जरिए दोनों परिवारों और उनके रिश्तेदारों के आपसी रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश हो वह है। इसी के साथ आज का माटी मारे देश की क्रम यहीं समापन करते हैं।
1: माटी मारे देश की,
2: माटी मारे देश की।
0: बहन, थारे से बातें करते करते कितनी जल्दी बखत पूरा हो जा पता ही ना चलता। आज के कार्यक्रम के बारे में

राय हमें इस पते पर चिट्ठी लिख के जरूर भेजियो, और बताओगी तो हमें बहुत बढ़िया लगेगा। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। बहनों एक बात और, आप तुम तो सब फोन चलाना जानती होंगी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप चला लेती होंगी। हाँ, तो अब उस पर भी तुम हमारे कार्यक्रम के बारे में अपने विचार लिख के हमें भेज सको हो। तो लगे हाथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, बता दें, लिखो 9457078288। एक बार और बता दें, 9457078288। और हमें जरूर लिखियो कैसा लगा तुम्हें कार्यक्रम। इसी के साथ अपनी भिन्ना कुमुद को दो अनुमति कार्यक्रम का समापन करने की। बहनों राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं दर्शन सिंह।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत गढ़वाली लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं दर्शन सिंह।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय गढ़वाली लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं दर्शन सिंह। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गढ़वाली लोकगीत।

इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। इसमें आज आपने दर्शन सिंह से गढ़वाली लोकगीत सुने। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाश

0: the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-host Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री के

0: खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं

0: से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म फिजा से ये कव्वाली, जिसको लिखा है शौकत अली ने और संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने। गायक कलाकार हैं कादर गुलाम मुस्तफा, मुर्तजा गुलाम मुस्तफा और साथी।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्मी कव्वालियां सुन रहे हैं। सुनते हैं साबरी बदर, सोनू निगम और साथियों के स्वर में ये दिल।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम में आप सुनते हैं अदनान समी के स्वर में फिल्म बजरंगी भाईजान से एक कव्वाली। शब्द रचना कौसर मुनीर की है और संगीत प्रीतम का।

अभी आपने ये कव्वाली सुनी। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत के अंतर्गत फिल्मी कव्वालियां सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और कव्वाली, फिल्म सिर्फ तुमसे। अमीन साबरी, फरीद साबरी, जसपिंदर नरूला और साथियों के स्वर में। शब्द रचना समीर की है और संगीत नदीम शरवण का है।

अमीन साबरी, फरीद साबरी और साथियों की गाई फिल्म सिर्फ तुम की इसी कव्वाली के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी प्रसारण

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। द्वितीय प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत।

किलकारी मोबाइल ऐप और मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड। तो आइए पहले जानकारी लेते हैं मिशन इंद्रधनुष के विषय में। श्रोता मित्रों, ये योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रमुख टीकाकरण अभियान है। साल 2014 से शुरू किए गए इस अभियान का लक्ष्य 2 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण के लिए कवरेज प्राप्त करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान करना और उन्हें टीका लगाना

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है मिशन इंद्रधनुष।

क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त टीकाकरण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना के बाद आइए जानते हैं किलकारी मोबाइल ऐप के विषय में। श्रोता मित्रों, किलकारी मोबाइल कार्यक्रम, जिसका अर्थ है बच्चे की गुटरगू, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। ये गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर निशुल्क साप्ताहिक ऑडियो संदेश सीधे परिवार के मोबाइल फोन पर भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काम कैसे करता है ये, तो इसमें लाभार्थियों को इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस IVR या व्हाट्सएप के माध्यम से मुफ्त पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो संदेश प्राप्त होते हैं, और इसमें प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और शिशु देखभाल शामिल हैं। ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है और 26 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। क्योंकि किलकारी मुख्य रूप से एक आउटबाउंड कॉल सेवा और सरकार के आधिकारिक RCH प्लेटफॉर्म पर एक सुविधा के रूप में काम करता है, इसलिए जानकारी सीधे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। यदि आप नामांकन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक किलकारी और मोबाइल एकेडमी MIS रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आइए जानकारी लेते हैं मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड के संबंध में। ये भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्रदान किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दस्तावेज है। ये वार्ड गर्भावस्था से ये कार्ड गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 5 वर्ष तक के स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण का संपूर्ण रिकॉर्ड रखता है। ये कार्ड बच्चे को लगने वाले सभी टीकों जैसे BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, मीजल्स जैसे टीकों की तारीख और अगले टीके का समय बताता है। गर्भावस्था के समय माँ की जांच, वजन, BP, खून की जांच का विवरण भी इसमें दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना JSY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK का लाभ प्राप्त करने के लिए भी ये कार्ड आवश्यक है। इसमें बच्चे के शुरुआती 1000 दिनों के पोषण, स्तनपान और शारीरिक विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। ये कार्ड नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ANM या आशा कार्यकर्ता के माध्यम से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ये एक स्थायी कार्ड है, इसलिए इसे फटने और खराब होने से बचाना चाहिए। तो श्रोताओं, ये था आज का मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में जानकारी, और अब एक गीत आपके लिए।

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज आपने जानकारी ली, मिशन इंद्रधनुष, किलकारी मोबाइल ऐप और मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड के संबंध में। इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। फरहा रहमान, पुत्री शाकिर अंसारी, पत्नी मोहम्मद आसिफ अंसारी, निवासी लाल मस्जिद के पास हीरा साउंड सर्विस के सामने वाली गली से 25/5/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 28 वर्ष, रंग गोरा और लंबाई 5 फीट 3 इंच है। फरहा रहमान के संबंध में कोई सूचना होने पर कृपया श्याम पाल जी, उप निरीक्षक थाना धामपुर को इस नंबर पर सूचना देने का कष्ट करें। नंबर है 8273050667। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8273050607। एक अन्य गुमशुदा जो हैं अकील, पुत्र यासीन, निवासी ग्राम भनेड़ा, थाना किरतपुर बिजनौर से 13/5/26 को शाम 5 बजे से लापता हैं। इनका रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 6 इंच, उम्र 50 वर्ष, आंख नाक कान औसत, बाल काले, नीली टी शर्ट, काला लोवर और काले रंग की सादा हवाई चप्पल पहने हैं। इनके विषय में कोई जानकारी होने पर पुष्पेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष किरतपुर को इस नंबर पर सूचना दें। नंबर है 9454403131। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9454403131। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दे दें। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन से संबंधित पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। कानूनी सलाह कार्यक्रम में एडवोकेट अतर सिंह से एसके नोटियाल की बातचीत आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा बाल श्रम रोकने संबंधी कानून के विषय में। समय रहेगा शाम 6:45। नातिया कलाम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर। श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:32 पर आपके लिए लाएंगे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। रागिणी आपको सुनवाएंगे धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:15 जिसमें आकर्षण होंगे आधी आबादी से ऐसा देश है मेरा और चलते चलते। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में चंक होंगे कुछ खासे आज गीत आपके नाम, बूस्टर्स और फिल्म संगीत। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे लोकगीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। कल रात 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो दोस्तों, विश यू आर वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज की इस बेहतरीन और खूबसूरत शाम के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त शुमाइला।
1: नमस्कार, मैं हूँ यूसुफा जैदी।
0: जी हाँ, तो दोस्तों मौसम भले ही अजीब और गरीब हो, कभी तजली जलती गर्मी तो कभी है बारिश की झमझम, आप कह सकते हैं कि नेचर फुल चाइल्ड मूड में है।
1: सही कह रही हैं आप, शैतानियां तो यही बता रही हैं मौसम की।
0: है ना।
1: वैसे मौसम और मासूम में थोड़ा ही फर्क है, दोनों का अगर ख्याल रखा जाए तो आगे चलकर ये राहत दे सकते हैं।
0: और जो इनका ख्याल ना रखे उनके लिए बनता है कानून,
1: जैसे
0: जैसे बिना इजाजत के पेड़ काटना अपराध है, पॉल्यूशन में इजाफा करना गलत है।
1: और अनुच्छेद 48A में ये सब आता है कि पेड़ नहीं काटने हैं, पर्यावरण की हिफाजत करनी है, वगैरह वगैरह।
0: तो दोस्तों मौसम का संविधान तो हमने डिस्कस कर लिया, अब जरा बारी है मासूम के संविधान की।
1: और वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले पूछ लेते हैं आज का बूझो तो जाने का सवाल।
0: तो सवाल संविधान से ही है कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे आस आस कर लोट कोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: पता है चुनमुन, ये दुनिया ना बड़ी जालिम है। हर चीज यहाँ पे ना पैसों की है, यहाँ तक कि हवा भी जो है ना वो भी मुफ्त नहीं मिलती।
3: मुनमुन सही कह रही है तू, और सोच जरा अगर चॉकलेट्स पेड़ पर मिलती तो।
2: हाँ कितना मजा आता, लपक लपक के तोड़ लिया करते।
3: यार मैं तो सुबह शाम टॉफी चॉकलेट्स खाया करती।
4: मैं नहीं खाती फिर आलू गोभी टिंडा।
2: अच्छा अब तुझसे आगे सोच। सोच रही ना?
4: हाँ हाँ बता।
2: सोच अगर पेड़ पर पैसे हुआ करते तो कितना मजा आता।
3: अबे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कैसे मुफ्त में मिल जाते हमें पैसे। मैं तो बोरी भर भर के रख लेती।
2: मिलते मुफ्त में, अनार आम भी तो पेड़ पर उगते हैं, कभी मिले मुफ्त में, बढ़िया ही।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: वेलकम बैक दोस्तों। तो हम कहाँ थे यूसुफा?
2: संविधान पर।
5: मासूम का अर्थ है इनोसेंट, लाइक चाइल्ड, और संविधान यानी कानून। अब आप सोचें कि इस बेदर्द जमाने ने मासूम बच्चे को इतना सताया है कि कानून को अपने हाथ लंबे करने पड़ ही गए आखिर। समझे?
2: हम समझाते हैं। आपने वो फिल्म देखी है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं?
5: नहीं देखी। तो बेसिकली कहानी ये है कि एक मासूम बच्चा होता है जो अपने बड़ों की गलती की वजह से बहुत कुछ सहता है।
2: और ऐसी कहानी हमारे आसपास रोज हो रही है, जहां बचपन को नोच लिया जाता है, उन नन्हे हाथों में मजदूर और तशला और जिम्मेदारी थमा दी जाती है।
5: कितना बुरा लगता है ये सोचकर भी कि हम इस जमाने में भी अपने घर में गमलों को सजा कर रखते हैं, और जो नन्हे मासूम असली फूल होते हैं उन्हें नौकरी पर रखते हैं।
2: आज 12 जून है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और इस दिन हमें वादा करना है कि हम किसी छोटे बच्चे को कभी मजदूरी भीख मांगने नहीं देंगे।
5: बिल्कुल, तो वादा मौसम का ख्याल रखो और मासूमों का भी, दोनों ही कि इस दुनिया की खूबसूरती हैं।
2: तो कैसी लगी आज की खास बात? अच्छी लगी? तो चलिए अच्छी अच्छी बातें और भी कर लेते हैं।
5: जी हाँ दोस्तों, अब अच्छी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जो है यंग अचीवर्स। यंग अचीवर्स, जिसमें आज आप सुनेंगे निष्ठा गुप्ता की नंदिनी से बातचीत।
6: जिंदगी में कुछ पाना और उसे हासिल करना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, लेकिन जो इसे हासिल कर लेते हैं उनसा खुशकिस्मत भी कोई नहीं होता। तो दोस्तों, यंग अचीवर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं नंदिनी महेश्वरी, और हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी टैलेंटेड सी अचीवर है। इनसे पहले इनका नाम जानते हैं।
7: मेरा नाम निष्ठा गुप्ता है।
6: तो हेलो निष्ठा, क्या करती हैं आप?
7: मैं तीरंदाजी करती हूँ।
6: ओके, देन आर्चरी। खैर ये तो बहुत ही आगे का कॉन्सेप्ट हो गया। आपकी लाइफ की बेसिक्स पे चलते हैं। तो आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई?
7: मेरी एजुकेशन 5th तक तो मैंने बिजनौर से करी। मैं प्रैक्टिस मथुरा में करती हूँ, तो मैं उधर ही से एजुकेशन ले रही हूँ।
6: तो ये बिजनौर से

0: वहां तक इतना जो डिस्टेंस है ये कैसे कवर किया है? एकदम से ये शिफ्ट कैसे आया? आपके फादर कुछ जॉब करते हैं जो शिफ्ट हुए या कोई और बात है?
1: नहीं, मेरे फादर को आर्चरी अच्छा लगा गेम, वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करूं।
0: तो आपके फादर आर्चर हैं या आपकी फैमिली में कोई और है जो आप इस लाइन में आई हैं?
1: नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है।
0: तो जैसे जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो बैंकिंग में, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में कराते हैं, आपके फादर स्पोर्ट्स की तरफ एकदम से ऐसे उनका आया इंटरेस्ट, तो वो खुद चाहते थे उनके पेरेंट्स, या उन्होंने सोच रखा था कि एक तो इतना टफ स्पोर्ट, ऊपर से उनकी छोटी सी बच्ची जो कि 5th स्टैंडर्ड में, उसको वहां से हॉस्टल और कोचिंग की तरफ ले जाना, ऐसे कैसे बना?
1: हाँ, वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ। उनको मतलब उनको वो चाहते थे कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स करे, फिर इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। काफ़ी छोटी सी उम्र में ही भेज दिया था।
0: तो वही मैं पूछना चाहूंगी, जो छोटी सी उम्र में आप गई थी, तो आपकी मम्मी आपसे मिलने आया करती थी, आपके डैडी, या वो कैसी थी वाइब जब आप पहली बार वहां गई?
1: अभी मैं मथुरा में 6 साल से रह रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब भी किसी के पेरेंट्स आते हैं, मतलब आते हैं पहले देख के जाते हैं हॉस्टल कैसा है, फिर कि हमारा बच्चा इधर उधर खाना कैसा है, वो कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव कर पाएगा, वैसे फिर उसके बाद उसको घर ले जाते हैं, फिर उसको थोड़ा दिन प्रिपेयर करते हैं, फिर छोड़ के जाते हैं। बट मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं था, वो मुझे डायरेक्ट ही हॉस्टल छोड़ के आ गए थे। नहीं उन्होंने कुछ देखा। फिर मैं मुझे बहुत सब कुछ बहुत टफ लगता था, मैं सरवाइव नहीं कर पाती थी उधर, और सब वहाँ मुझसे सीनियर थे, तो इसीलिए मैं वैसे ही उन सब के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर पाती थी। सार उधर सब कुछ सेल्फ करना होता है, सब कुछ बहुत टफ था मेरे लिए। फिर धीरे धीरे करके मैंने खुद को संभाला कि नहीं, अब खुद ही करना है मुझे सब कुछ। फिर मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना मुझे।
0: तो आपकी लाइफ मथुरा में, जब आप सब चीजें बैलेंस होने लगी, आपको खुद काम करने लगी आप, तो उसके बाद कैसे रही
1: उसके
0: कोचिंग?
1: ओके कोचिंग टेक्निकली मतलब मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती थी, जैसे सर ने कुछ बताया कि ये करना है,
0: तो क्विक लर्नर हैं आप?
1: या मैं बहुत जल्दी उसको कवर कर लेती थी, तो मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थी। फिर मैंने उधर प्रैक्टिस से, तो मैं हमेशा से मैं बहुत मेहनत करती थी, सबसे पहले उठना, फिर सब कुछ अपना जल्दी जल्दी करके प्रैक्टिस पे पहुंचना, फिर पूरे फोकस के साथ मुझे प्रैक्टिस करना वो ग्राउंड में जाना, उधर जाके अपने धनुष धनुष हम जाते हैं पहले, उसको धनुष को देखते हैं, उसको उठाते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब करना। स्टार्टिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, बट उसके बाद जब मैंने सब कुछ संभाला और फिर मेरे को बहुत पसंद था अपना ये, मुझे ग्राउंड से रूम पे आने का मन ही नहीं करता था, ऐसा लगता था बस ग्राउंड में ही रहूँ, पूरे दिन प्रैक्टिस करती रहूँ, और ऐसे मुझे मेहनत करना बहुत पसंद था।
0: ओके, तो वो पहला सिलेक्शन या पहला आपको जो बूस्ट मिला कि आपने कुछ किया और आपको फील हुआ कि अब हाँ मैं इसमें आगे कर सकती हूँ, वो क्या मोमेंट था?
1: तो मैंने आरएचटी ज्वाइन की 2020 में, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता था, बोरिंग लगता था सब कुछ, घर की बहुत याद आती थी। फिर 2023 में अक्टूबर में मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स में सेलेक्शन लिया, तो वो सीनियर टीम में, तो बहुत सीनियर जो भी जो सेलेक्ट नहीं हुए थे सीनियर, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये तो बहुत छोटी है, ये सीनियर टीम में नहीं जा सकती, हम आप इसे कैसे भेज सकते हैं। फिर जो संभालते हैं उन्होंने कहा नहीं, जो सेलेक्टेड जाएगा तो वही। फिर मुझे मैं उससे बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यार मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं कर सकती हूँ।
0: और बाकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको रोक करके आपको चांस दिया गया,
1: यस
0: क्या
1: यस
0: एज होगी आपकी उस वक्त?
1: उस टाइम मैं 11-12 साल की थी मैं।
0: ओ गॉड, तो मतलब ये एक तो ये ना कि उस पॉलिटिक्स के माहौल को भी फेस करना, जो क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो एक रहती है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनके सामने कोई मतलब एक थोड़ी सी ईगो तो हर्ट होती है, वो जाते हैं उस चीज को आप फेस किया, आपने उसको सर्वाइव किया, उसके बाद एक छोटी सी एज में इतना बड़ा, आपने इतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो फीलिंग कैसी थी?
1: वो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह मैंने इतना अच्छा कर मतलब मैं कर सकती हूँ, मैंने किया कि मैं सीनियर टीम में सेलेक्ट हुई, मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। और फिर नेशनल गेम्स में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं टॉप 16 तक गई, ओवरऑल रैंक मेरी 18 बनी थी, मुझे
0: तो
1: बहुत अच्छा
0: फिर
1: लगा।
0: गाड़ी जो है वो आगे कैसे बढ़ी आपके सिलेक्शन से?
1: उसके बाद फिर नेशनल गेम्स के बाद मैं गई गुजरात 2023 में ही स्कूल गेम्स में, उधर मैं चैम्पियन बनी, 3 गोल्ड होते हैं वो, तीनों गोल्ड मेरे थे।
0: लड़की सोना है।
1: उसके बाद मुझे और ज़्यादा मैं हुई कि अब तो पता चल गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने किया, फिर तो मैं कंटिन्यू टीम में रहने लगी। फिर मैंने सीनियर का सिलेक्शन ट्रायल था, मैं उसमें 5th रैंक पर रह गई, 2 पॉइंट्स है फर्स्ट में। मुझे बहुत हर्ट हुआ कि ये क्या हो गया। फिर मैंने फिर से ट्राई करा 2nd टाइम, उसमें भी मैं रह गई 5th पे 1 पॉइंट से। फिर मुझे और ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैं कर सकती थी, मैं नहीं कर पाई। देन 3rd अटेम्प्ट में मैं 3rd रैंक से ही सेलेक्ट हुई सीनियर टीम में। फिर मैं अपना फर्स्ट सीनियर नेशनल खेलने गई और उधर भी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है धार एमपी में, उधर की एक मैम आई, उन्होंने कहा कि आप हमारा धार ज्वाइन कर लो, हम आपको बिना ट्रायल के बिना किसी उसके ले लेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं जिधर प्रैक्टिस कर रही थी अपने सर के पास, मैं उधर ही हूँ और अब भी मैं उधर ही हूँ।
0: दैट इज सो स्वीट। इसे कहते हैं लॉयल्टी। आप अगर अपने कोच के साथ इतनी रिस्पेक्ट रखती हैं, इतना उनको सब उनके जो गाइडेंस है उसमें रहना चाहती हैं, तो ये जाहिर है बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपको आगे लेके जाएगी। ये नहीं कि कुछ अच्छा चमकता हुआ दिख रहा है तो जो है आपके पास उसे छोड़ दो। ये वैल्यूज दिखाती है। एंड चलिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई आपके पास, आपके फादर का क्या रिएक्शन था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका है आपकी आर्चरी में।
1: वो जब भी मैं मैच खेलने जाती हूँ, लाइक मैं हॉस्टल में हूँ, तो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं आता मुझसे बात करने में। वो करते
0: वो
1: हैं
0: आई थिंक
1: फोन,
0: वो रहती होगी ना कि अगर मैं बात करूंगा तो शायद थोड़ी सी इमोशनल हो जाएगी,
1: नहीं
0: फोकस
1: वो
0: नहीं
1: ऐसा
0: करेगी।
1: उनका कुछ नहीं है। अब तो मेरा हॉस्टल में भी मुझे मन लग जाता है, बट हॉस्टल में मेरी उनसे 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होती। और मैं मैच खेलने जाती हूँ, और मैं खुद फ़ोन करती हूँ, उनका फ़ोन भी नहीं आता। मैं मैच खेलने जाती हूँ, उनके इतने फ़ोन आ जाते हैं, क्या रहा अब, क्या रहा रैंकिंग में, क्या रहा एलिमिनेशन में, क्या रहा। और फिर जब मैं मेडल मैच में होती हूँ, तो वो फ़ोन करके बार बार पूछते कब है मेडल मैच, कब है, हम देखेंगे, हम सब देखेंगे। फिर जब मेरा मेडल मैच हो रहा होता है, तब देखते हैं वो, पूरा लाइव देखते हैं। उसके बाद जब ख़त्म होने के बाद मैं जीत जाती हूँ, फिर फ़ोन आता है उनका, बहुत खुश होते हैं वो
0: उस
1: कि
0: वक्त होता कि
1: हाँ
0: गले लगा के खूब
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा खेली। तो मैं हार भी जाऊं तो अभी वो यही बोलते हैं, बहुत अच्छा खेली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगी, यहाँ तक तो पहुंची
0: यहां
1: तू।
0: तक तो पहुंची थी।
1: हाँ
0: तो अभी आपका क्या स्टेटस है, कौन सी सीढ़ी पर हैं आप?
1: अभी मैं वर्ल्ड कप की सीढ़ी पे हूँ।
0: थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: मैं वर्ल्ड कप, जैसे मेरे वर्ल्ड कप के ट्रायल होते हैं या एशिया कप के ट्रायल होते हैं, तो ऐसा होता है मैं 4 या 5 दिन का वो ट्रायल होता है, मैं लास्ट डे तक खेलती हूँ, बट एंड मोमेंट पे मैं टीम में सेलेक्ट होने से रह जाती हूँ। पिछले 2 बार से मैं 5th रैंक पे रह रही हूँ, और एक बार तो मैं इतना, मतलब मैं 0.25 से 5th रैंक पे थी, और मुझे इतना सीरियसली उस दिन इतना दुख हुआ बहुत। और एक मैच में तो मैं ऑलमोस्ट सेलेक्ट थी, बस वो मेरा मैच ना लास्ट एरो का मैच था, और मैं एंड मोमेंट पे बस वो एक एरो ने मेरा पूरा मैच खराब कर दिया।
0: कोई बात नहीं। आपको याद है आप पहले बता रही थी कि आप 2 बार हारी थी, उसके बाद आपको चांस मिला था। तो ये दो नंबर दो ना आपके लिए कुछ आई थिंक है, जो 2 बार हार जाती है ना तो अगली बार याद रखिए, इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी, तो मेरे लिए सब बेटर होगा। अगर हम आपसे कहें कि आपने एक तो छोटी सी लाइफ में इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो थोड़े से एक्सपीरियंस अगर आप हमारे लिसनर्स के साथ बांटेंगे कि कोई एक टिप जो उनको देना चाहें।
1: बिल्कुल। मैं तो बस सबसे यही कहना चाहती हूँ, नेगेटिव मत रहो कभी भी, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, और जो लाइफ में करना है उसको अचीव करो।
0: चलिए, थैंक यू सो मच निष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा।
1: वेलकम।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: ओए मुनमुन, तुझे पता है कल मेरे दोस्त का बर्थडे था?
3: अच्छा, तो क्या क्या हुआ वहाँ पे?
2: अबे तू वो सब छोड़, तो पहले ये सुन। मैंने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया मैंने उसको, अपनी पॉकेट मनी से लेके।
3: हैं, सच में? तो वो तो बड़ी खुश हो गई होगी।
2: बड़ी खुश हो गई होगी, एक थैंक्स तो उससे बोला ना गया।
3: पता है चुनमुन, इंडियन लोग ना गिफ्ट लेने के बाद यही करते हैं, वो किसी को थैंक्स वैंक्स नहीं कहते, वो तो बस कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहाँ मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जिंदगी के हर मोड़ पर नया इम्तिहान मिला, कभी दर्द तो कभी मुस्कान का सामान मिला।
3: हम चलते रहे फैसलों का हाथ थामे, तभी हर मुश्किल में भी रास्ता आसान मिला।
2: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम को एक और नया मोड़ देते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट लव स्टोरीज की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे लव स्टोरी उस मोड़ तक, एपिसोड नंबर 5, जिसको पेश किया है हमारे युवानी साथी रुमान परवीन ने।
6: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
7: दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ सफर अब कामयाबी की ओर बढ़ने लगा था। माहिरा की मेहनत रंग ला रही थी। आरिफ के चेहरे पर बरसों बाद सुकून लौट रहा था। उनका सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी की खुशी रास ही नहीं आती। कारोबार बढ़ने लगा, माहिरा को अक्सर दूसरे शहर में जाना पड़ता था। नई मीटिंग्स, नए ग्राहक, नई संभावनाएं, लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात चुभने लगी और फिर शुरू हुई कानाफूसियां। और इन कानाफूसी में बहुत लोग शामिल थे, बहुत बातें शामिल थीं। इतनी जल्दी कामयाबी, इतने बड़े ग्राहक, कुछ तो राज होगा। ये बात धीरे धीरे आरिफ तक पहुँचने लगी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया और फिर सोचना शुरू किया, और फिर सोचना शक में बदल गया। एक रात माहिरा लंबी यात्रा से लौट कर आई। उसके हाथ में नए डील के कागज थे, चेहरे पर खुशी थी, लेकिन घर में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। आरिफ की आंखों में वो अपनापन नहीं था। उसने

पूछा क्या हुआ। कुछ पल की खामोशी के बाद आरिफ बोला, इतनी कामयाबी, इतनी जल्दी, आखिर कैसे? माहिरा को लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने आरिफ की आंखों में शक देखा और उसका दिल कांप उठा। वो पूरी रात अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही, सफाइयां देती रही, समझाती रही, रोती रही, लेकिन जब भरोसा कमजोर पड़ जाए तो सच भी हार जाता है दोस्तों। कुछ दिन बाद एक सुबह आरिफ ने घर छोड़ दिया। ना कोई आखिरी नजर, ना कोई आखिरी बात, बस एक खामोश विदाई। दरवाजा बंद हुआ और माहिरा की दुनिया भी। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि उसकी कोख में एक नई जिंदगी पल रही है। उसके जाने के बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा था और उस सन्नाटे में एक टूटा हुआ दिल।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तो प्रोग्राम में आपको वाकई बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। गजलों के साथ मौसम का जो लुत्फ आप उठा रहे हैं उसका अंदाजा हमें हो रहा है। तो इसी बात पर बूझो तो जाने का सवाल हमने आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका सही जवाब आपको देना था, और सही जवाब है जर्मनी के वाइमर संविधान से।
4: और दोस्तों सही जवाब देने वाले हमारे जो लिसनर्स हैं उनके नाम हैं हीरामणि वर्मा, सुदर्शन शाह, धर्मेंद्र छिप्पा, दिनेश वर्मा, नारायण लाल साहू, ताज अंसारी, बी एल धाकर, मोहम्मद रफीक पवार, रामकुमार रेवा, देवशंकर तामुरिया, अरविंद कुमार, अनिल पी गोटके, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, गुरमीत सिंह मीता, दिलशाद हुसैन, राधेश्याम पांडे, अभिजीत गावंकर, फागुराम यादव, राजेश वर्मा, आर्यन राज, बीपी गौतम। और यहाँ ये लिस्ट खत्म नहीं होती है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना यूसुफा
3: जी।
4: और इन्हीं के साथ हमारे साथ हैं उदय भानपाल, मोहम्मद सईद अब्बासी, शेख मूसा, आकाश रस्तोगी, आसिफ चौधरी, जाकिर मंसूरी, लाल मोहम्मद अंसारी, विजय सुरलकर, मोहम्मद यासीन अंजान, दुर्गा राम साहू, भगवत चौबे, लाडल जी, मुकेश कश्यप, विजय तिवारी, गजन अनियले दरियापुर।
3: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें बता सकते हैं खत के जरिए, और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम

भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई

0: के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हो रहे हैं। किसान भाई सुने अपना

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार
1: और आपके भैया हिमांशु रंजन की राम
0: राम राम।
1: राम।
0: और हिमांशु भैया कैसे हाल चाल है थारे?
1: बस भैया सब राज्य खुशी हैं। और दम बताओ भैया, थारे कैसे हालचाल हो रहे हैं?
0: देखो भैया, देखने से लग गया होगा हमारे हालचाल बढ़िया हैं।
1: हाँ बिल्कुल
0: और भैया और कर दिया मौसम ने बढ़िया।
1: बिल्कुल भैया, देखो कल की जो बारिश थी ना भैया, उसने भैया बिल्कुल मौजा ही मौजा कर दिया। क्योंकि भैया देखो, रात जो बारिश हुई ना भैया, एक तो खेती किसानी के लिए भी अच्छी है,
0: हाँ
1: दूसरा भैया मौसम में कुछ गिरावट भी आ गई।
0: बिल्कुल। देखो हम तो सोच रहे थे कि गन्ने में पानी लगा देंगे थोड़ा सा, तो वे अब जल्दी ना करने के 2-4 दिन की नमी तो मिल ही गई।
1: बिल्कुल भैया, इसलिए मौसम का पूर्व अनुमान होना बहुत जरूरी,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि भैया मौसम के पूर्व अनुमान के आधार पर ही तो हम ये देखे हैं कि भैया हमें पानी लगाना नहीं लगाना, स्प्रे करना नहीं करना।
0: बिल्कुल, अगर भैया हम पानी लगा देते तो हमारे खेतों पानी भर के खड़ा हो जाता, और भैया उससे हमारे गन्ने में भैया जड़ सड़न रोग भी लग सकता, और
1: बिल्कुल
0: भैया और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते।
1: बिल्कुल, इसलिए भैया हमें खेत की निगरानी भी करते रहनी है ना भैया, जिस खेत में भैया ज्यादा पानी भर जा तो उसे निकालने का प्रबंध भी हमें
0: बिल्कुल।
1: करना।
0: और भैया देखो वैसे भी बरसात अब जा आने वाली है, जून का महीना अब जा चल ही रहा, और दूसरा पखवाड़ा शुरू हो जाएगा।
1: भैया दूसरा पखवाड़ा शुरू हो जाएगा। और भाई देखो, यो काम काम का टाइम हो रहा है, वैसे तो भैया हमारे किसान भाई कभी खाली रहते ना है, लेकिन भैया अब देखो इधर हमारे पास गन्ना तो है ही, लेकिन आगे को अगर हम धान्य फसलों की बात करें तो धान जो है हमारी मुख्य फसल भी है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया
1: भैया उसको लगाने की भी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल। देखो हमारे किसान भाई धान लगाने के से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा।
1: अच्छा भैया वो क्या?
0: देखो भैया, नर्सरी अगर हम तैयार सही से कर लेंगे तो भैया जो हमारे फसल का उत्पादन है वो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल
0: और भैया हमारी नर्सरी अगर खराब हो जाएगी, या हम ऐसे ही बीज उठाया और बो दिया, तो उसमें वो गुणवत्ता और वो उत्पादन हमें मिल नहीं पाने का।
1: बिल्कुल नहीं मिल पाने का। और भैया इन सब बातों के बीच में एक बात का और ध्यान रखना
0: क्या भैया?
1: भैया, वो यो है कि बरसात से पहले हमें अपने खेतों की मेड़बंदी जरूर करनी।
0: बिल्कुल भैया वो जरूरी है, उससे भैया बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जल संरक्षण होता है, और भैया हमारे खेत में अगर पानी की आवश्यकता है ना, अगर मेड़बंदी हमारी सही है तो हमारा खेत का पानी हमारे उसमें ही रहेगा। कभी कभी भैया ऐसा हो कि हम खाद डाल दें
1: हाँ
0: और भैया वो दूसरे के टूट को दूसरे के में चला जाए।
1: बिल्कुल भैया, ये सही कह रहे हो तुम, क्योंकि भैया हमें अपने खेत का ध्यान रखना, मेड़बंदी करनी। अब भैया देखो, अगर हमें अपने खेत से अच्छी पैदावार लेनी तो भैया कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़े।
0: क्या क्या भैया?
1: भैया देखो, हमें हमारी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, जल निकास उसका अच्छा हो, मिट्टी को सोखने वाली हो। साथ ही साथ भैया हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना, जैसे भैया हम बात करते हैं उन्नत प्रजातियों की।
0: बिल्कुल। देखो भैया, फसल के उत्पादन से लेकर बढ़वार तक और भैया हमारी फसल घर आने तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है उन्नत किस्मों का।
1: बिल्कुल भाई, बहुत सारे किसान भाई नो सोचते हैं भैया हम कौन सी किस्म बो में, कौन सी प्रजाति बो में।
0: बिल्कुल
1: तो भैया एक तो प्रजातियों का चयन भैया अपने क्षेत्र के हिसाब से करें,
0: बिल्कुल भैया,
1: जलवायु के हिसाब से करें।
0: बिल्कुल भैया, क्षेत्र के अनुसार भी करो या खेत के अनुसार भी करो। भैया कहीं कहीं ऐसा रहा है कि हमारा खेत गहरे का, तो गहरे के खेत में पानी भरा हो जाए
1: बिल्कुल
0: तो भैया हम बोर देंगे वहां पर, अगर सूखी वाली हम किस्में का चयन कर लेंगे तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: तो भैया हम खेरे के जो खेत गहरे का, तो भैया हम पानी वाली किस्में बोए जो जल भराव में
1: बिल्कुल
0: अच्छी होती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और यो बात बताएं भैया हमारे साइंटिस्ट
0: बिल्कुल
1: है ना। और देखो अंकित भैया, एक बात का और ध्यान रखना, अगर हम उन्नत प्रजातियों के महत्व की बात करें तो भैया उन्नत प्रजातियां अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं,
0: हाँ
1: रोग और कीट प्रतिरोधी होती हैं,
0: बिल्कुल भैया
1: साथ ही भैया प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में भी सक्षम होती हैं।
0: बिल्कुल। और भैया साथ साथ जो उन्नत प्रजातियां हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है,
1: बिल्कुल
0: उनका मूल्य भी बेहतर मिलता है बाजार में।
1: बिल्कुल भैया, और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी कम होता है इन पर,
0: बिल्कुल।
1: है
0: और
1: ना
0: भैया एक बात और है खास,
1: वो क्या?
0: भैया ये जो किस्म होती है ये रोग रोधी भी होती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम। अब भैया हम बता ही रहे थे कि भैया जो हम किस्मों का चयन करें वो कैसे करें, एक तो भैया क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से करें,
0: हाँ
1: दूसरा भैया भूमि का प्रकार हमारा कैसा है
0: बिल्कुल
1: उस पर करें, तीसरा भैया यो है कि सिंचाई

0: की उपलब्धता कितनी हमारे पास।
1: बिल्कुल भैया। और एक भैया हमें ये देखना है कि कौन सीख किस्में, सीख जो पक जाती हैं, कौन मध्यम वाली हैं और कौन सी किस्में देर से पकने वाली हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इनका भी हमें ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल। अब भाई बात आती है कि कौन कौन सी प्रजातियों का किसान भाई चयन करें, तो भैया यो बात भी बता दो किसान भाइयों को।
1: बिल्कुल भैया। अगर हमारे किसान भाई भैया सिर पकने वाली प्रजाति अपनाते हैं तो उसमें भैया देखो नरेंद्र 97 है और पूसा बासमती 1509 है, IR 64 है।
0: बिल्कुल
1: भैया ये जो किस्म है 110 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: और भैया कुछ ऐसी हैं जो मध्यम अवधि वाली प्रजाति हैं जो भैया 120 से लेकर 135 दिन तक का समय लेती हैं। इसमें भैया सराजू 52 है, नरेंद्र 359 है,
0: बिल्कुल
1: MTU 70-29 जिसे भैया हम स्वर्णा बोलते हैं,
0: बिल्कुल
1: और भैया PR 113 है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और भैया कुछ ऐसी हैं जो देर से पकने वाली प्रजाति हैं भैया, वो 135 से लेकर 150 दिन तक का समय लेती हैं। उसमें भैया देखो मालवीय 36 है, राजेंद्र महक है, PR 114 है।
0: बिल्कुल सही कह
1: और
0: रहे
1: देखो भैया कुछ ऐसी हैं जो सुगंधित होती हैं, अब
0: हैं।
1: भैया वो हम पाठशाला के थ्रू भी बता रहे हैं अपनी, वो भैया बासमती की। देखो
0: बिल्कुल सही कह रहे हो।
1: उसमें पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1700-1718 है, और पूसा बासमती 1509, और
0: बिल्कुल
1: भैया पूसा बासमती 1847।
0: ठीक है भैया।
1: देखो ये जो किस्में हैं भैया सुगंधित और अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। और भैया इसके साथ साथ कुछ ऐसी किस्में हैं जो भैया जो विशेष परिस्थितियों में उगाई जाती हैं,
0: अच्छा भैया वो
1: जैसा
0: कौन कौन
1: भैया
0: सी भैया।
1: जो भैया जैसा सूखा प्रभावित क्षेत्र हो उसमें सहभागी धान है, और भैया जैसा जल भराव की स्थिति में उसमें स्वर्णा सब एक है, और भैया जहाँ हमारी लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, उसमें भैया हमारे किसान भाई CSR 36, CSR 43 लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे। और भैया देखो प्रजाति चयन करते समय हम कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए
1: बिल्कुल भैया।
0: भैया, वो यो है कि केवल हमें प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए, साथ ही भैया अपने जिले के कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित किस्मों का ही चयन करें,
1: बिल्कुल
0: और बीज खरीदते समय भैया टैग और लेबल अवश्य चेक कर ले मैं,
1: बिल्कुल भैया।
0: है ना, और रोगग्रस्त या मिश्रित बीज ना खरीदें। यानी कि भैया मिश्रित बीज अगर हम खरीद लेंगे तो जो हमारी बाद में धान की पैदावार होगी तो भैया उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसे बेचने में दिक्कत आवेगी,
1: बिल्कुल भैया।
0: है ना। साथ ही भैया बाजार की मांग के अनुसार बासमती या सामान्य धान का चयन करें।
1: बिल्कुल। और भैया एक बात हो रहा है कि
0: वो क्या।
1: भैया जैसे हमारे सिंचित क्षेत्र है ना, तो भैया सिंचित क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने वाली और भैया असिंचित क्षेत्र में सूखा सहनशील किस्मों का चयन हमें करना है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया यो तो बात हुई धान की उन्नत प्रजातियों के चयन पर। अब भैया हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि अब उन्हें भैया उन्नत प्रजातियां क्यों लगानी हैं,
1: बिल्कुल।
0: क्यों उसका भैया हमें धान की किस तरह से उसकी बुआई कर सके हैं। अब भैया कुछ बात और कर ले मैं जरा सी,
1: बिल्कुल भैया।
0: है ना। बीज ग्राम योजना भैया देखो इस पर हम अब थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में गुणवत्ता बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया। देखो बीज अगर हमारा अच्छा होगा तो वो जो फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों अच्छी रहेंगे।
0: बिल्कुल। और भैया वैज्ञानिकों की माने तो किसी भी फसल की उत्पादकता में लगभग 15 से 20% तक वृद्धि केवल अच्छे बीजों के उपयोग से ही की जा सकती है।
1: बिल्कुल। देखो भैया अगर हमारा बीज खराब होगा तो ना तो फसल का जवाब अच्छा होगा और ना उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भैया इसमें जो बीज ग्राम योजना है भैया ये हमारे गांव गांव चल रही है, इसका भैया देखो उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो किसान भाई है ना वो स्थानीय स्तर से ये बीजों का आदान प्रदान कर सकें और अच्छी उपज ले सकें।
0: अच्छा भैया भैया देखो इसकी शुरुआत की अगर हम बात बात करें तो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी भैया,
1: बिल्कुल भैया।
0: है ना।
1: और भैया देखो इसमें जैसे उन्नत और प्रमाणित बीजों को उत्पादन को बढ़ावा इससे मिलता है भैया, बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होती है,
0: बिल्कुल
1: और भैया बीज उत्पादन के माध्यम से हमारे किसान भाई की आय भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: और
0: हो।
1: एक बात और भैया,
0: वो क्या भैया।
1: भैया जो बाहरी क्षेत्र के बीज है ना उस पर भी निर्भरता हमारी कम होती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। और भैया देखो किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो आधार बीज भैया जिसे फाउंडेशन सीड कहते हैं उपलब्ध कराना होता है इसमें, है ना। बीज उत्पादन का प्रशिक्षण साथ ही साथ भैया तकनीकी मार्गदर्शन भी जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और देखो भैया अगर जो हमारे किसान भाई इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसका भैया उद्देश्य ये है कि पूरा गांव जो गांव का चयन होता है, और उस गांव के चयन करने के बाद जो हमारी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग

0: हैं उसमें ये बीज उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें तकनीकी सहायता प्रशिक्षण देके अच्छा बीज उनसे उपलब्ध करवाती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। और देखो भैया, ये जो इस प्रकार की योजनाएं हैं भैया, ये किसानों के लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि भैया इन योजनाओं से जो है कृषि का उत्पादन बढ़ता है, बीजों की गुणवत्ता सुधरती है, साथ ही भैया जो किसानों की आय है ना भैया, वो भी बढ़ती है। और इस दिशा में अगर हमारे किसान भाई काम करेंगे तो निश्चित भैया हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, है ना भैया?
0: बिल्कुल भैया। और भैया एक बात और तो रह गई,
1: वो क्या भैया?
0: भैया हमारे जो किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो भैया वो जो किसान भाई हैं जिला कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र हो या भैया विकास खंड हो, कृषि कार्यालय, उससे संपर्क कर सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया,
0: भैया लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल लाभ लेवेंगे भैया। और देखो बातों बातों में तो हम एक चीज भूल ही गए
0: क्या भैया?
1: भैया, बातों बातों में ये भूल गए कि बताओ पहले भैया दिन कौन सा आज?
0: देखो भैया आज है माह का दूसरा शुक्रवार।
1: और भैया आज के दिन हमारे किसान भाई खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम सुनते हैं, चिट्ठी पत्री।
0: बिल्कुल भैया।
1: और भैया देखो चिट्ठी तो हमारे पास आ गई,
0: हाँ
1: लेकिन भैया जो किसान भाई चिट्ठी नहीं भेज पाए तो उनके लिए भैया एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है
0: बिल्कुल।
1: भैया, वो भी हम किसान भाई को बता दें, तो उनकी भी कोई खेती किसानी से संबंधित कोई समस्या हो तो वो हमें सीधे व्हाट्सएप पे संदेश भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो भैया नंबर है हमारा 9457-07-82-88।
0: बिल्कुल
1: और भैया व्हाट्सएप भेजने से पहले भैया हम उन्हें एक बात बता दें कि वो अपना नाम पता लिखें, साथ ही साथ भैया वो समस्या लिखें और सीधे हमें व्हाट्सएप कर दें।
0: बिल्कुल भैया, वो भी भैया 6:45 से पहले पहला।
1: ठीक है भैया, अब देखो इतने सारे किसान भाई अब हमें व्हाट्सएप भेज देंगे तो क्यों ना भैया कुछ जरूरी संदेश सुनो ले।
0: बिल्कुल।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
3: जी
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
9: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: देखो हिमांशु भैया, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिए।
1: ठीक है भैया।
0: और भैया अभी आपने बताया ही था कि भैया आज जो दिन माह का दूसरा शुक्रवार हो, और चिट्ठी का जो थैला मैंने ले रखा
1: बिल्कुल
0: उसे जल्दी से मैं खोल भी लूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम चिट्ठी पत्री।
0: देखो भैया, हमारे किसान भाइयों का आज के कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में स्वागत है। और भैया इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपका भैया अंकित कुमार,
1: और मैं हूँ आपका भैया हिमांशु रंजन।
0: और भैया देखो, ये मैंने थैला सा ले रखा।
1: बिल्कुल भैया,
0: इसे खोल के बैठो जरा।
1: बिल्कुल भैया, जल्दी खोलो थैले को, और जो जो चिट्ठी है भैया जल्दी उन्हें निकालो, और भैया पढ़नी शुरू करो।
0: बिल्कुल भैया, देखो ये हमारे

0: पास पहला पत्र आया है, ये ग्राम पे पोस्ट राहुल अंगली, जिला बिजनौर से।
1: अच्छा भैया।
0: और भैया भेजने वाले हमारे जो किसान भाई हैं, सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस चौहान, ये भैया हमें राम राम लिखते हैं।
1: बिल्कुल भैया, इनको भी राम राम।
0: बिल्कुल राम राम भैया। और भैया ये हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं। और भैया ये आज जानना चाहते हैं कि इनके गन्ने में कुछ खरपतवार उगाए हैं,
1: अच्छा।
0: तो उसका नियंत्रण कैसे करें, और गन्ने में इस समय गूल चढ़ा दें, यानी कि मतलब मिट्टी चढ़ा दें, तो सही रहेगा या नहीं?
1: बिल्कुल अंकित भैया, देखो ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि भैया हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो पश्चिमी यूपी है भैया, उसमें गन्ने की पैदावार बहुत सारे किसान भाई लेते
0: बिल्कुल
1: हैं। और भैया इनकी नहीं, ये बहुत सारे किसान भाइयों की ऐसी समस्या होगी कि इस समय वो निराई गुड़ाई कर रहे होंगे, या भैया वो खरपतवार उनके खेतों में आ गए होंगे, तो ये समस्या सबके सामने रहती है कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो अंकित भैया देखो, सबसे पहली बात तो हम यो ही कहेंगे कि हमें कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करना है,
0: बिल्कुल
1: जैविक तरीके से अपनी खेती बाड़ी को करें, यानी कि खरपतवारों को निकालें। तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहली बात तो ये आती है भैया, हम खरपतवार जो भैया होते हैं उनको निकालने के लिए सबसे पहले भैया निराई गुड़ाई करें अपने खेतों की।
0: बिल्कुल। और भैया ऐसा ना करें कि निराई गुड़ाई एक बार कर दिया फिर छोड़ दिया।
1: नहीं, ऐसा नहीं करना।
0: बिल्कुल भी भैया, हमारे किसान भाइयों को नियमित अपना खेतों का निरीक्षण करना है। अगर हमारे किसान भाइयों ने निराई गुड़ाई कर दी हो, तो जैसे ही खरपतवार उगाए, दूसरी निराई गुड़ाई हमारे किसान भाई उसके तुरंत 30 से 35 दिन बाद या 10-15 दिन बाद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया ऐसा नहीं है कि केवल एक दो ही हमें निराई गुड़ाई करनी है बुआई के बाद, हमें तीसरी निराई गुड़ाई भी भैया करनी पड़ सकती अगर हमारे खेत में खरपतवार अधिक हैं तो।
0: बिल्कुल, देखो भैया निराई गुड़ाई हमारे किसान भाई करेंगे तो उसके बहुत फायदे होते हैं। एक तो भैया हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होती है, और जड़ों का विकास अच्छे से होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया कुछ यांत्रिक नियंत्रण की विधियां हैं,
0: हाँ
1: जैसे भैया कतारों के बीच कल्टीवेटर या भैया गन्ना वीडर चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है।
0: बिल्कुल भैया
1: भैया इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।
0: बिल्कुल। और भैया अगर हमारे किसान भाई को ज्यादा मात्रा में खरपतवार उगाए हैं, तो हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर उसका उपचार नियंत्रण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन भैया एक बात का हमें ध्यान रखना कि पहले खरपतवारों को पहचानना है
0: बिल्कुल
1: कि वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या भैया संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, क्योंकि भैया देखो दोनों खरपतवारों का नियंत्रण अलग तरीके से होता।
0: बिल्कुल
1: तो एक तो भैया हमें ये खेत की निगरानी करनी है, और खेत की निगरानी के बाद भैया फिर किस जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह के अनुसार उपयुक्त तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करना।
0: बिल्कुल भैया, देखो हमारे किसान भाई एक काम और कर सकते हैं। देखो भैया हमारा जो आज का जो समय है आधुनिक कृषि का है, और भैया देखो जैविक खेती की ओर हमें बढ़ना और रासायनिक पर निर्भरता अपनी कम करनी है, तो भैया हमारे किसान भाई मल्चिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, गन्ने की जो सूखी पत्ती है उनको भैया जो कतार है यानी कि जो लाइनें हैं ना बीच में बची हुई, तो उसमें बिछा के वो खरपतवारों की वृद्धि को रोक सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखो भैया उससे एक फायदा और होगा भैया, उसमें मिट्टी में जो नमी का संरक्षण भी बढ़ेगा, और
1: बिल्कुल
0: भैया हमारे खेत में जो सिंचाई है कम करनी पड़ेगी और लागत भी कम होगी।
1: बिल्कुल। और अंकित भैया देखो, हम अभी रासायनिक नियंत्रण की बात कर रहे थे, तो जब हम खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, तो उसके पीछे जो भैया उसमें दिशा निर्देश रहते हैं उन्हें पढ़ के भैया तभी स्प्रे करें, और भैया जो भी अनुशंसित मात्रा है उसे जरूर देखें।
0: बिल्कुल
1: और स्प्रे अगर हमारे खेतों में हम कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो भैया हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना,
0: बिल्कुल भैया
1: मास्क का प्रयोग करना है, और भैया हाथों में जब उसे मिला में दवाई को तो भैया ग्लव्स जरूर पहन के रखें।
0: बिल्कुल। और भैया देखो इन्होंने एक प्रश्न और पूछा था इसमें कि इस समय की वो अपने जो खेत हैं गन्ने की फसल में, उसमें मिट्टी चढ़ा दे क्या? देखो भैया ये जो समय है इस टाइम मिट्टी चढ़ाने का चल रहा है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आने वाला समय बरसात का है, और बरसात में भैया अगर हमारे खेत में पानी भर जाता है तो हमें समय नहीं मिल पाता मिट्टी चढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल। और मिट्टी चढ़ाने से भैया देखो पौधों को सहारा मिलता, और तुम देख ही रहोगे कि भैया आजकल तो आंधी तूफान बहुत चल रहे हैं, तो भैया हमारे पेड़ को यानी कि जो गन्ने का पौधा है उसे गिरने की संभावना कम हो जाती।
0: बिल्कुल, देखो भैया उससे जड़ों का जब विकास है वो बेहतर होता है, पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण बढ़ता है,
1: बिल्कुल
0: और भैया देखो खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता होती,
1: बिल्कुल।
0: नमी संरक्षण में भी सहायता होती है। और भैया एक बात और है,
1: वो क्या भैया?
0: भाई जो हमारी गन्ने की फसल में कल्ले निकलते हैं ना, उसमें भैया वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भैया देखो, जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो खरपतवारों का नियंत्रण भी हो ही जाएगा।
0: बिल्कुल भैया, उपज और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और भैया एक काम और देखना,
1: वो क्या भैया?
0: हम भैया जहाँ भी हमने

0: चढ़ा दी है उस खेत में जल भराव ना हो,
1: बिल्कुल भैया,
0: तो
1: सही
0: जल
1: कह,
0: निकासी की व्यवस्था भी हमें रखनी है।
1: बिल्कुल। तो भैया उम्मीद है कि जो इन्होंने दो प्रश्न लिखे थे भैया सत्यवीर जी ने, भैया इनकी जो समस्या थी उसका समाधान अब हो गया होगा।
0: बिल्कुल भैया। देखो अब भैया अगला पत्र ले लेते हैं।
1: ठीक है भैया।
0: भैया ये पत्र आया है ग्राम छजूपुरा तहसील मंडी धनौरा जिला अमरोहा से, और भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं आलोक कुमार, प्रशांत कुमार, देवेश कुमार और सौरभ कुमार।
1: बिल्कुल भैया।
0: ये भी भैया हम राम राम लिखते हैं।
1: तो भैया इनको भी राम राम।
0: भैया ये आज जानना चाहते हैं कि इन्होंने पशु पाल रखे हैं,
1: अच्छा।
0: और तो भैया वो इस समय भी अपने पशुओं को कैसा आहार दें जिससे जो इनके पशु स्वस्थ रहें और दूध का उत्पादन अच्छा हो।
1: बिल्कुल भैया, ये प्रश्न देखो जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जहां तक भैया इन्होंने लिखा है कि ये जो है पशु को कैसा आहार की बात कर रहे हैं, तो भैया कैसा आहार में तो भैया देखो पशु के लिए सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए और भैया पोषण से वो भरपूर हो।
0: बिल्कुल
1: जैसे भैया हम हरे चारे की बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे हम जो चारे में, जैसे भैया मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, भैया इन सबको सम्मिलित कर सकते हैं। हरे चारे की बात करें तो भैया इसमें विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत होता है, और कुल आहार की बात करें तो लगभग 30 से 40% तक हमें हरा चारा रखना चाहिए।
0: बिल्कुल भैया। देखो इसके साथ साथ हमारे किसान भाई को सूखा चारा भी देना चाहिए, जैसे भैया गेहूं का भूसा हो गया।

0: दाना मिश्रण की बात करें, यानी कि सांद्र आहार की बात करें, तो सरसों की खल है, सोयाबीन की खल है, चोकर है, मक्का है, जो है, इन सब से भैया हम संतुलित दाना बना सकते हैं। और भैया प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर लगभग 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है।
1: बिल्कुल भैया। और भैया इसके साथ साथ हमारे किसान भाई भैया 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण और भैया उसमें 25 से 30 ग्राम साधारण नमक अपने जो पशुओं को दे सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं हमारे पशुओं की, और भैया प्रजनन संबंधित समस्याएं कम होती हैं।
1: बिल्कुल। और भैया एक बात का और ध्यान रखना
0: वो क्या अंकित भैया?
1: भैया, देखो हमें अपने पशुओं को साफ और ताजा पानी पिलाना,
0: बिल्कुल
1: और भैया अपने पशुशाला की साफ सफाई रखनी है।
0: भैया, ये बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं भैया, हम अगर हम पशुशाला को स्वच्छ नहीं रखने के, उसे हवादान नहीं रखने के, तो भैया एक पशु से दूसरा और भैया दूसरे से तीसरा बीमार होता चला जाएगा।
1: बिल्कुल। और देखो भैया हमें अपने पशुओं का नियमित रूप से या भैया निरीक्षण भी करना चाहिए, और भैया समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल, टीकाकरण अगर हम अपने पशु का करेंगे तो निश्चित भैया हमारा पशु जो है वो बीमारी से दूर रहेगा। और भैया देखो एक बात का हमें ये ध्यान रखना कि फफूंद लगा हुआ और भैया सड़ा गला भोजन हमें अपने पशु को नहीं देना
1: बिल्कुल।
0: है ना, और साथ ही भैया गंदा पानी या प्लास्टिक मिले हुए कचरे से अपने पशु को दूर रखें। तो उम्मीद है कि भैया इनकी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया होगा।
1: बिल्कुल भैया। भैया अगला पत्र ले लेते हैं
0: हाँ बिल्कुल भैया,
1: भैया। ये पत्र आया है ग्राम सिजोली पोस्ट हरगनपुर जिला बिजनौर से,
0: अच्छा भैया क्या लिखते हैं भैया
1: और
0: ये?
1: भैया भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं तेजवीर सिंह, ब्रजवीर सिंह। ये भैया हमें राम राम लिखते हैं, तो
0: भैया
1: भैया
0: इनको भी
1: इनको भी
0: राम
1: राम राम।
0: राम राम इनको भी।
1: और भैया ये जानना चाहते हैं कि धान की नर्सरी करते समय क्या क्या सावधानी इन्हें बरतनी है, और ये नर्सरी करने का सही समय है या नहीं।
0: बिल्कुल भैया, इनका प्रश्न देखो, आने वाला जो समय हमारा खरीफ ऋतु का
1: बिल्कुल।
0: है, और भैया हमारे किसान भाई जिनके खेत भैया खाली हैं तो
1: हाँ
0: वो धान की भैया रोपाई करेंगे,
1: बिल्कुल।
0: तो इनका जो प्रश्न है भैया धान की नर्सरी तैयार करते समय क्या क्या सावधानी बरतें हैं। तो सबसे पहले तो भैया देखो, इन्होंने अपने खेत की मिट्टी की जांच उम्मीद है करा ली होगी, साथ ही भैया इनका जो खेत है वो समतल जरूर होना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि भैया आजकल देखो यूं कहते कर रहे हैं ना, उन्होंने कंप्यूटर लगवा लिया खेत में, तो लेजर लेबलर से भैया अपने खेत को समतल अवश्य करा ले मैं।
1: देखो भैया उससे एक फायदा होता भैया, उसमें समतल में क्या होता है कि जो पानी का वितरण है वो समान रूप से होता है।
0: अच्छा
1: अगर भैया हमारा खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो गहरे में पानी ज्यादा और ऊंचे में पानी कम,
0: बिल्कुल
1: तो उससे ना हमारे जो खेत में जो भी फसल है वो प्रभावित होती है।
0: भैया, पोषक तत्व भी एक तरफ को ही चले जाएं सारे पानी
1: हाँ
0: के साथ बह गए,
1: बिल्कुल।
0: तो इस बात का हमें ध्यान रखना। और देखो जहां तक भैया इन्होंने नर्सरी की बात की थी, तो धान की अच्छी पैदावार के लिए स्वस्थ और मजबूत पौध तैयार करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल
0: इसके लिए भैया नर्सरी हमारे किसान भाई तैयार करेंगे तो कुछ सावधानियां बरतेंगे।
1: बिल्कुल। देखो भैया पहले तो सबसे पहले अपने हमें अपने खेत की तैयारी करनी है, उसकी 3-4 बार अच्छे से जुताई करनी है, गोबर की खाद उसमें डालनी है, फिर भैया हमें बीज की नर्सरी की शुरुआत करनी है।
0: बिल्कुल
1: देखो खेत जो हमारा वो पहले साफ सुथरा होना जरूरी है,
0: सही कह रहे हो भैया।
1: और भैया उसके बाद हम जो बीज हम लेके आए हैं उसका बीज उपचार जरूर करना है, और भैया जब हम बीज बोना जाएंगे तो भैया उसे 12 या 24 घंटे पहले भिगो कर रखना जरूरी है। और भैया एक बात और
0: वो क्या भैया?
1: भैया, बीज में हम प्रमाणित बीज का ही चयन करना जो गुणवत्तापूर्ण हो,
0: बिल्कुल
1: और उसके लिए हमारे किसान भाई भैया कृषि विज्ञान केंद्रों से बीज ले सकते हैं, और भैया जो हमारे खंड विकास हैं, ब्लॉक हैं भैया, कृषि निवेश भंडार हैं, उनसे बीज ले सकते हैं,
0: बिल्कुल भैया
1: और बीज शोधन जरूर करें।
0: बिल्कुल, बीज शोधन हमारे किसान भाई अवश्य करें, साथ ही साथ भैया नर्सरी के लिए एक ऐसे उचित स्थान का चयन करें भैया जहां पर भैया यूं लगे कि हमारा खेत अच्छा उपजाऊ है, समतल है, और सिंचाई और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया। और एक बात का और ध्यान रखना
0: वो क्या भैया?
1: भैया, उचित बीज दर का प्रयोग करना,
0: बिल्कुल
1: ऐसा हमें नहीं करना कि हम ज्यादा बीज डालेंगे तो ज्यादा पौधे होंगे भैया, ज्यादा पौधे होंगे तो जो हमारा जो पौधा होगा वो कमजोर हो जाता है।
0: कमजोर हो जाएगा, और भैया बाद में हम ये देखे हैं कि उसकी जो है लापरवाही से भैया खराब हो जाए बहुत सारे।
1: बिल्कुल भैया, वो उसकी बढ़वार इतनी नहीं हो पाती, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और भैया साथ साथ हमें जल प्रबंधन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि भैया हमारी जो धान की नर्सरी है उसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो भैया सिंचाई हमें लगातार करते रहना है।
0: बिल्कुल भैया, तो इन सब बातों का अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे, अच्छे बीज का चयन करेंगे, बीज उपचार करके बोवेंगे, जल प्रबंधन करेंगे, पोषण प्रबंधन करेंगे, साथ ही भैया रोग कीट पर नियंत्रण रखेंगे, तो भैया उम्मीद है कि उनकी फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल भैया, उनकी फसल अच्छी होगी ना, लाभ भी मिलेगा।
0: बिल्कुल
1: और भैया देखो जब लाभ की बात

0: ताती है। तो भैया हमारे किसान भाइयों का मन भी करता है मनोरंजन का।
1: बिल्कुल भैया, महारा भी कर रहा।
0: बिल्कुल। तो भैया मनोरंजन से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
3: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
2: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
3: खुशहाली का नया प्रयोग।
4: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: हिमांशु भाई देखो मनोरंजन तुम्हारे किसान भाइयों का हो गया,
1: बिल्कुल भैया।
0: और देखो चिट्ठी हमारे पास अभी बहुत सारी रखी है तो ना भैया पढ़ ले।
1: बिल्कुल भैया। और देखो एक व्हाट्सएप संदेश हमारे पास आया, तो भैया इसे भी ले लो जरा।
0: बिल्कुल भैया। भैया ये जो व्हाट्सएप संदेश आया है ग्राम गदरोना पोस्ट लंडोरा जिला हरिद्वार से,
1: अच्छा भैया।
0: और भैया भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं हमारे नियमित श्रोता मदन गिरी जी,
1: अच्छा भैया।
0: और भैया इनके परिवार के सदस्य हैं। भैया ये भी हमारा राम राम लिखते हैं।
1: बिल्कुल भैया, इनको
0: और
1: भी राम
0: भैया
1: राम।
0: इनकी एक समस्या है,
1: अच्छा भैया।
0: ये भैया आज जानना चाहते हैं कि इनके जो नींबू है उसमें फूल तो आ रहा है फल नहीं बन रहा है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल।
0: भैया साथ में एक समस्या और भेजी इन्होंने, भैया इन्होंने 14 मई को गन्ना लगाया था, अब गन्ने में जो खरपतवार नियंत्रण हो कैसे करें ये तो इसका समाधान चाहते हैं।
1: बिल्कुल भैया। देखो गन्ने में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, तो भैया अभी हमने बात करी थी कि गन्ने में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन भैया जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि नींबू में फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे,
0: बिल्कुल
1: तो भैया यो बात जो है इनकी देखते हैं क्या है इसमें। तो भैया देखो फूल आने के समय सही परागण ना होने पर भैया फल नहीं बनते,
0: बिल्कुल भैया
1: पहला कारण तो भैया यो हो सकता है। और साथ ही साथ भैया मधुमक्खियां और अन्य जो परागण करने वाले कीट हैं उनकी संख्या कम होने से यो समस्या बढ़ती है।
0: बिल्कुल भैया। और भैया साथ साथ हमारे जो पौधा है भैया उसमें पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, जिससे भैया फूल बन रहा है फल नहीं बन पा रहा।
1: बिल्कुल। और वो पोषक तत्व तो हो सकते हैं बोरोन, जिंक और पोटाश।
0: बिल्कुल
1: भैया इनकी कमी होने पर फूल झड़ जाते हैं और फल नहीं बनते,
0: बिल्कुल भैया
1: तो इसके लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम जिंक सल्फेट और 1 ग्राम बोरिक एसिड मिलाकर भैया पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। और साथ ही साथ भैया देखो अब अत्यधिक गर्मी भी पड़ रही, तो फूल आने के समय तेज गर्मी, लू या नमी की कमी होने से फल सेटिंग कम हो जाती है, तो इसके लिए भैया नियमित समय पर सिंचाई करें। लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखें कि
0: क्या
1: जल
0: भैया
1: भराव ना होने दें अपनी,
0: बिल्कुल भैया
1: है ना। और पेड़ के चारों तरफ भैया ये काम कर सकते हैं, मल्च बिछा सकते हैं, है ना।
0: बिल्कुल, जिससे भैया खरपतवार भी नहीं उगेंगे और इनका जो पौधा है वो सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया यदि यूरिया की अधिक मात्रा इन्होंने दे दी है, तो भैया पेड़ में जो है नई पत्तियां और फूल आते तो हैं लेकिन फल कम बनते हैं, तो हमें नाइट्रोजन का भी कम छिड़काव करना है।
0: बिल्कुल भैया, तो भैया इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अब भैया हम जल्दी सब जा अगला पत्र ले लेते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: भैया, जल्दी से एक पत्र और ले लो।
0: भैया ये पत्र आया है ग्राम मुंडाखेड़ी पोस्ट कोलासागर तहसील धामपुर जिला बिजनौर से,
1: अच्छा भैया।
0: और भैया पत्र भेजने वाले हमारे जो भाई हैं सीताराम बबलू महेंद्र सिंह परविंदर सिंह, और भैया ये हमें राम राम लिखते हैं।
1: तो इनको भी
0: और
1: राम
0: भैया
1: राम।
0: ये जानना चाहते हैं इनके आम के बाग हैं तो इन्हें आम के फलों की तुड़ाई करनी है तो क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। आम के फलों, क्योंकि भैया देखो आम तो फलों का राजा है,
0: बिल्कुल भैया
1: और
0: देखो
1: भैया सही समय पे अगर हम फलों की तुड़ाई नहीं करेंगे तो भैया हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे पहले भैया आम की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने तथा भैया बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए फलों की तुड़ाई बड़ी सावधानी से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: भैया फल पूर्ण परिपक्व अवस्था में ही तोड़ें, साथ ही साथ भैया किस्म के अनुसार सही समय पर तुड़ाई करें। जैसे भैया फल के आकार, रंग और भैया जो उसके कंधे के उभार हैं यानी शोल्डर डेवलपमेंट है, उसको देखकर हम परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है।
0: बिल्कुल भैया। और भैया हमें सुबह और शाम में फलों की तुड़ाई करनी है।
1: बिल्कुल, तेज धूप में फल तोड़ने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल
1: और भैया फलों को हाथ से खींचकर ना तोड़ें,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि भैया फल तोड़ने के लिए

0: विशेष हार्वेस्टर या कैंची का उपयोग करें, साथ ही साथ भैया तोड़े गए फलों को जमीन पर ना गिरने दें।
1: बिल्कुल भैया, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन पे गिरने से कहीं ठोस जगह होती है, हमारा फल फट जाता है, तो उससे फलों का नुकसान होता है।
0: बिल्कुल। और एक बात और अंकित भैया,
1: क्या भैया?
0: फलों को सावधानी पूर्वक टोकरी या प्लास्टिक की क्रेट में रखें,
1: बिल्कुल
0: बोरियों में भरकर भैया परिवहन से हमारे किसान भाइयों को बचना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना
0: वो क्या भैया?
1: भैया, गिरे हुए सड़े गले फलों को और भैया जो उनकी टहनी टूटी हुई वो सब भैया नष्ट कर दें या बाहर निकाल दें,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि बाग की साफ सफाई हमें रखनी जरूरी है।
0: और अंकित भैया, फलों की ग्रेडिंग यानी कि भैया आकार, वजन और गुणवत्ता के आधार पर फलों को अलग-अलग श्रेणियों में हमें बांटना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, देखो भैया इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा, और देखो घड़ी अब ज़्यादा बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो भैया हम चलते चलते भैया हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो कब है तो उसके लिए बता दें मैं
0: बिल्कुल भैया।
1: भैया। वो हमारा जो अगला चिट्ठी पत्री कार्यक्रम है वो है 26 तारीख को,
0: अच्छा भैया।
1: 26 जून को। और भैया जो हमारे किसान भाई गन्ने संबंधित कोई समस्या है तो भैया हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम है सजीव 19/6 को, तो हमारे किसान भाई भैया 19/6 के दिन फ़ोन कर सकते हैं। और भैया देखो घड़ी ज़्यादा बातचीत की इजाज़त नहीं दे रही है,
0: बिल्कुल
1: तो भैया
0: बिल्कुल।
1: जो हमारे किसान भाई है भैया हमारी फसलों में क्या कार्य हमें करना है, तो जल्दी से भैया मौसम का हाल बता दो।
0: बिल्कुल भैया, मौसम का हाल बताना जरूरी, क्योंकि भैया देखो मौसम की चिट्ठी भी हमें प्राप्त हुई है, और भैया मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भाई इसमें दी गई जानकारी के अनुसार अगले 12 घंटे तक बिजली गरज और तेज आंधी के साथ भैया हल्की बारिश की संभावना है। तो
1: तो
0: किसान
1: भैया
0: भाई
1: हमारे किसान भैया मौसम को देखकर अपने कृषि कार्य कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और देखो भैया अब घड़ी भी ज़्यादा बातचीत की इजाज़त नहीं दे रही है, तो भैया हम अपना पता जरूर बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारा पिन कोड है 246763।
0: बिल्कुल। और अंकित भैया हमारे व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा जो नंबर है वो है 94-57-07-82-88।
1: और भैया देखो अब दोनों भैया कर लेते हैं जल्दी से, राम
0: राम राम।
1: राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानूनी सलाह।
1: कानूनी सलाह कानूनी सलाह कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ एसके नोटियाल, फिर आपका स्वागत। हम एक नए विषय के साथ आज फिर यहाँ उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है बाल श्रम निषेध कानून क्या है और ये कैसे काम करता है, किन के लिए काम करता है, किन को इससे संरक्षण मिलता है। इस विषय पर अधिक और विस्तार से जानकारी देने के लिए यहाँ एडवोकेट अतर सिंह जी हैं। वकील साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: वकील साहब, बच्चे यदि हमारे स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी हर देश का विकास हो सकता है। बच्चे मजबूरी में या किसी और कारण से कहीं ना कहीं जो काम करते हैं या कहीं मजदूरी करते हैं या फिर कहीं जबरदस्ती से उनसे काम लिया जाता है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चों के लिए जो कानून बना है बाल श्रम निषेध कानून, क्या है बाल श्रम निषेध कानून, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: बाल श्रम, जैसा ये नाम से प्रतीत होता है, बच्चों द्वारा किया गया श्रम बाल श्रम कहलाएगा। अब किसी भी राष्ट्र को विकसित करने के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके उन्नति के लिए आधार होना, उनका विकास होना, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखने में आया है कि हमारे

0: देहात की हो या शहरी जनता हो, जहां गरीब वर्ग है, उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, गुर्बत है, मजबूरीवश बच्चों को छोटी अवस्था में ही वो कहीं ना कहीं किसी उपक्रम में लगा देते हैं, किसी होटल पर लगा देते हैं, किसी कार्यशाला में लगा देते हैं, किसी फैक्ट्री में लगा देते हैं, और उसके बदले जो फैक्ट्री मालिक होते हैं वो उनकी जो कार्यशैली होती है उससे अधिक श्रम करा देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं और पर्याप्त मात्रा में उनका पारिश्रमिक नहीं देते। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने 1986 में एक कानून पास किया और जिसे हम बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। इसकी जो धारा 1 और 2 है, इसके अनुसार छोटी उम्र से, मतलब जो है बालक किसको माना गया है, जब से बच्चा बड़ा हुआ और अक्सर जो 6 साल से 14 वर्ष तक का जो बच्चा हुआ उससे कहाँ होना चाहिए, शिक्षा के लिए स्कूल में होना चाहिए, मजबूरी है वो कि वो जो है स्कूल नहीं जा पाता, तो 14 वर्ष तक की जो अवस्था का बच्चा है उससे श्रम ना कराया जाए, बल्कि उसे स्कूल में जाना चाहिए, उसे और अन्य सुख सुविधाएं हो, जबरन कहीं काम ना कराया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक कानून पारित किया गया जिसे हम जो है बाल श्रम के नाम से जानते हैं।
1: वकील साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो इस श्रेणी में आता है। अब सवाल ये उठता है वकील साहब के परिवार कहीं गरीब होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो काम करवाते हैं, अपने साथ काम करवाते हैं या उनको कहीं वो काम पर लगा देते हैं। कभी कभी वकील साहब ये भी देखने में आता है कि कहीं जबरदस्ती बच्चों से काम लिया जाता है। जब बच्चों से काम लिया जाता है तो काम लेने वाला या परिवार के जो माता पिता हैं, बच्चे के जो माता पिता हैं, क्या दोनों जिम्मेदार हैं, उसके लिए अपराधी हैं या नहीं है?
0: जहां संरक्षक की सहमति है या उनका कोई परिवार अपनी संस्था चलाता है
1: जी,
0: कोई इस तरह का अपना हैंडीक्राफ्ट का कार्य है या और कोई संस्था है, अपना पारिवारिक कोई काम ऐसा चलाता है, उसमें यदि बच्चा लगा हुआ है तो उस पे कोई
1: रोक नहीं है।
0: दूसरे, ये जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं या कहीं कोई इस तरह का उपक्रम है तो उनमें यदि कहीं बच्चा लगा हुआ है तो वो मान्यता प्राप्त है, उसमें कोई उन पे कोई दबाव नहीं है, उनका कोई एक जो है सिस्टम है, उनका एक रखरखाव सही होता है कि कितने समय एक नियमित रूप से आप काम करेंगे, आपको इस तरह का होगा, तो उन्हें नकारते हुए उन्हें जो है एग्जेम्प्ट किया गया है।
1: अच्छा,
0: हाँ, उन्हें इस श्रेणी में नहीं लाया गया है। इनके अलावा यदि कहीं ये होता है तो उसके लिए एक धारा 3 जो है प्रोवाइड की गई है एक्ट में, और उसमें ये क्लियर किया गया है कि उसमें 2 सूची बनाई गई है, सूची क और ख। अब सूची ख में इस तरह से, जैसे आपका रेल का कारोबार ले लीजिए, वहाँ छोटे छोटे जो कामकाज बंडल बनाना है या और कोई काम लेना है, जबरन करना है इस तरह का, तो वो सूची क में इस तरह से जो है उन्हें प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा जैसे आपके बीड़ी सिगरेट का है, दिया सलाई का है, कारखाना है, कार्य करने के लिए निषेध किया गया है।
1: अच्छा,
0: अब निषेध करने के लिए वो कितना काम करेंगे उसकी एक जो है ये समायोजन किया गया है। अब लगातार कम से कम 1 शिफ्ट बनाई गई तो वो 3 घंटे से ज्यादा काम वो संस्था नहीं लेगी।
1: अच्छा,
0: हाँ, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लेगी, और 1 घंटे का अंतराल बच्चों के रेस्ट के लिए, और उसके ठीक बाद जो है 3 घंटे का कार्य वो फिर करेंगे। तो इस तरह से जो है 6 घंटे से तो अधिक काम लेंगे ही नहीं। दूसरे ये है कि इस तरह के छोटे बच्चों के लिए रात्रि 7 बजे के बाद और 8 बजे से पूर्व प्रातः, अर्थात रात्रि में कोई बच्चा कार्य नहीं करेगा, और उसकी सुख सुविधा का ध्यान, आपको जैसे खाने की व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और उसके जैसे दिन में शौचालय की व्यवस्था है, मूत्रालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इस तरह का उसका सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और इनको जो एक अनुसूची होती है, एक समिति भी बनाई गई है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उसमें अध्यक्ष होते हैं, तो वो समिति जहां वो आप

0: को एक यूनिट में बच्चा काम कर रहा है हमारा, उस यूनिट का जो नियोक्ता है, जो नियोजक है, जो उसने अपॉइंट किया है, वो पूरा रख रखाव एक जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक होता है, उस निरीक्षक को पूरा ब्यौरा वो बच्चों के संबंध में देगा कि कितनी उम्र का बच्चा है, क्या उसकी शैक्षणिक योग्यता है, क्या उसकी जन्म तिथि है। अब जन्म तिथि का आता है तो उसके बारे में जो ये कहाँ से वो, तो जो क्षेत्रीय है हमारा चिकित्सक अधिकारी होगा, उसका ही प्रमाण पत्र पर्याप्त है। और बच्चे का कार्य करने के समय की सूचना देना है, वो इंस्पेक्टर को मस्ट है, ये सारी
1: तो
0: चीजें जो हैं।
1: जी वकील साहब, आपने जो
0: जी
1: जानकारी दी है
0: जी
1: उसमें दो बातें यहाँ हमारे सामने आ रही हैं। एक तरफ कानून प्रतिषेध करता है, यानी कि निषेध करता है कि बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। एक तरफ आपने जो बताया है कि कहीं कहीं कुछ उपक्रमों में बच्चों से काम लिया जा सकता है, तो क्या ऐसी कानून में कोई धारा या कोई ऐसा उपबंध इसमें दिया गया है कि बच्चों से काम लिया जा सकता है?
0: इनके खिलाफ तो काम नहीं कराओगे आप कहीं जो बच्चों से, अगर आप काम करा रहे हो तो हमें जो है, जैसे हमने ये बताया कि धारा 13 में वर्णित किया गया कि बाल श्रम की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे और कोई स्थल का भी कार्य जो होगा साफ सुथरा होगा, न्यूसेंस नहीं होगा, शोरगुल नहीं होगा, शोर शराबे से मुक्त होगा, अपशिष्ट नहीं होगा, और आपका संतुलित तापमान बना रहेगा, धूल रहित होगा, कृत्रिम जो नमीनीकरण या प्रकाश की व्यवस्था का ध्यान रहेगा, या जो भी आपके शौचालय या मूत्रालय बताया या थूकदान वगैरह। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भारी जो मशीनरी होती है, खतरनाक मशीनरी होती है, कभी कभी अनभिज्ञता में बच्चा वहां लग जाता है, तो उसका भी ध्यान रखोगे, उसे प्रशिक्षित होना जरूरी है। खतरनाक जो मशीनरी हुई या अप विस्फोटक चीजें होती हैं, बहुत से आपने देखा होगा कल कारखाने हैं या खान वगैरह में काम करते हैं बच्चे, तो उन खान में भी बहुत देखना जरूरी है।
1: जी
0: इस तरह के जहां जहां खतरनाक स्थिति होती है वहां उनकी सुरक्षा का तो ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा हर हाल में, और वहां इनका उल्लंघन नहीं करोगे आप।
1: क्या वकील साहब, ये जो बाल श्रम अधिनियम है, कानून है, क्या पूरी तरह बच्चों के श्रम पर, बच्चों के काम कराने पर प्रतिबंध नहीं लगाता?
0: हाँ नहीं, प्रतिबंध तो लगाएगा, आपने जो कानून प्रोवाइड किए गए हैं उनसे हटके आप काम करेंगे तो प्रतिबंध तो है, उसके लिए धारा जो है 14 में ये प्रोवाइड किया गया है कि उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी और जुर्माना भी देना होगा। और किस तरह से होगा कि जो हमने धारा 3 में जो सूची बताई, जो उपजीविकाएं हैं, ये जो कार्यशालाएं हैं जहां बच्चा काम करता है, वो इनका उल्लंघन यदि करता है तो उल्लंघन में जो नियोजक होता है उस नियोजक को 3 मास से लेकर 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है
1: अच्छा
0: और 10,000 जुर्माना भी उस पर हो सकता है कम से कम जो है, और यदि वो उसकी पुनरावृत्ति भी करता है तो कम से कम ₹20,000 तक का जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकती हैं उस पर जो है, इस तरह का जो है यदि वो उल्लंघन करता किसी भी तरह से जो है।
1: लेकिन वकील साहब, ये कहा जा सकता है कि जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे उपक्रम हैं या कुछ ऐसे काम हैं जहां बच्चों से काम लिया जा सकता है, तो वकील साहब ये कहेंगे कि यदि परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से खराब है, आजीविका चलाने में परिवार अपना निर्भर नहीं है, तो उन परिवारों के बच्चों से कहीं ऐसे उपक्रमों में काम किया जा सकता है जो कानून के द्वारा सम्मत हैं। और ये बताएं कि जैसे बच्चे कहीं होटल पे काम करते हैं या फिर कहीं दूसरे कहीं उद्योग में काम करते हैं या फिर ईंट भट्टों पे काम करते हैं या करवाया जाता है, या बच्चों से बंधक के रूप में काम लिया जाता है या जबरदस्ती से काम लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को दोषी मानकर क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है?
0: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है जो है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूं। बच्चों का कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, ये तो मजबूरी रही कि कहाँ वो कर रहा है, या बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, कहीं भी ऐसा हो जाता है तो किडनैप वाली जहाँ पोजिशन है, छोटे बच्चों के जब भिक्षा मांगने के लिए जो उन्हें जो मजबूर कर दिया या किसी और प्रवृत्ति में वेश्यावृत्ति में लगा दिया, तो उसके लिए तो हमारे यहाँ जो IPC भारतीय दंड संहिता बनाई गई है उसके लिए एक अलग से कानून है जिसकी धारा 363 ए प्रोवाइड किया गया है कि यदि आप उसमें जो गलत काम करते हैं, कानून से वर्जित काम करते हैं, कानून के खिलाफ काम करते हैं, तो उसमें ₹10,000 तक का जुर्माना और हो सकता है कि उसमें आजीवन,
1: कारावास।
0: यदि आप जो है इस तरह के, हाँ,

0: जो वर्जित हैं तो आजीवन कारावास तक की हो सकती है,
1: सजा हो
0: ये तो
1: सकती है
0: हाँ सजा हो सकती है।
1: जी।
0: और दूसरे परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताऊं आपसे कि इसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए कितना गवर्नमेंट हमारी कर रही है कि 6 वर्ष तक, 14 वर्ष तक के बच्चों की जो उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बाल शिक्षा अनिवार्य है, अधिकार अधिनियम 2010 जो है बनाया गया। अब उसमें क्या है कि उन बच्चों को जब आधार सही होगा, शिक्षित होंगे, तभी हमारा एक राष्ट्र जो है विकसित होगा। चूंकि राष्ट्र का जो आधार होता है वो हमारी नई पीढ़ी होती है, बच्चे होते हैं,
1: जी
0: तो उसके लिए बनाया गया। लेकिन आप उससे हट के काम करेंगे, उससे वर्जित करेंगे, तो कानून आपको रोकता है, आपको सजा भी देगा, आपको जो जुर्माना भी करेगा, आपको जो है सश्रम दंडित भी करेगा। तो इस तरह का वर्जित नहीं कर सकते कहीं भी, दोनों पक्षों को बना दिया गया है। अक्सर जो है कि गार्जियन को भी और उन्हें भी, जो है गार्जियन के लिए सहूलियतें दे दी गई हैं लेकिन फिर भी नहीं करता, अनभिज्ञता में रह जाता है, तो जो कानून उसे फिर जो सहूलियत आप चाह रहे हैं सरकार से, जो कानून से सहूलियत चाह रहे हैं, तो वही सजा है, उससे ज्यादा सजा क्या रहेगी। वो इस दौर में जो है अनभिज्ञ रह जाता है, शिक्षित नहीं हो पाता, तो ये तो सबसे बड़ी सजा है, अभिशाप है जिंदगी का।
1: जी वकील साहब, जैसे हमारे बच्चे हैं और वो कहीं काम करते हुए पाए जाते हैं, कुछ संस्थाएं हमारी ऐसे काम करती हैं जो बच्चों को ये देखती हैं कि कहीं वो मजदूरी कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, और वो उन बच्चों को उस काम से मुक्त कराते हैं। क्या ऐसी भी हमारे समाज में या हमारे इस देश में कोई संस्थाएं काम कर रही हैं जहां उन काम से मुक्त करा गए बच्चों को रखा जाता है, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, उनके जो संरक्षण है, स्वास्थ्य है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है?
0: देखिए, बाल श्रम जो इस तरह से जो कानून बना, इसके अंदर भी इंस्पेक्टर होते हैं
1: जी।
0: और वो अपने, उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका क्षेत्राधिकार है, उनके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, कौन
1: जी
0: सी कार्यशालाएं काम कर रही हैं, तो ये जिम्मेदारी उनके प्रति भी आ जाती है।
1: जी
0: और वो जो है अपने क्षेत्र के सभी जो नियोजित संस्थाएं हैं या कार्यशालाएं हैं, उन्हें हिदायत करते हैं कि आपके यहाँ इस तरह का जो भी कोई काम करता है तो वो सबसे पहले हमें सूचना दोगे आप, रजिस्टर मेंटेन करके दोगे आप, जो है सारी चीजें अपने कानून के अंतर्गत वर्णित की गई हैं, उनके अनुरूप अपनी कार्यशाला को रखोगे, उससे हटके नहीं कर सकते आप, उन्हें कोई प्रताड़ित भी ना करे।
1: लेकिन ना वकील साहब, फिर एक बार मैं यहाँ आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ सवाल के रूप में श्रोताओं के लिए, कि कुछ संस्थाएं कुछ चीजें छुपाती हैं,
0: जी
1: वो दिखाती कुछ और हैं, करती कुछ और हैं, यानी कि बच्चों से काम करवाते हैं लेकिन वो ये सामने दिखाते नहीं है कि हम बच्चों से काम करवा रहे हैं,
0: जी
1: उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है?
0: नहीं, उसके लिए यदि कोई कंप्लेन आती है, देखिए कंप्लेन करने की आपको पूरी जो है, कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी कर सकता है कंप्लेन, जो
1: जी
0: है कंप्लेन आती है तो वो जहाँ बच्चा
1: काम कर रहा
0: अभ्यस्त है,
1: जी
0: छोटा है, तो सबसे पहले उसके जन्मतिथि पे
1: देखिए
0: गौर करेंगे कि बच्चा कितनी उम्र का है, और उसके लिए क्या होगा, यदि उसका कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो उसका शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है वो देख लिया,
1: देख लिया जाए,
0: और अन्यथा जो क्षेत्राधिकार में जो उनके चिकित्सा अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी है, तो वो जो है उनसे जो है प्रमाणित कराएंगे कि आप किसकी एज को प्रूफ करिए,
1: जी
0: इसके बावजूद भी यदि वो गलती करते हैं कहीं, तो उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो वो नहीं, इस तरह से जो है उन्हें मुक्ति नहीं है बिल्कुल भी, जो है
1: काम नहीं ले सकते,
0: हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते।
1: बच्चे के संरक्षण के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो क्या इस तरह के जो केस होते हैं, क्या वो जो सामान्य हमारी अदालतें हैं वहां इस तरह के केस जाते हैं, या फिर क्या अलग से कोई इनके लिए न्यायालय बना हुआ है?
0: किशोर न्यायालय एक अलग जो है बनाए गए हैं, और उनका ट्रायल जो है किशोर न्यायालय में होगा।
1: अच्छा,
0: तो वो किशोर न्यायालय उन्हें सुधारात्मक राह पे लाने के लिए उन्हें जो है दंडित भी कर सकता है, उन्हें गाइडलाइन भी देता है, और उन्हें अपराध जगत से अलग रखता है, यदि अनभिज्ञता में कुछ ऐसा हो भी जाता है तो वो किशोर न्यायालय देखेगा।
1: बाल श्रम निषेध कानून हमारे देश में लागू है, हम सबसे ये निवेदन करते हैं, माता पिता से भी, गार्जियन से भी, कि अपने बच्चों से काम ना करवाएं, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल और उनकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, और जो उपक्रम या उद्योग या काम करवाने वाले लोग हैं उनसे भी ये निवेदन है कि बच्चों से काम ना करवाएं, नहीं तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा और आपको सजा हो सकती है, आर्थिक दंड भी आपको दिया जा सकता है। वकील साहब, इस कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि बाल श्रम निषेध कानून क्या है और क्या क्या इसके प्रावधान हैं, इस संबंध में श्रोताओं को जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत

0: धन्यवाद। कानूनी सलाह, कानूनी सलाह।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी सलाह। भेंटवार्ता का विषय था बाल श्रम रोकने संबंधी कानून। एडवोकेट अतर सिंह से बातचीत कर रहे थे एसके नौटियाल। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दूर गगन की छाओ में फिल्म से गीत, आवाज किशोर कुमार की, गीत और संगीत भी किशोर कुमार का।

ये थे किशोर कुमार दूर गगन की छाव में फिल्म से। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास के स्वर में अभिमान फिल्म से गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को संगीत से संवारा एस डी बर्मन ने।

छाया गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म से गीत, स्वर आशा भोसले और दिलराज कौर के, गीत के बोल गुलशन बावरा के, धुन आर डी बर्मन की।

सत्ते पे सत्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही छायागीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:15 हो रहे हैं। आइए आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दे दें। नातिया कलाम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर। श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर। ये थे आज के कार्यक्रम। कल के कार्यक्रमों में आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:32 पर ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। रागिनी आपको सुनवाएंगे धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर। जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल रात 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत के अंतर्गत सुनिएगा लोकगीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में चंक रहेंगे कुछ खास है आज गीत आपके नाम बूस्टर्स और फिल्म संगीत। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा कल दिन में 1:15 पर, जिसके आकर्षण होंगे आदि आबादी से ऐसा देश है मेरा और चलते चलते। कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव आपके लिए लाएंगे कल दिन में 12:05 पर। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 374.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
6: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
4: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता

0: की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
3: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन JEE एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी।

है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई, जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में नातिया कलाम।

اسوس سخی سے ملو رحمتوں کی ہنسی چاندنی سے ملو.

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं नातिया कलाम। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज आपको सुनवा रहे हैं नातिया कलाम।

विविध कलाकारों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे नातिया कलाम। इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम के शुरुआत में लीजिए सुनिए जिगरी दोस्त फिल्म से गीत मोहम्मद रफी के स्वर में, आनंद बख्शी का गीत, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जिगरी दोस्त के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं झुक गया आसमान प्रेम से गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जय किशन का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: जॉनी मेरा नाम, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के गीत को धुन दी है कल्याण जी आनंद जी ने।

जॉनी मेरा नाम फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और साथियों के स्वर में जोशीला फिल्म से गीत। इस गीत को लिखा साहिर लुधियानवी ने और धुन तैयार की आर डी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में इंतकाम फिल्म से गीत। राजेंद्र कृष्ण का गीत, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और लीजिए अब पेश है आज के कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश, इंसानियत के दुश्मन फिल्म से आशा भोसले और सुरेश वाडकर के स्वर में इंदीवर के गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

0: इंसानियत के दुश्मन फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है बागबान। इस फिल्म के गीत लिखे हैं समीर ने, संगीत निर्देशन है आदेश श्रीवास्तव का। पहला गीत अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक और साथियों के स्वर में।
1: Valentine's Day.

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं बागवान फिल्म से गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुदेश भोसले और अलका याग्निक के स्वर में।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
4: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू

0: भी कर दिया है, हम लोग समय पर तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

0: पल भर की भी तन्हाई तुम्हें नसीब न हो, कोई भी गम तुम्हारे करीब न हो। रब तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि तुमसे बढ़कर कोई खुश नसीब न हो। इन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का जो कि इस समय सुन रहे हैं हेलो नजीब आबाद। तो आइए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सफ़र आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो नजीब आबाद का। अपने उन श्रोताओं को फ़ोन नंबर हम ज़रूर बताना चाहेंगे जो हमसे नए जुड़े हैं। हमारा नंबर है 9457078288, 9457078288 हमारे नंबर पर आप कॉल करिए, हमसे डायरेक्ट जुड़िए और बस सुन लीजिए अपने पसंदीदा फिल्मी नगमे। लेते हैं आज के कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो नजीब आबाद, हेलो नजीब आबाद, हेलो नजीब आबाद, हेलो नजीब आबाद। कॉल लगा करके हमारे श्रोता हो गए हैं गायब।
1: यूरोप्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड
0: तो चलिए लेते हैं आज के कार्यक्रम की दूसरी कॉल। हेलो नजीब आबाद
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, आपको भी हमारा सादर प्रणाम मैडम जी। नमस्ते, शुभ संध्या।
0: जी नमस्ते, हमारी बात किन से हो रही है हम जानना चाहते हैं।
1: जी हम यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से बोल रहे हैं।
0: संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और 1 साल पश्चात हम आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ऐसे ही ट्राई कर रहे थे और कॉल भी लग गई। देखिए
0: चलिए तो बहुत अच्छा है। देखिए आज आपका दिन कितना अच्छा है कि आपने ट्राई किया और फट से कॉल भी लग गया और आपकी बात भी हो रही है आकाशवाणी नजीबाबाद में और आपको देश भर में सुना भी जा रहा है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने आकाशवाणी परिवार को 90 साल हो ही गए हैं इस साल, तो
0: जी बिल्कुल
1: हम चाहते हैं कि यही जो सफर है, सुरीला सफर, यादगार सफर, ऐसे ही आगे निरंतर चलता रहे ये कारवां।
0: जी
1: आप
0: जी
1: इसी
0: जी
1: तरह अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से सभी श्रोताओं को प्रेरित करते रहे, यही हम चाहते हैं, और अपना साथ ऐसे ही बना रहे।
0: जी बिल्कुल संतोष जी, हम बात करेंगे आपसे। अगर हमें आप पहले ये बता दें आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो फिर हम बातों का सफर फिर से शुरू करते हैं।
1: जी, जरूर। तो एक फिल्म आई थी शाहिद कपूर जी वाली,
0: जी
1: 2007 में आई थी, किस्मत कनेक्शन। इस फिल्म का गीत है, ये फिल्म आपके पास उपलब्ध रहेगी ना मैडम जी?
0: जी बिल्कुल चेक कर लेते हैं।
1: जी,
0: आप काम क्या करते हैं?
1: मैम जी, हम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं
0: अच्छा, तो वहाँ पर
1: और
0: आप
1: आकाशवाणी।
0: और
1: जी मैडम,
0: आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना आपको बहुत पसंद
1: हाँ जी, हाँ जी, और नजीब आबाद आकाशवाणी
0: है।
1: से जुड़े हुए हम कई वर्षों से, मतलब 2019 से।

0: मोबाइल एप्लीकेशन पर आप हमें उपलब्ध हुए, तब से हम आपसे जुड़े हुए हैं।
1: जी जी देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई, आप मोबाइल ऐप पर हमें सुनते हैं ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: चलिए, बहुत क्लियर क्वालिटी आपको सुनने को मिलती होगी।
0: जी जी जी बहुत अच्छे मिलते हैं, और आपका प्रसारण भी एकदम एकदम कर्ण प्रिय जैसा मिलता है हमें।
1: चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप जब ऐसे कहते हैं, हमारे श्रोता जब इस तरीके से बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं आप तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए, वो सफल हो जाते हैं।
0: जी जी जी आप सबकी जो कोशिशें हैं, आप सबका जो प्रस्तुतिकरण है, वाकई काबिली तारीफ ही है मैडम जी।
1: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है संतोष जी, आपने आज कॉल लगाया और बात भी हो गई। आपको किस्मत कनेक्शन फिल्म का गीत सुनना है, कौन सा गीत सुनना है?
0: जी वो श्रेया घोषाल जी और मोहित चौहान जी की आवाज में, क्या है ये सुनापन कहीं ना लागे मन, कहीं ना
1: अच्छा,
0: लागे मन, क्या है ये सुनापन।
1: ओके, चलिए सुनिए आप अपनी पसंद का ये गीत और सुनते रहिए यूं ही हमारे कार्यक्रमों को।
0: जी जी जी
1: आपने
0: अवश्य
1: फोन
0: अवश्य मैडम जी,
1: लगाया, आपका
0: आपसे
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा जी,
1: जी
0: और नमस्ते, शुभ
1: जी
0: रात्रि।
1: नमस्ते, शुभ रात्रि, धन्यवाद।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाबाद, नमस्ते मैम।
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सचिव बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। आप मेरी किन से बड़ी बात हो रही है? अच्छा,
0: आपकी बात रीना राजपूत से हो रही है
1: रीना राजी।
0: जी।
1: और
0: तो
1: आपके इधर मौसम कैसा है?
0: मौसम आज बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई तो उससे मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। आपकी तरफ कैसा
1: अच्छा
0: मौसम है?
1: मैडम जी, मेरे मौसम सही है। जैसे बारिश आपके इधर हुई थी, तैसे मेरे थोड़ी मेरे मेरे तरफ बारिश हुई थी, क्योंकि
0: अच्छा
1: तो मौसम में कचो रात मिल गई, गर्मी से कचो रात मिल गई है।
0: तो क्या काम क्या करते हैं आप?
1: तो मैं तो मैडम जी खेती बाड़ी करता हूँ, प्लस सिलाई करता हूँ, आपके प्रोग्राम प्लस सुनता रहता हूँ, और बहुत अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है। और क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी तो गर्मी के मौसम, कल तो खेल दिवस था, तो खेल दिवस से बहुत अच्छा लगा था। तो कहीं भी मैंने प्रोग्राम सुना था, नजीबाबाद पे सुना था, तो खेल दिवस पे जो अवॉर्ड हुआ है 5 बजे वाले, तो उसमें बातचीत हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि खेल दिवस पे जैसे
0: यानी कि
1: बचपन में
0: सुनते हैं
1: खेले
0: आप कार्यक्रम।
1: बचपन में क्या खेला था, जैसे गिल्ली डंडा है, बैट बल्ला है, और कंचे वगैरह ये चीज बचपन में, और डुक्का मिच्ची है, और जैसे चोर सिपाही वाला गेम है, जैसे बचपन में बहुत सारा, नानी नानी घर पे जाते थे तो नानी घर पे बहुत शरारती करते थे, तो ऐसे बचपन में बहुत अच्छा लगता था। और मैडम हकीकत बता रहा, तो मैडम जी मैं पढ़ने जाते थे, किसी की कॉपी चुरा लेते थे, किसी कचुम हो जाता था तब डांट पड़ती थी, मैडम जी मेरे मारती थी, चिल्लाती थी। और ऐसे घर पे मामा आते थे, मामा पहले साइकिल की बेल जाता थी कि साइकिल आते थे मामा लेके, तो उनकी चुरा के ले जाते थे चलाने के लिए। तो एकदम चुराने के लिए, फिर एकदम साइकिल उसकी हवा
0: आपको बचपन की यादें
1: चुप,
0: आज पूरी ताजा हो गई है लगता है।
1: हाँ ताजा हो गई। और जैसे साइकिल ले जाते था उसकी पिंचर हो गई, फिर मेरे घर पे आए, फिर इतनी डांट पड़ी, मार भी गई, मामा ने मारा भी, तो ऐसे बचपन शरारती करी मैंने।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: और
0: जो
1: क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में जैसे कलींदे हैं, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इनका सेवन करना चाहिए कि मौसम हल्का हो। क्योंकि अभी तो
0: जी
1: आम
0: जी
1: भी चल रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: आम भी की पना, जैसे जूस वगैरह जो खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी।
1: और
0: मौसमी फल चाहे जिस भी मौसम के हों, हमें वो ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि वो
1: हाँ
0: सेहत के लिए
1: हाँ
0: बहुत
1: जरूर खाने
0: अच्छे होते
1: चाहिए, सही
0: हैं।
1: कह रहे हैं। और जैसे अभी तो मौसमी फल, और जैसे पक्षी अच्छी रहेंगे तो उनको कहीं भी पानी आने रखना चाहिए, और छत पे रखना चाहिए, तो पानी की बचत करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा गर्मी के टाइम पे पानी ज़्यादा पीना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी
1: पशु
0: बात।
1: हैं,
0: आप
1: पक्षी हैं,
0: नॉन
1: तो
0: स्टॉप आपने हमारे श्रोताओं से बात की, नॉन स्टॉप अपनी बातों को कहा, ये भी
1: और
0: एक अच्छा
1: जैसे
0: स्टाइल
1: तो
0: है।
1: हाँ जैसे और जैसे माने के जो पशु होंगे हैं, तो पशु को जैसे कहीं कहीं खेतार बांध आते हैं, तो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, क्यों ऐसे उनका ध्यान ही नहीं देता, तो उनका इंसान से ज्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए, कि बे जानवर होते हैं, तो उनसे बोल
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: पाते
0: जी
1: हैं, लेकिन बे जब उन्हें प्यास लगती है तो बे चिल्लाते हैं, रेखते हैं, तो उन्हें समझ लो ये पानी है, भूख लगेगी, तो
0: चलिए,
1: ये
0: बहुत अच्छी
1: चिल्लाते
0: बात है।
1: हैं।
0: हम ये आशा और विश्वास रखते हैं कि आप जो कुछ भी आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारते होंगे। और
1: और
0: यदि
1: आज
0: ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं।
1: आज आज मैंने 10 बजे प्रोग्राम सुना था आपका नजीबाबाद के अंदर से, आधा घंटा वाला जो 10:30 बजे, तो आज आज उसके ऊपर सुना था। आज ब्लड ब्लड के दिवस पे अवसर पे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा दिया था सर ने, मेरे
0: जी
1: को
0: जी
1: बहुत अच्छा
0: बिल्कुल
1: लगा था। किसी का ब्लड निकालना चाहे उनका पुण्य करना चाहिए, तो आपको ये ऐसे प्रोग्राम सुना था, बहुत अच्छा लगा था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे नियमित श्रोता हैं, ये जान करके हमारा दिल बहुत खुश हुआ। और हम आपको भी खुश कर देना चाहते हैं, आपका मनपसंद गीत आपको सुनवा करके। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: आज मैं सुनवा दीजिए, मूवी का नाम है, फिल्म का नाम दिल, गाने बोल ओ प्रिया प्रिया,
0: चलिए,
1: दोस्तों को याद कर सकता हूँ।
0: आ बहुत जल्दी से।
1: जैसे हाँ बहुत जल्दी से, पहले सबसे पहले आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्यों आप वहाँ से प्ले करेंगे, आपको सुनूंगी, लेकिन और फिर लोकेंद्र गुरु जी रहेंगे दतिया मध्य प्रदेश से, और उसके बाद रहेंगे विजय पांडे जी बलरामपुर से, मांगीलाल चंदेल रहेंगे गुना मध्य प्रदेश से, और जितने तमाम
0: और हमारे
1: जितने
0: सारे श्रोता जो सुन रहे हैं,
1: और दिव्यांशु यादव रहेंगे,
0: और
1: कुछ लड़की बिजनौर से राकेश शिमला सेंगे, अनुपमार भट्टाचार्य जी आएंगे, तो जितने तमाम सुनने वाले सबको वहाँ
0: चलिए
1: डेडिकेट करना चाहता हूँ,
0: लीजिए,
1: और अच्छा
0: आप अपने
1: मोहम्मद जी आएंगे
0: सभी
1: सपना जिला
0: सभी
1: से।
0: मिलने वालों के साथ एंजॉय कीजिए ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाबाद,
0: जी, नमस्कार।
1: राधे राधे रीना जी, राधे राधे
0: राधे राधे जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से खजुराहो।
0: फूलचंद पाल जी, हम कार्यक्रम में आपका फूलों से स्वागत करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, क्या
1: रीना
0: काम करते हैं आप?
1: जी, मैं ही दुकानदारी करता हूँ।
0: अच्छा, और आपकी दुकान में क्या-क्या मिलता है?
1: सब कुछ मिलता है, जैसे किराने की जितने काम सामान है।
0: अच्छा, किराने का।
1: हाँ
0: चलिए, तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि आप हमारे सारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते होंगे।
1: जी जी बिल्कुल, पूरा दिन जो है रेडियो बजता रहता है दुकान में।
0: जी, बिल्कुल, ये
1: और
0: तो बहुत अच्छा।
1: आपका जो हेलो नजीबाबाद है वो तो मेरा बहुत ही फेवरेट कार्यक्रम है, उसको तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं।
0: छोड़ना भी नहीं है। आकाशवाणी नजीबाबाद का कोई कार्यक्रम आपको नहीं छोड़ना है, सब आपको सुनने हैं,
1: जी
0: क्योंकि सारे प्रोग्राम होते
1: जी
0: हैं एक से बढ़कर एक।
1: एक और बता रीना जी कि ये कार्यक्रम जो आपका नाइट में रात में आता है तो रात में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बढ़िया रात्रि का सन्नाटा होता है, एकांत मन होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, बिल्कुल, ये कार्यक्रम रात्रि को करने का उद्देश्य भी यही है कि जिस समय हमारे श्रोता दिन भर के कामों से निबट करके सोने के लिए चल रहे होते हैं, उस समय ये कार्यक्रम है कि उनका मन शांत हो। अगर दिन में कोई उलझन भी हुई है तो अपने मनपसंद गीत को सुन करके उनका दिन अच्छा हो जाए और वो अच्छी नींद ले सकें।
1: क्या बात है रीना जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। और आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए,
1: और
0: धन्यवाद।

0: रीना जी, खासकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज इतनी खुशी हो रही है कि आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: हम भी बहुत खुश हैं आपसे बात करके। आप इतनी अच्छी
0: और
1: जगह
0: जी
1: पर रहते हैं।
0: जी बिल्कुल रीना जी, आइए, स्वागत है आपका खजुराहो, आइए घूमने के लिए।
1: बिल्कुल, खजुराहो का नाम सुनकर ही हमें हम एक कलात्मक दुनिया में पहुंच गए हैं।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो आप जब आएंगे तो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कोई विश्व प्रसिद्ध नगरी खजुराहो है।
1: जी, बिल्कुल। सुना बहुत है हमने, कभी आने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे कि खजुराहो आए।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। वो ऐसा कोई नहीं है, अपने देश में ही, अपने जो है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है आपकी, बिजनौर जिले से ज्यादा कोई दूरी नहीं है,
1: जी,
0: और हर साधन है खजुराहो आने के लिए। चाहे आप हवाई यात्रा से भी आ सकते हैं, या ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस के द्वारा, या कोई अपना निजी वाहन लेके भी आ सकते हैं।
1: तो आपने तो वहाँ की जो कलात्मक विधाएं हैं वो सब देखी होंगी।
0: जी, बिल्कुल देखी हैं, और देखने का नज़ारा ही बहुत गजब है। जैसे अब मान लो बरसात होने वाली है, तो बरसात का नज़ारा और ठंडियों का नज़ारा बहुत अलग होता है वहाँ का, क्योंकि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ, बहुत ज़्यादा।
1: जी,
0: तो क्या है कि बहुत सारे मंदिर हैं, तो टेम्परेचर खजुराहो का बहुत ज़्यादा रहता है,
1: अब
0: और अभी
1: बरसात
0: जो
1: आएंगी तो फिर
0: बरसात
1: टेम्परेचर डाउन होगा।
0: डाउन हो जाएगा, और जो वहाँ की जो बाग बगीचे हैं, वहाँ की जो छटाएं हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो इतनी गजब सुहाना हो जाता है मौसम के, देखने योग्य होता है, लगता है कि हाँ, देखते ही रहे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अपना रनेफाल है, एक कैन नदी है, वहाँ रनेफाल भी आप घूमिए, और रनेफाल के अलावा जो है पन्ना टाइगर है, बहुत सारी जगह है वहां पर आसपास घूमने के लिए, आप सारी जगह घुमाऊंगा मैं आपको।
1: जी, बिल्कुल, आपसे बात करके हमें लग रहा है कि अब तो हमें खजुराहो का प्लान करना ही होगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी, रीना जी, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है,
1: ठीक है।
0: और गीत की बोले जब प्यार किसी से होता है, और गीत की बोले चल प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ चलेगी ना जी ना जी। और ये गीत जो है रीना जी, आपको डेडिकेट रहेगा, और जो है हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, और मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, कानपुर से पूनम जी हैं, और राहुल कुमार जी हैं, और विजय कुमार पांडे, सारे जितने श्रोता सो रहे सभी को डेडिकेट
1: जी
0: रहेगा।
1: जी
0: और जो है
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत ही परम मित्र हैं जय यादव जी हैं लोहेड़ी से, उनको भी जो है जयपाल यादव जी।
1: ठीक है जी। आप अपने सभी मित्रों के साथ, हमारे सभी श्रोताओं के साथ लीजिए, आनंद लीजिए इस गीत का।
0: बिल्कुल, लेकिन आने खजुराहो आने का वादा रहा है आपसे।
1: जी बिल्कुल।

0: हेलो नजीबाबाद, हेलो नजीबाबाद, हेलो। हेलो नजीबाबाद,
1: हेलो
0: हेलो नजीबाबाद
1: नजीबाबाद।
0: जी, नमस्कार
1: नमस्कार मैम। नमस्कार मैम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: जी वक्कार फरीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में।
1: जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दो लाइनों से शुरुआत करूँगा कि मेरी गलती में छुपा है मेरा इंसान होना। मेरी गलती में छुपा है मेरा इंसान होना, वो जो
0: वाह
1: गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा।
0: जी, बिल्कुल, इंसान है तो वो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो गलती होगी। लेकिन हाँ, अच्छा क्या है, उस गलती को आगे के लिए संभल करके हम चलें और रिपीट ना हो,
1: बिल्कुल मैम,
0: है ना?
1: और बहुत बहुत स्वागत मैम आपका एनर्जी में। मैं करना
0: जी
1: चाहूंगा, काफी दिनों के बाद आप इस

0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये याद ही है जो हम लोगों को जोड़े रख रही है। हमारे श्रोताओं का इतना प्यार जो हमें मिलता है, वो हमें कहीं जाने नहीं देता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी बहुत।
1: नाम तेरे नाम का, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा।
0: तो लीजिए, पेश है
1: तो मैम
0: आपकी।
1: दो लाइनें चलते चलते और अर्ज करना चाहूँगा कि
0: जी।
1: तहजीब भी ज़रूरी है तालीम के साथ साथ, तहजीब भी ज़रूरी है तालीम के साथ साथ, महज किताबें पढ़ लेने से सलीका नहीं आता।
0: ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि खाली किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपके अंदर तहजीब होना पूरे मायने रखता है।
1: बिल्कुल मैम।
0: जी, बहुत अच्छी बात के साथ लीजिए एक खूबसूरत गीत आपके लिए।
1: ओके मैम,
0: जी
1: थैंक यू मैम।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: दानिश सिद्दीकी जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम में
1: जी मैम धन्यवाद।
0: जी। क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैम यही कहना चाहते हैं, क्या आपके केंद्र से प्रोग्राम सुन लेते हैं जब जब वक्त मिलता है? आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लगते हैं, जैसे आपका गीत तुम्हारे प्रोग्राम आता है सुबह 10 बजे से, और उसके बाद में आपका हेलो नजीबाबाद प्रोग्राम आता है, तो युवाणी के अंतर्गत भी सुनते हैं, जो आपका सोमवार के दिन प्रोग्राम आता है गपशप अड्डा, और अन्य प्रोग्राम भी है जैसे मिड डे मेलोडी है, आपका पत्र मिला है, ये सारे प्रोग्राम आपके सुन लेते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लगते हैं मैं।
0: जी जी बिल्कुल। आपका पत्र मिला तो कार्यक्रम ही आप लोगों का है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं उस कार्यक्रम में देते हैं जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है कैसे हम कार्यक्रमों को और इस तरीके से बनाएं कि वो आपके लिए ज़्यादा प्रभावी हों।
1: जी
0: तो दानिश सिद्दीकी जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म है डाक डिफार, और उसमें गीत के बोले हैं दिल दीवाना, कुछ इस टाइप के बोले, ये सुनवा देना, कुछ सुनने वालों के नाम है मैम, जैसे मेरे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, ग्राम के टांडे से हैं मोहम्मद कामिल, और ये हैं मकसूद हुसैन साहब, बहादुर हुसैन सिद्दीकी हैं, मुकेश भाई हैं, और हमजा सिद्दीकी हैं, गुलशन साहिबा, और कांठ रोड लगावली मुरादाबाद से हैं भाई अजीत कसाना और राजवीर यादव, बस यही लोग
0: जी
1: सुनना चाहते हैं।
0: जी जी लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ और हमारे सभी श्रोताओं के साथ सुनिए ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हाँ हेलो नजीमाबाद मैम जी, आदाब
0: जी, आदाब। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम। मैं जिला रामपुर ग्राम खेतान से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैम एकदम अच्छे हैं, आप बताइए मैम आप कैसे हो।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी परिवार एकदम स्वस्थ है, अच्छा है। और आपके लिए कार्यक्रम ले लेकर के आता रहता है, तत्पर है आप लोगों के लिए।
1: जी जी मैम, आप प्रोग्राम पेश करती हैं, काफी अच्छे लगते हैं मैम।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: मैम कहें तो कुछ नहीं चाहेंगे, बस यही है आपका प्रोग्राम, आप इसी खूबसूरत अंदाज में
0: चलिए
1: पेश करती रहें, हम सुनते रहें, बस इससे अच्छा और कुछ नहीं है।
0: तो सुना देते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: मैम फिल्म का नाम है कुछ दिल ने कहा और गाने के बोले मेरी नींद चुरा ले, इसी तरह के गाने के बोले ये सॉन्ग सुनवा देना और मेरे साथ में कुछ सुनने वाले हैं मैम।
0: जी
1: मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, ये सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: जी जी बिल्कुल, उदित नारायण के स्वर में कुछ दिल ने कहा फिल्म से लीजिए। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
1: थैंक यू मैम।
0: जी।

0: हेलो नजीब आबाद
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी राशिद अंसारी जी, स्वागत करते हैं बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद मैडम।
0: जी
1: मैं राम तेरी गंगा वैली फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, और कुछ श्रोता भी है मेरे साथ में, साथी
0: जी बताइए।
1: आचार्य सत्यवीर सिंह, नदीम बाकी, रघु भाई, निजामुद्दीन भाई, वकार फरीदी, मुकेश कश्यप, महबूब दुकानदार, आसिफ चौधरी, मोहम्मद फरमान और नदीम बादशाह, राजेंद्र सिंह पकौड़ी वाले।
0: जी जी लीजिए, पेश है आपकी फरमाइश पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म से उसका टाइटल सॉन्ग। आप एंजॉय कीजिए इस गीत को अपने साथियों के साथ और हमारे सभी श्रोताओं के साथ।
1: और बीबीपुर से मकसूद हुसैन भी है।
0: जी जरूर।
1: थैंक यू मैडम।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। रीना राजपूत को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफ़र।

आँखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊं? अभी कई मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है राह में, कई मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूं अधूरा ये सफर? मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और साथ में मैं हूँ रीना राजपूत। रात के हम सफर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हमारा इंतज़ार भी शुरू हो चुका है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। तो जल्दी से हमें मैसेजेस करिए और दिन भर में आपने क्या किया, कुछ अच्छा या कुछ गलत भी हुआ, या कोई याद आपको ऐसी आई जिसको आपको ऐसा लगता है कि वो हमें आपको हमारे साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो बस हम आपको जल्दी से नंबर बता रहे हैं, 9457078288। जी हाँ, 9457078288 ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए आप हमसे जुड़िए और हम तक पहुंचाइए अपना कोई भी एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं उसको यहाँ पर, और हमारे सभी श्रोता उसको जानेंगे सुनेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार हमें लगता है हमें करना होगा आप जब तक मैसेज टाइप करें। तो चलिए गीत सुनाते हैं आपको, बहुत खूबसूरत प्यारा सा गीत, और जल्दी से हमें आप मैसेज भेज दीजिए।

रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमें मैसेज लिखते हैं जगमाल सिंह डालना डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आप लिखते हैं, घर गृहस्थी के काम जितना करो उतना थोड़ा है, आज कुछ ज़्यादा परेशान थे, आंधी आ गई थी, तो हमारा राजस्थान में वैसे ही घर है तो थोड़ी सी हवा भी आती है तो मिट्टी बहुत आ जाती है, सारा दिन हो जाता है उसकी सफाई करने में, तो आज हम आंधी आई और बारिश उसके साथ चक्कर में सारा दिन सफाई में लगे रहे। जी बिल्कुल, मौसम आज ऐसा ही था कि आंधी के साथ बारिश होनी है, और परेशानी तो होती है जब आंधी आती है तो, लेकिन ये मौसम है, इसके साथ हमें चलना ही है, तो चलिए खुशी खुशी हमें सारे काम करने चाहिए। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, आप हैं गादरौना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी लिखते हैं, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो रेडियो ऑन किया, वंदे मातरम आ रहा था, सुना, दिल को बहुत सुकून मिला, और फिर ज्योति गौड़ की आवाज़ सुनाई दी, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किए और उनके साथ लोकेंद्र जी ने निभाया साथ, बस इसी तरह पूरा दिन रेडियो सुनते सुनते गुजर गया, दिन बहुत अच्छा रहा, कोई बुरी खबर नहीं मिली, अच्छी खबर मिली फिर शाम को के प्रोग्राम में, रीना राजपूत जी की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत किए, हेलो नजीबाबाद, बहुत अच्छा रहा, रीना राजपूत जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, मेरी कॉल तो शामिल नहीं हुई पर मुझे पूरी उम्मीद है मेरा मैसेज ज़रूर आपने आज पूरे दिन भर की जो ये लिख करके लिस्ट हमें भेज दी है बहुत अच्छी है, और आपका प्यार इसमें झलक रहा है आकाशवाणी नजीबाबाद के लिए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये हैं अब्दुल खालिक पत्थर वाली मस्जिद जलालाबाद से, लिखते हैं, हमें तो बहुत प्यारा लगता है ये मौसम और ठंडी हवाएं। जी बिल्कुल, मौसम, ठंडी हवाएं, मौसम जो भी आता है हमें तो लगता है कि हमें उसका स्वागत करना चाहिए और अच्छे से हमें, क्योंकि मौसम है, गर्मी बरसात, हर मौसम की एक अपनी अहमियत है, एक के बाद दूसरा मौसम तभी आएगा, तो जो जिस समय जो मौसम चल रहा होता है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। आप लिखते हैं हलवाई मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर हमें मैसेज करते हैं। आप लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसी हैं आप? जी हम बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, कल रात बारिश हुई, मौसम सुहाना है, एंजॉय करें, आप काफ़ी दिन बाद आई हैं, आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लग रहा है, बाकी सब ठीक है, हमें भी शामिल करें प्लीज़। तो लीजिए, आप बिल्कुल शामिल हो चुके हैं आज के इस कार्यक्रम में। और देखिए, मौसम की बातें हमारे लगभग सभी श्रोताओं ने इसलिए भी लिखी होंगी क्योंकि बहुत दिनों से गर्मी सता रही थी और कल जो ये आंधी के साथ बारिश आई है तो मौसम खुशनुमा हो गया है। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर, उत्तर प्रदेश से मैसेज करते हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। आप लिखते हैं, दुनिया में यादें बड़ी खास होती हैं, जो दूर हो उनके दिल के पास होती हैं, याद करने के लिए वजह ज़रूरी नहीं, यादें तो रिश्तों के बीच का एहसास होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, तो चलिए अब थोड़ा सा विराम लेते हैं और आपको एक खूबसूरत गीत सुनवाते हैं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम चल रहा है रात के हम सफर, और ये मैसेज हम तक पहुंचा है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। लिखते हैं, रात के हम सफर प्रोग्राम हर शुक्रवार को हम सुनते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी मीठी मीठी आवाज़ में प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं, शुक्रिया। आप लिखते हैं, रात के हम सफ़र प्रोग्राम में आज, लिखते हैं, आज हमारे कासगंज में बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, साथ में प्रोग्राम सुनने में मज़ा आ रहा है। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे एक और मैसेज है, लिखते हैं, रात के हम सफ़र कार्यक्रम के लिए नगीना से अनिल विनोचा जी लिखते हैं, रीना जी आपको सादर नमस्कार, जो आज हुआ हाजिर है दिल में। शॉप पर एक लेडीज़ कस्टमर शॉप पर आई, उसने कुछ सामान लिया, सामान कोई 95 रुपये का हो गया, पूरे 100 का सामान करने के लिए कहा कोई 5 रुपये का माला सा चलने वाला पेन दे दो, मलाई सा चलने वाला पेन दे दो, रुके नहीं। मैंने कहा ये पेन कहीं नहीं रुकेगा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर ही रुकेगा और युद्ध विराम करने के लिए ऑर्डर करवाएगा। बड़ी परेशानी हो रही है सामान मंगाने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, देखिए आपने कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को कह भी दिया, और बात आपकी बिल्कुल सही है, युद्ध तो युद्ध है, परेशानी ही लाता है, तो जितना जल्दी शांत हो तो उतना अच्छा है। आप लिखते हैं, एक और मैसेज है ले लेते हैं, हमारे कुछ श्रोता सिर्फ अपना नाम लिख करके भेज रहे हैं, मैसेज उन्होंने टाइप नहीं किया है, तो ऐसा नहीं कीजिए, हमें इंतज़ार है आपके मैसेजेस का। तो चलिए, जब तक हमारे पास कोई और मैसेज पहुंचता है तब तक हम आपको एक गीत सुनवा देते हैं।

रात के हम सफर कार्यक्रम में एक और मैसेज हम तक पहुंचा है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमें लिखते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप लिखते हैं, सपने देखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन केवल सपने देखकर ही मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना। देखिए, ये बात तो बहुत अच्छी लिखी है मुकेश जी आपने, लेकिन हमने आपसे गुजारिश की थी कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमें लिख करके भेजें, आज के दिन में कोई ख़ास घटना आपके साथ हुई हो या जीवन में कभी कोई घटना ऐसी हुई हो, तो आप वो लिखते तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। जसपुर रोड, दूल्हापुर, ज़िला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद बारिश अंसारी,

बेटी अलशिफा परवीन हमें मैसेज करती हैं, आप लिख रही हैं, आप को दिल से हम सुबह से घर के कामों में व्यस्त हैं, खेती किसानी के लिए थोड़ा खेत पर गए, वहाँ पर लिप्टिस के पौधों को सही तरीके से मिट्टी वगैरह लगाए, उनकी साफ़ सफाई की, उसके बाद घर में आते समय मार्केट से हम अचार डालने के लिए लेकर के आए, आम शायद लाए होंगे, इन्होंने लिखा नहीं है। इस तरह इस समय हम लोगों को काटकर अचार डालने की तैयारी कर रहे हैं, सुबह के नंबर में सुखाकर उनको शाम को अचार डाल देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अचार डालिएगा, मौसम है कच्चे आम का। बात मौसम की चल रही है तो एक बात जो महत्वपूर्ण, क्यों ना मैं इस समय लू अपने चरम पर है, इससे हमें बचकर रखने की ज़रूरत है, धूप में जाने से बचें, यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, जानवरों और पक्षियों को पानी पिलाएं। ये हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। बहुत अच्छी बात आपने कही। चलते चलते एक गीत आप सभी के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हमसफर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education.